ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 मई सन 2026। सवेरे के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की ये पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सभा की शुरुआत में आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के

0: प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूरिजुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सवेरे के 6:05 हुए हैं। समय हुआ है श्रीराम चरित मानस का। आइए सुनते हैं श्रीराम चरित मानस का भाग 406।

काक भुशुंड के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम के चरणों में उनका अनन्य प्रेम देखकर पक्षीराज गरुड़ कृतकृत्य हुए, बोले, हे नाथ, आपने श्री राम की कथा और ज्ञान तथा भक्ति की महिमा सुनाकर मुझे परम सुख और शांति प्रदान की है। आपके इस उपकार के लिए मैं सदा सर्वदा आपका ऋणी रहूंगा। आप पूर्ण काम हैं, श्री राम के अनुरागी हैं। इस जगत में आप जैसा बड़भागी और कौन होगा? संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब का अस्तित्व परोपकार के लिए होता है। कवियों ने कहा है कि संत हृदय नवनीत के समान होता है, किंतु मैं कहता हूं कि उन्होंने कदाचित पूर्ण सत्य नहीं कहा, क्योंकि मक्खन तो अपने ही ताप से पिघल जाए, जबकि संतों का हृदय तो दूसरों का दुख देखकर पिघलता है। पार्वती को काकभुशुंडी गरुड़ संवाद का ये प्रसंग सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, गरुड़ ने बार बार अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर काकभुशुंडी के चरणों में सिर नवाकर वैकुंठ लिए प्रस्थान किया। संत समागम जैसा कोई पुण्य कार्य नहीं होता, किंतु ऐसा अवसर प्रभु कृपा से ही प्राप्त होता है। मैंने वो इतिहास सुनाया जिसे अपने कानों से सुनने वाला जीवन मुक्त हो जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक ये कथा सुनते हैं, उनके सभी पाप धुल जाते हैं। धन्य है वो देश जहां गंगा प्रवाहमान है। धन्य है वो स्त्री जो पातिव्रत का पालन करती है। धन्य है वो राजा जो न्यायप्रिय होता है। और धन्य है वो द्विज जो अपने धर्म पर अडिग रहता है।

आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ और सतीश भाटिया के संगीत संयोजन में श्री रामचरितमानस। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सुविचार। जो हमें मिला है उसमें खुश रहना सीखिए।

और जो नहीं मिला उसके लिए मेहनत कीजिए, यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। इच्छाओं का तो अंत कभी नहीं होता, लेकिन संतोष मन को सुकून देता है। आपकी मेहनत ही आपको आगे बढ़ाती है। इस सुविचार के साथ आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

0: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सवेरे के 6:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं फिल्म आनंद से मुकेश की आवाज में ये गीत।
1: मैंने

0: Hey girls!
1: Hi!
0: Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए.
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे.
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी.
0: पिज़्ज़ा पार्टी. ये चल अपना कार्ड और पिन दे.
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी. RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें. ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें.
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग.
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
4: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत. लीजिए सुनिए ये अगला गीत फिल्म हम दोनों से, मोहम्मद रफी की आवाज में, बोल है साहिर के.

लीजिए सुनिए ये अगला गीत लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को धुन दी है राहुल देव बर्मन ने। फिल्म है लव स्टोरी।

लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम का ये आखिरी गीत फिल्म तुम्हारी कसम से। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को गाया है मुकेश और आशा भोसले ने, धुन दी है राजेश रोशन ने।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सवेरे के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं कुछ बातें कुछ गीत।

आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत। आज की इस दुनिया में सब कुछ तेज है, फोन, नोटिफिकेशन, काम और हमारी सोच भी। हर तरफ कुछ ना कुछ हमारा ध्यान खींच ही रहा है, लेकिन एक सवाल यह है कि क्या हम सच में किसी एक चीज पर टिक पाते हैं? फोकस एक ऐसी ताकत है जो दिखती नहीं है, लेकिन सब कुछ बदल देती है। कभी पढ़ाई करते करते अचानक फोन उठा लेते हैं, और कभी काम करते करते ख्याल कहीं और चला जाता है। ये सिर्फ आदत नहीं है, ये आज की दुनिया की एक सच्चाई है। हर ऐप, हर स्क्रीन हमारा ध्यान खींचने के लिए बनी है। सच तो यह है कि फोकस खोना बहुत ही आसान है और बनाना उतना ही मुश्किल, क्योंकि ध्यान हमारी सबसे कीमती संपत्ति है, जिसे हम अक्सर छोटी छोटी चीजों में खर्च कर देते हैं।

जब भी हम किसी एक चीज पर या एक काम पर पूरी तरह ध्यान लगाते हैं तो वही काम अगले स्तर पर पहुंच जाता है। एक खिलाड़ी, एक कलाकार या एक छात्र, सब में फर्क फोकस ही पैदा करता है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब हम पूरी तरह किसी काम में डूब जाते हैं तो वक्त का पता ही नहीं चलता। यही तो असली फोकस है, जहां सिर्फ काम होता है और बाकी दुनिया थोड़ी देर के लिए रुक सी जाती है।

आज की इस तेजी से दौड़ रही दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक रील और हमारा फ्लो टूट जाता है। हम सोचते हैं बस एक मिनट देख लेते हैं, लेकिन वो एक मिनट कई बार घंटों में बदल जाता है और धीरे धीरे हम अपनी प्रायोरिटीज भी भूल जाते हैं। फोकस का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि यह तय करना भी है कि किस चीज को, किस काम को हमें इग्नोर करना है और किस काम को हमें प्राथमिकता देनी है।

फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत होती है, जैसे थोड़ी देर फोन दूर रखना, एक काम पूरा करना और खुद को रिवॉर्ड देना। धीरे धीरे मन भी उसी दिशा में चलने लगता है, क्योंकि जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा जाती है, और जहां ऊर्जा जाती है वहीं परिणाम बनते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना ही बेहतर भविष्य की एक शुरुआत है।

आखिर में फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि किसी ने अपने ध्यान को भटकने दिया और किसी ने उसी ध्यान को सही कार्य में लगाए रखा। जो लोग अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं, वही धीरे धीरे अपनी पहचान बनाते हैं। फोकस सिर्फ काम पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए भी होता है, और शायद यही वो ताकत है जो सपनों को हकीकत में बदल देती है।

इस तेजी से भागती दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन फोकस नहीं, उसे हमें खुद ही बनाना पड़ता है। तो आज से थोड़ा कम भटकेंगे, थोड़ा ज्यादा जुड़ेंगे अपने काम से, अपने सपनों से, क्योंकि जहां आपका ध्यान है वहीं आपकी जिंदगी भी है। आप सुन रहे थे कुछ बातें कुछ गीत।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार व उसके बाद अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिन्दुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा,

0: स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: के लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणि हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 एटीपी चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
2: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान

0: अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों अब पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माही और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिन्दुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Varma. The headlines. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a 2-day visit to Sweden to hold talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors, including trade, defense, technology, water management, clean energy, healthcare.

सुकून की सुबह, पक्षियों की चहचहाट, प्रकृति की हरियाली, चाय की खुशबू और संडे का दिन, हर इंसान के पूरे हफ्ते की चाहत है ना। संडे की सुबह का इंतजार हम पूरे 6 दिनों तक करते हैं, क्योंकि वो संडे की ही सुबह होती है जब ना घड़ी का अलार्म, ना ऑफिस, ना स्कूल और ना ही सुबह की भागम भाग। बस थोड़ा सा आराम, परिवार का साथ, डाइनिंग टेबल पर लगे नाश्ते की खुशबू में महकता अपनों का प्यार, और इन सब को और भी इंटरेस्टिंग बनाता आकाशवाणी का कार्यक्रम नमस्कार। यही सब बातें मिलकर ही तो संडे की सुबह को बहुत सुहानी बना देती हैं।

0: तो दोस्तों हाजिर हैं हम अपनी पूरी टीम के साथ नित नई जानकारियों और सुरीले नगमों से सजा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार लेकर। इससे पहले कि हम कार्यक्रम में आगे बढ़ें, आइए करवाते हैं हम आपका हमारी टेक्निकल टीम से परिचय।
1: जी हाँ श्रोताओं, किसी भी कार्यक्रम को एक सशक्त टीम ही सशक्त बना पाती है, खूबसूरत बना पाती है। तो इसीलिए अभी जो सशक्त टीम है उसका परिचय भी आपसे करवाते हैं।

0: श्रोताओं ट्रांसमीटर पर हैं पारसपुरी गोस्वामी कैलाश चंद्र सोलंकी। और कंट्रोल रूम से नियंत्रण कमान संभाल रहे हैं प्रवीण कुमार। आज के अनाउंसर्स ऑन ड्यूटी प्राइमरी चैनल पर हैं शुभम और एफएम पर हैं सत्येंद्र। इस खूबसूरत नमस्कार कार्यक्रम की प्रस्तुति है संजय व्यास के द्वारा। और कार्यक्रम का संयोजन किया है राजेश लामरोड़ ने। और इस कार्यक्रम में सूत्रधार के रूप में जिस आवाजों को आप सुन पाएंगे आज, मैं हूं नेहा रांकावत और
1: मैं हूं लीना माथुर। तो स्वीकार कीजिए हमारा
0: नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज हो चुका है और सुनते हैं इसी के साथ इसका पहला गीत।

दोस्तों, ये संडे का जो दिन होता है ना, वो सिर्फ सवेरे नाश्ते के टेबल तक ही छुट्टी का दिन रहता है। उसके बाद टेबल पर बैठे बैठे ही न जाने कितने पेंडिंग काम निकल जाते हैं करने के लिए, कि वो छुट्टी बस नाम की ही छुट्टी रह जाती है। और डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे ही मन बार बार यही कहता है कि अरे भाई, इससे तो ऑफिस ही चले जाते, कहता है ना। पर फिर भी संडे का इंतजार हम मंडे से ही करना शुरू कर देते हैं, और क्यों ना करें। जो सुकून, जो आराम हमें संडे को मिलता है, वो वीकडेज में कहाँ मिल पाता है। तो चलिए, चाय की प्याली हाथ में लीजिए, आंखें बंद करिए, सुकून के दो पल बिताइए और महसूस कीजिए इस गाने को।

श्रोताओं, कभी खुशी कभी गम तो आते ही रहते हैं और आप पर, आपकी नज़रिए पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से लेते हैं। क्या आप गमगीन हो जाते हैं या फिर उस गम में भी थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। आज संडे है और फुर्सत का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो चलिए आपको एक स्टोरी सुना देती हूँ। एक बार क्या होता है, एक राजा अपने मंत्री के साथ अपने राज्य के एक छोटे से गाँव से गुजर रहा था। गाँव के बाहर एक पुराना गहरा कुआ था। राजा ने देखा कि उस कुएं के पास एक बूढ़ा किसान बैठा था जो बेहद गरीब दिख रहा था और थका हुआ सा लग रहा था। उसके हाथ में था एक पुराना मिट्टी से सना हुआ तांबे का सिक्का। किसान उस सिक्के को बार बार कुएं में फेंकने की कोशिश करता, फिर रुक जाता और रोने लगता। राजा को बड़ी हैरानी हुई। किसान के पास गया और पूछा, बाबा तुम इस तांबे के सिक्के को कुएं में फेंकने के लिए इतने परेशान क्यों हो? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे लो, किसान ने रोते हुए कहा। महाराज, ये कोई आम सिक्का नहीं है, ये मेरे दादाजी ने मुझे दे दिया था और कहा था कि जब तुम पर सबसे बड़ा संकट आए ना, तब उसे इस कुएं में फेंक देना, तुम्हारी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आज जब मेरी फसल खराब हो गई है, घर में अनाज नहीं है और मेरी बेटी भी बीमार है, इससे बड़ा संकट और क्या होगा? लेकिन जब मैं इसे फेंकने जाता हूं तो मुझे लगता है कि अगर मैंने ये आखिरी उम्मीद भी खो दी तो मेरे पास क्या बचेगा? राजा ने थोड़ा सा सोचा और मुस्कुराते हुए कहा कि देखो किसान, तुम्हारा जो एक

संकट है वो बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत है। चलो एक काम करते हैं, तुम ये सिक्का मुझे दे दो और बदले में मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। किसान खुश हो गया, उसने तांबे का सिक्का राजा को दे दिया और सोने के सिक्के लेकर अपने घर चला गया। उन पैसों से उसने बेटी का इलाज करवाया, नए बीज खरीदे और उसकी जिंदगी बदल गई। फिर क्या हुआ? मंत्री को जरा सा ये अजीब लगा। उसने राजा से पूछा, महाराज आपने उस बेकार के तांबे के सिक्के के बदले 100 सोने के सिक्के क्यों दे दिए? उस कुएं में तो कोई ऐसा चमत्कार नहीं था। तो राजा ने हंसकर जवाब दिया और जवाब बहुत ही विचित्र था, चमत्कार कुएं में नहीं है। राजा ने बोला, चमत्कार कुएं में नहीं है, उस किसान के विश्वास और उम्मीद में है। वो सिक्का उसकी आखिरी उम्मीद था, अगर वो उसे कुएं में फेंक देता तो शायद उसे कुछ ना मिलता और वो निराशा में डूब जाता। मैंने उसे उम्मीद के बदले एक नया रास्ता दे दिया है। जब तक इंसान के पास उम्मीद होती है ना श्रोताओं, तो वो लड़ सकता है। तो राजा ने सिर्फ उसकी उम्मीद को एक सहारा दिया था। और जिंदगी में जब सबसे मुश्किल वक्त आता है ना, तो सबसे पहले हमारी उम्मीद होप डगमगाने लगती है। लेकिन याद रखिए, जब तक आपके पास लड़ने की और आगे बढ़ने की थोड़ी सी भी उम्मीद बाकी है ना, थोड़ी सी भी उम्मीद, तो चमत्कार कभी भी और किसी के भी रूप में हो सकता है। तो श्रोताओं, मुश्किल वक्त में अपनी उम्मीद को कभी मत खोना, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।

दोस्तों, छुट्टी का दिन तो सुकून वाला होता ही है, क्योंकि इस दिन सुबह ना तो घड़ी में बजने वाला अलार्म हमें दुश्मन लगता है और ना ही छुट्टी के दिन हमें जल्दी उठने की कोई कवायद होती है। छुट्टी का दिन घड़ी के हिसाब से नहीं, मन के हिसाब से बीतता है। पर फिर भी छुट्टी बिताने का तरीका जो है वो सबका अलग अलग होता है। कोई छुट्टी के दिन देर तक सोना चाहता है, तो कोई परिवार के साथ समय बिताना चाहता है, तो कोई अपने यारों दोस्तों के साथ पुरानी यादों के गलियारों में चक्कर लगाना चाहता है। सबके अपने अपने प्लान होते हैं, लेकिन संडे के दिन माँ का प्लान क्या होता है? और अभी संडे की ही बात क्यों करें, अभी तो बच्चों के लिए एवरीडे संडे वाला दौर है। छुट्टियां हो गई है, तो ऐसे में माओं की हालत का क्या कहना चाहिए? छुट्टियों का दौर और मौसम में जबरदस्त गर्मी, ऐसे में बच्चे, मेहमान, खान पान की फरमाइशें, तो महिलाओं के लिए तो जरा मुश्किल हो ही जाती है। हाँ, ये और बात है कि महिलाएं इस गर्मी में भी खाना बनाने में होने वाली दिक्कत को जाहिर नहीं करती, लेकिन अगर आज आपकी छुट्टी है तो थोड़ा किचन का चक्कर लगाइए ना। पत्नी का, माँ का हाथ बटा दीजिए, फिर उनके चेहरे की खुशी देखिए। अगर आपकी इस छुट्टी का आनंद दुगना ना हो जाए तो कहिएगा। इसीलिए बस अपने हाथ में जो रेडियो है या अपने फोन में जो रेडियो में नमस्कार बज रहा है उसको लेकर किचन में जाइए, माँ को भी सुनाइए और उनकी मदद कीजिए।

श्रोताओं, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। फिलहाल एक छोटे से न्यूज ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। प्रादेशिक समाचार के बाद नमस्कार कार्यक्रम फिर से जारी रहेगा।

यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। समय हुआ है हिंदी में प्रादेशिक समाचार का, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नीदरलैंड्स संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा, पिछले एक दशक में दोनों देशों के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। राज्य में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया ग्राम रथ अभियान सम्पन्न हुआ। राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष पर कल विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन और ऐतिहासिक द्वारों का नामकरण किया जाएगा। और सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जैटेन के बीच व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। हेग में हुई बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक

0: दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नीदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जैटन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक तथा रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया ग्राम रथ अभियान संपन्न हो गया है। 27 अप्रैल से शुरू हुए इस अभियान में 183 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार रथों के माध्यम से योजनाओं की जानकारी पहुंचाई गई। बगरू के ठिकरिया गांवों में आयोजित ग्राम रथ समापन समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भाग लिया। उन्होंने VC के माध्यम से लाभार्थियों से संवाद किया। समारोह में श्री शर्मा ने कहा कि सरकार देश के विकास का रोड मैप बनाकर पानी, बिजली और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना के लिए MOU किए गए हैं। वहीं कल्याणकारी योजनाओं से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्राम रथ समापन समारोह में जाने के लिए प्रेरक पहल करते हुए मुख्यमंत्री निवास से बगरू के ठिकरिया गांव तक EV बस से यात्रा की। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक परिवहन आधारित EV बस का उपयोग कर आम जन को ग्रीन मोबिलिटी का संदेश दिया। इस दौरान उनके साथ विभिन्न विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र की अध्यापक हैं। CBI के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले CBI ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। दोनों अभियुक्तों को कल पुणे की एक अदालत में पेश किया गया और बाद में जांच के लिए दिल्ली लाया गया। इस बीच CBI ने मामले की जांच करते हुए देश में 6 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष पर कल विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन और ऐतिहासिक द्वारों का नामकरण किया जाएगा। विशेष समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। राज्य विधानसभा में इससे पहले कई नवाचार किए गए हैं जिससे सदन की अनूठी पहचान बनी है। एक रिपोर्ट।
2: नए राजस्थान विधानसभा भवन के निर्माण के बाद भवन को गुलाबी नगर की पहचान के अनुरूप विकसित करने के साथ ही यहां कई नवाचार किए गए हैं। इनमें डिजिटल और कागज रहित व्यवस्था, डिजिटल संग्रहालय, संविधान दीर्घा, वंदे मातरम दीर्घा, जन दर्शन कार्यक्रम, शौर्य वाटिका, नक्षत्र वाटिका और औषधीय वाटिका शामिल हैं। इसके अलावा ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था, महिला दिवस का आयोजन, उत्तरदायित्व प्रश्नोत्तरी, केंद्रीय कक्ष की परिकल्पना और संविधान क्लब को विचार विमर्श के केंद्र के रूप में विकसित करने जैसे कई कार्य किए गए हैं। इनसे राजस्थान विधानसभा की देश भर में अनूठी पहचान बनी है। ये नवाचार जनता और युवाओं को न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं से रूबरू कराते हैं बल्कि व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनैतिक उत्तरदायित्व के प्रति भी जागरूक करते हैं। समाचार कक्ष से ज्योति पारीक।
0: प्रवासी पाली वासियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ने के लिए जिले में आओ

0: गांव चले अभियान शुरू किया गया है। जिला कलेक्टर डॉ रविन्द्र गोस्वामी ने अभियान के लिए जिला स्तर पर एक प्रवासी प्रकोष्ठ का गठन किया है। इसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण और आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास जैसे जनउपयोगी कार्यों में प्रवासियों से सहयोग प्राप्त करना है। इच्छुक प्रवासी व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से इस प्रकोष्ठ से संपर्क कर सहयोग कर सकते हैं। जैसलमेर में आमजन तक पौधों की जानकारी और उपलब्धता के लिए वन विभाग ने एक अनूठी पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री पंच गौरव अभियान के तहत एक डिजिटल कियोस्क, डिजिटल क्लॉक डिस्प्ले तैयार किया जा रहा है, जो लोगों को पौधों के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के साथ ही उन्हें डिजिटल तरीके से पौधे खरीदने की सुविधा भी देगा। ये डिजिटल डिस्प्ले ऐसे स्थानों पर लगाया जाएगा जहां लोगों की आवाजाही अधिक रहती है। वन विभाग के उप वन संरक्षक कुमार शुभम ने ये जानकारी दी।
1: करीब 24 जो प्लांट स्पीशीज है उनके बारे में एक इंटरैक्टिव वे में हम इस कियोस्क के माध्यम से लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाएंगे। जो ये कियोस्क है हम कलेक्ट्रेट या फिर कोई ऐसे स्थान पे रखेंगे जहां लोग ज्यादा इंटरेक्ट कर पाए, तो इसके माध्यम से जो जितने भी पौधे हैं 24 पौधे उनके बारे में लोग इन्फॉर्मेशन जान पाएंगे, उसके यूजेस क्या है, उसे प्लांटिंग कब करते हैं, कैसे करते हैं, इसके माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हम नर्सरी का लोकेशन वगैरह भी इसमें इस कियोस्क के माध्यम से लोग जान सकेंगे कि कहां से पौधे फिजिकली लेना है। इसके अलावा जो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करना है हम यहां पे सॉफ्टवेयर में ट्वीक्स कर रहे हैं ताकि लोग इसमें स्कैन करके लोग अपने SOID से परचेज कर पाए इस कियोस्क के माध्यम से।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। CBSE ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नीदरलैंड्स संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा, पिछले एक दशक में दोनों देशों के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। राज्य में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया ग्राम रथ अभियान सम्पन्न हुआ। राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष पर कल विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन और ऐतिहासिक द्वारों का नामकरण किया जाएगा। और CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज 17 मई से अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है और ये 17 मई से प्रारंभ होकर 15 जून तक चलेगा। ये अतिरिक्त मास सौर और चंद्र वर्षों के बीच के संतुलन बनाने के लिए लगभग हर तीसरे वर्ष आता है। इस महीने को बहुत पवित्र और आध्यात्मिक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये महीना भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को समर्पित है। इस दिन विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना और दान पुण्य करना, व्रत करना, जप करना, इन सब का बहुत महत्व माना जाता है। अधिक मास का आज प्रारंभ होना तो है आज की बात, लेकिन आज के दिन का इतिहास क्या कहता है इस पर भी हम नजर डालते हैं।

श्रोताओं, इतिहास में चलने से पहले एक नज़र फिर से इस पर डालते हैं कि ये जो आज का दिन है बहुत ही खास है। लगभग हर 3 वर्ष में आने वाला ये काल जो शुरू होने वाला है आज से, मानव प्रकृति द्वारा दिया गया ऐसा विराम है जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों, संबंधों और जीवन दिशा का शांत मन से पुनर्मूल्यांकन कर सके। सनातन संस्कृति में पुरुषोत्तम का अर्थ है अपने सामान्य पुरुषार्थ के स्तर से ऊपर उठकर उत्तम की ओर अग्रसर होना। ये पुरुषोत्तम मास आज से शुरू हो रहा है और ये मास मनुष्य को अपनी दुर्बलताओं, भौतिक आकर्षणों और नकारात्मक

0: जो आपकी प्रवृत्तियां होती है उनसे ऊपर उठकर आत्मिक स्पिरिचुअल उन्नयन की प्रेरणा देता है। स्वयं के भीतर झांकने का और जीवन को बेहतर बनाने का ये अवसर बहुत ही सुनहरा अवसर है। मनुष्य जो कि वर्षों तक संसार की आपाधापी में कई प्रकार के कर्म करता रहता है, कुछ शुभ होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं, कुछ विवेकपूर्ण होते हैं तो कुछ आवेशपूर्ण होते हैं। पुरुषोत्तम मास मानो ये संदेश देता है कि व्यक्ति कुछ समय रुककर स्वयं को देखे, अपने कर्मों को तोले, अपनी जो कमियां हैं उनको सुधार करे और इसी कारण इस मास में जप, तप, दान, स्वाध्याय, सत्संग और आत्मचिंतन को विशेष महत्व दिया गया है। श्रोताओं,
1: तो चलिए करते हैं आज के दिन के इतिहास की बात। 17 मई 1975 का दिन था जब जापानी महिला श्रीमती जुनको तेबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी।

और श्रोताओं, आज ही के दिन 17 मई 1987 में जब भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट में संन्यास ले लिया था।

17 मई 2000 जब रूसी सांसद ने ऊपरी सदन फेडरलिस्ट्स में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि की मंजूरी प्रदान की।

0: श्रोताओं, 1949 के दौर की बात करें तो आज ही के दिन यानी 17 मई के दिन भारत ने राष्ट्रमंडल देशों के समूह में बने रहने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया था।
1: और 17 मई 2010 का दिन था जब भारत ने ओडिशा के व्हीलर द्वीप से परमाणु क्षमता संपन्न मिसाइल अग्नि 2 का सफल प्रक्षेपण किया।
0: और इसी साल यानी 2010 में जब भारतीय बॉक्सर्स ने कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सभी 6 स्वर्ण पदक जीत का इतिहास रच डाला था।

प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और बात करते हैं आज के दिन विशेष की। आज यानी 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूर संचार दिवस। दोस्तों, आधुनिक युग में फोन, मोबाइल और इंटरनेट लोगों की पहली जरूरत बन गया है। इनके बिना जीवन की कल्पना करना ही बहुत मुश्किल हो गया है। आज के दौर में जब ये सब चीजें इंसान के व्यक्तिगत जीवन से लेकर व्यावसायिक जीवन तक में पूरी तरह से घुसपैठ कर चुकी है। पुराने दौर में जहां किसी से संपर्क साधने के लिए लोगों को बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, वहीं आज मोबाइल और इंटरनेट ने इसे बहुत आसान बना दिया है। कुछ ही सेकंड्स में अब हम सात समंदर पार बैठे अपने परिवार और सगे संबंधियों से संपर्क कर लेते हैं, यहां तक उन्हें देख भी लेते हैं। यही है दूरसंचार की क्रांति, जिसके कारण भारत आज विकसित देशों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ होने की पूरी तैयारी में है। इस दूरसंचार क्रांति के कारण न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण भारत में भी टेक्नोलॉजी से जो है वो ग्रामीण भारत भी टेक्नोलॉजी से लबरेज होता जा रहा है। विश्व दूरसंचार दिवस मनाने की परंपरा 17 मई 1865 में शुरू हुई थी, लेकिन आधुनिक समय में इसकी शुरुआत 1969 से हुई और तब से ही हर वर्ष 17 मई को ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। दूरसंचार क्रांति एक ऐसी क्रांति है जिसने न केवल देश की छवि बदली बल्कि देश के विकास को रफ्तार दी और देश को विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में लाकर खड़ा करने में भी ये मील का पत्थर साबित हुई। दूरसंचार तकनीक आज हमारे भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देशों में समृद्धि के लिए सहायक सिद्ध हो रही है। इस सेक्टर में हो रहे निरंतर विकास से प्रभावित होकर युवा वर्ग भी अच्छे करियर और अपने उज्जवल भविष्य का सपना संजोकर इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं।

दोस्तों, आज यानी 17 मई के दिन विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी मनाया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप, जिसको हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं, ये उस दबाव को कहा जाता है जो हमारे शरीर में रक्त प्रवाह की वजह से नसों की दीवारों पर पड़ता है। हमारे शरीर में मौजूद रक्त नसों में लगातार दौड़ता है और इसी रक्त के माध्यम से शरीर के सभी अंगों तक पोषक तत्व पहुँचते हैं। आमतौर पर ब्लड प्रेशर इस बात पर निर्भर करता है कि हृदय कितनी गति से रक्त को पंप कर रहा है और रक्त को नसों में प्रवाहित होने में कितने अवरोधों का सामना करना पड़ रहा है। अगर एक स्वस्थ मनुष्य के सामान्य रक्तचाप की बात करें तो वो 120/80 होता है। अगर इससे ज्यादा ब्लड प्रेशर है तो वो उच्च रक्तचाप की श्रेणी में ही आता है। हाई ब्लड प्रेशर आज पूरे विश्व की एक गंभीर समस्या है और उसका कारण है निष्क्रिय जीवन शैली, अत्यधिक तनाव, डायबिटीज, मोटापा, अत्यधिक धूम्रपान, वसायुक्त भोजन, जंक फूड, ये इन सब चीज़ों की वजह से जो है मनुष्य में हाई ब्लड प्रेशर के रोग की संभावना ज़्यादा रहती है। विश्व भर में उच्च रक्तचाप के रोगियों की संख्या जो है वो निरंतर बढ़ती जा रही है और आज के दिन यानी 17 मई को जो ये उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है, इसके माध्यम से पूरे विश्व में लोगों को इसके प्रिवेंशन के लिए, इसके कंट्रोल के लिए और इसके ठीक करने के तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये दिवस एक थीम के साथ मनाया जा रहा है और 2026 की इस दिवस की थीम है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें। ये थीम सही रक्तचाप माप, जागरूकता और सामुदायिक सहयोग के माध्यम से उच्च रक्तचाप के प्रबंधन पर जोर देती है।

0: श्रोताओं, दिन कोई भी हो, वो ऐसे ही खास नहीं बन जाता है, उसे खास बनाना पड़ता है। अब वो चाहे आपके नजरिए से खास बने या चाहे आपके तरीके से, कोशिश तो दोनों ही केसेस में आपको करनी ही होती है। वहीं फिर जब बात संडे की हो, रविवार की हो, छुट्टी वाले दिन की हो, तो उसमें तो जतन करना बनता ही है। और इसीलिए नमस्कार कार्यक्रम में हर रविवार हम हाजिर होते हैं लेकर आपका पसंदीदा सेगमेंट मेहमान का रविवार। श्रोताओं, आज की हमारी खास मेहमान बेहद ही खास हैं, एक सुरीला एहसास हैं और फिलहाल हमारे पास ही हैं, फोन आउट के जरिए हमसे जुड़ चुकी हैं डॉक्टर भूमिका द्विवेदी, भिंडी बाजार घराने की शास्त्रीय गायिका और वर्तमान में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में संगीत विभागाध्यक्ष HOD के पद पर हैं। बतौर कलाकार के रूप में आपने कई शहरों के प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी प्रस्तुति दी है। संगीत के क्षेत्र में उपलब्धियां भी आपकी ढेरों ढेर सारी हैं और राजस्थान में भिंडी बाजार घराने का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व और प्रचार प्रसार करने वाली एकमात्र महिला कलाकार के रूप में राजस्थान सरकार की राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा संगीत के क्षेत्र में राज्य के उच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत डॉक्टर भूमिका द्विवेदी, फोन आउट के जरिए गुफ्तगू करने का हमें उनसे सौभाग्य मिला है और हमारे साथ अभी जुड़ चुकी हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, मेहमान का रविवार नमस्कार कार्यक्रम के सेगमेंट में डॉक्टर भूमिका द्विवेदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है समस्त आकाशवाणी टीम की तरफ से।
1: नमस्कार नेहा जी, और मेरे सभी श्रोताओं को भी बहुत नमस्कार, हैप्पी संडे।
0: जी बिल्कुल,
1: कार्यक्रम में बुलाने के लिए
0: बहुत बहुत शुक्रिया, हैप्पी संडे आपको भी। और सेगमेंट की शुरुआत में ही मैं आपसे पहला जो प्रश्न करूंगी वो यही है कि आप इस व्यस्तता में रियाज को साथ लेकर चलते हुए कैसा अपना रविवार जो है वो खास मनाते हैं मैम?
1: ये बहुत डाइवर्स है, बहुत वेरियस है, लाइक हमेशा एक जैसा रविवार नहीं निकलता है। कई बार मैं अपने पेंडिंग टास्क कंप्लीट कर रही होती हूँ, कई बार मैं किसी जर्नी में होती हूँ, कई बार मैं जोधपुर में नहीं होती हूँ। जैसे आज मैं उदयपुर में हूँ, मेरा घर उदयपुर है और 2018 से मेरी जॉब जो है वो जोधपुर यूनिवर्सिटी में लगी थी, तो मैं 2018 से वहीं, वो मेरी कर्मभूमि है
0: जी,
1: उदयपुर मेरी जन्मभूमि है। तो उदयपुर में जब जब मेरे संडे होते हैं, थोड़े कभी लेजी से होते हैं, आज थोड़ी सुस्ती है और अदरवाइज यहाँ भी घर के कई काम होते हैं, तो बहुत मेहमान यहाँ, थोड़ा हमारे रिलेशंस और ये सब हैं, तो कई गेस्ट होते हैं,

0: जी
1: वेरियस वेरियस मूड्स ऑफ संडे।
0: जी पर कुल मिला के
1: बिल्कुल
0: व्यस्त तो आपका संडे भी रहता है, तो आप
1: बिल्कुल।
0: लेकिन उसे थोड़ा सा अलग बनाने के लिए किस तरह से प्रयासरत रहती हैं और कितना खास उसे बना पाती हैं, ये भी हमारे श्रोताओं से साझा करें।
1: बिल्कुल खास देखिए, वैसे तो ज्यादातर ये होता है कि कोई मुझे अगर कोई असाइनमेंट दे रहा है तो वो ऑटोमेटिकली वैसे खास हो जाता है। कई बार ये होता है कि संडे ही देख करके लोग किसी कार्यक्रम में बुलाते हैं कि आप मैम फ्री होंगी, तो वो उस कार्यक्रम में बुला लेते हैं। कभी मेरा किसी संडे को यहाँ उदयपुर में कभी परफॉर्मेंस वगैरह हो जाती है,
0: जी
1: और कई संडे मैं फैमिली के साथ बिल्कुल उसको टाइम को बहुत किसी आउटिंग पर या ऐसे उसको डिजाइन इस तरह से करते हैं कि थोड़ा समय जो है वो खुशनुमा
0: हाँ
1: जाए, क्योंकि बहुत व्यस्तता तो रहती ही है, सभी की रहती है।
0: बिल्कुल। तो आप ट्रैवल भी करती रहती हैं फिर, आपको उदयपुर से जोधपुर, जोधपुर से उदयपुर आना जाना आपका लगा रहता है। और तो जो संगीत का आपका पूरा ही प्रोफेशन है, शौक भी है, उसे आप कैसे उसमें जिंदा रखती हैं और किस तरह से उसको बिताती है उसके साथ में अपना दिन?
1: ये हमें शुरू से कहा गया है, जब से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी म्यूजिक में, मैं 9 साल की थी, तो मेरे गुरुजी ने तभी मुझे बताया था कि बिना सुने कुछ नहीं होता, बिना सुने आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं
0: जी
1: तो वो बहुत गलत रास्ते पे जाना होगा। तो जितना आप अभ्यास करके उसको अमल में लाते हैं या अपने गले में चीजों को उतार पाते हैं, उससे ज्यादा आप सुन के बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो ये चीजें मैं अब अनुभव कर पाती हूँ। अब तो
0: जी
1: हम बच्चे थे, बहुत गहरी बातें थी, समझ नहीं पाते थे,
0: जी
1: लेकिन अब ऐसा होता है कि ज्यादातर अगर बिल्कुल चलते फिरते मोड पर हैं, जहां पर एक जगह बैठकर साधना रियाज नहीं कर पा रहे हैं, तो ज्यादातर सुनना, अच्छा संगीत सुनना, और उसी से माइंड खुशनुमा भी रहता है
0: जी तो
1: इस
0: ये
1: तरीके
0: जो आपने
1: से।
0: बात की सुनने वाली, मुझे भी पर्सनली मैं बताना चाहूँगी कि ये सुनने वाली जो बात आपकी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे इसलिए लगती है क्योंकि जैसे एक तो होता है कि संगीत में आपको गॉड गिफ्टेड आप हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है, लेकिन सुनने से जो हमने आज तक भी सुना है वो गीत,
1: बिल्कुल
0: वो संगीत जो हमारे मतलब सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, फिर उसके हिसाब से आप जब भी गुनगुनाना चाहेंगे तो वो आपकी प्रैक्टिस में भी आ जाता है और आप अभ्यास कर
1: बिल्कुल।
0: सकते हैं उससे।
1: और एक अच्छी बात यह है कि बहुत चीजें ऐसी होती है जो आपके मन चाही नहीं होती है। कई बार बाहरी दुनिया से बहुत चीजें ऐसी आती है जिनको फेस करने से कभी अपसेट मूड होता है, कभी क्या होता है, लेकिन आप संगीत में अवस्थित रहेंगे, संगीत सुनते रहेंगे तो आप बैलेंस रहेंगे।
0: बिल्कुल बैलेंस्ड हमारा जो तन मन हो जाता है उस संगीत को सुनते ही। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि आपका पूरा ही प्रोफेशन उसी संगीत में है, संगीतमय आपका जीवन व्यतीत होता है। तो मैम संडे का तो आपने हमें बताया कि आप इधर बिजी रहती हैं, इधर उधर आपका ट्रैवल करना रहता है, और क्या आप कुछ और भी शौक रखते हैं संगीत के अलावा भी जो इस दिन में आपको लगता है कि आप उनके साथ समय
1: बिल्कुल
0: बिता पाएँ?
1: यस, मैं पढ़ती हूँ, शॉपिंग करती हूँ,
0: जी
1: कुछ बहुत ही अच्छे, बहुत मतलब मुझे कभी कभी लगता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप जो काम रोज कर रहे हैं, कई लोग संगीत को अलग से निकाल करके उस दिन एक पर्टिकुलर टाइम देंगे या जैसा भी देंगे,
0: जी
1: लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम तो क्योंकि संगीत में रोज हर दिन रहते हैं,
0: जी
1: तो मुझे कभी कभी जब बहुत अच्छा खाली समय मिलता है या मुझे चाहिए कि आज सुकून से कुछ पढ़ा जाए,
0: हाँ
1: तो मैं अच्छा कुछ पढ़ती हूँ, और मुझे स्पिरिचुअल लिटरेचर्स बहुत ज्यादा पसंद है बचपन से ही।
0: अरे वाह
1: और बाकी शॉपिंग करती हूँ,
0: जी
1: मुझे बड़ा मजा आता है शॉपिंग करने।
0: जी आपने ये बात बताई कि स्पिरिचुअल जो आप चीज़ें मतलब जो किताबें हैं वो पढ़ना पसंद करती हैं, लेकिन वो भी बचपन से। तो अभी के दौर में तो मुझे लगता है कि लोग काफ़ी उससे जुड़ने लगे हैं और सुनते हैं, पढ़ते हैं स्पिरिचुअल चीज़ों को, स्पिरिचुअल किताबें पढ़ते हैं, लेकिन आपका बचपन से उसके लिए रुझान रहा है, ये बहुत ही उम्दा बात है।
1: ये दरअसल एक होता है ना, आपका नेचर कैसा है, तो मेरा
0: जी
1: वैसे भी बड़ा शांत सा नेचर रहा है।

0: जी
1: और मीत में रहते हुए उस वक्त ज्यादा शांत था। अब शायद वो दुनिया से थोड़ा रूबरू होने के बाद में थोड़ा बदल भी जाता है, लेकिन मैं एक बचपन जो है मेरा, मैं
0: जी
1: शांत बच्चे की तरह निकला है वो। दूसरा, मेरे घर में साहित्यिक माहौल था,
0: जी
1: तो मेरे पापा के पास जो एक उनकी लाइब्रेरी है, दो अलमीरा भरे हुए उनके पास जो किताबें हैं, उनमें
0: अच्छा
1: ज्यादातर मैंने स्पिरिचुअल लिटरेचर पाया। तो मेरे ख्याल से उसी की वजह से ये वो उसमें मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया, वो पढ़ने
0: हाँ,
1: पर भी
0: कनेक्शन
1: अच्छे
0: बैठ गया
1: लगते।
0: उधर से बिल्कुल। तो आपने जो बताया आपकी शांत जो नेचर है वो पहले था, अभी नहीं है मुझे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा आपसे बातचीत करके। जो जितनी सुरीला एहसास हमें महसूस हो रहा है, जितना शांत स्वभाव आपका।

0: इतनी सुरीला एहसास हमें महसूस हो रहा है, जितना शांत स्वभाव आपका आपकी बातचीत से झलक रहा है, तो वो बिल्कुल अभी भी बरकरार है जी। और भूमिका जी, आपसे बातचीत के सिलसिले में जितना इंस्पिरेशन मोटिवेशन आपसे हमें आपकी आवाज़ को सुन के भी प्राप्त हो गया है, उससे मुझे यकीन है कि श्रोताओं को भी इस बातचीत का भरपूर आनंद उन्होंने उठाया होगा, कहीं ना कहीं इस उम्मीद को भी संजोया होगा कि वे भी इस फील्ड में अपना करियर बनाएं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि हम जो संगीत प्रेमी हैं, संगीत का शौक रखने वाले कोई विद्यार्थी भी यदि हैं, तो वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, किस तरह से अपने शौक को तालीम का रूप दे सकता है, किस तरह से अपना प्रोफेशन उसे बना सकता है। और आप JNVU संगीत विभाग की HOD हैं, तो यूनिवर्सिटी में वर्तमान में इसके लिए कोई प्रवेश प्रक्रिया आई हुई है, तो जहाँ से आवेदन कर सके संगीत प्रेमी विद्यार्थी, वो भी हमसे साझा करें।
1: जी वैसे कई तरीके होते हैं। मैं ओपनली एक बार एक बड़ा खाका बता देना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल तो लोग हॉबी क्लासेस में जा रहे हैं और कई तरह के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो चले हुए
0: जी
1: हैं। हमारे समय में ऐसा होता था कि अगर आप क्लासिकल की ट्रेनिंग ले लेंगे, क्लासिकल वोकल इंस्ट्रूमेंटल जो भी है,
0: जी
1: तो आपका वॉइस कल्चर और आवाज की ट्रेनिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि फिर आप कोई भी गाना गाने में समर्थ हैं। तो
0: अच्छा
1: हम ऐसा करते थे कि जो बचपन से एक गुरु शिष्य परंपरा में, जो कि बिल्कुल रागदारी घरानेदार परंपराएं होती थी, तो
0: जी
1: उस पर जाते थे बचपन से ही, या 8-9 साल की उम्र से, जहां से बच्चों को उसमें डाल देना चाहिए ताकि वो अच्छे से ढल जाते हैं
0: जी
1: उसमें, उसी वक्त उनकी शेपिंग हो जाती है। तो
0: अनुशासन
1: और
0: वाले
1: कुछ,
0: माहौल में
1: बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल जी। तो मुझे, आप ताजुब करेंगी, मैं जब क्लास में जाती थी तो मुझे 3 घंटे तक, मतलब, और मुझे कुछ विशेष, कुछ उसमें ऐसा नहीं होता था कि आज मेरा यही सबक है या ये सिखाया जाएगा, मुझे कुछ पता नहीं होता था कि सिखाया क्या जाना है, आज का क्या क्लास वर्क है, ऐसा कुछ नहीं होता था। और तब मैं इन सब चीजों को सिर्फ देख रही थी, क्योंकि स्कूल जाते थे तो
0: जी
1: वो एक अलग ढर्रा था, तो
0: हाँ
1: स्कूल में क्लास वर्क होता था, घर आके होमवर्क होता था, वहां बैठे रहते थे, पता ही नहीं चलता था 3 घंटे तक बैठे हैं और कुछ कर नहीं रहे,
0: अच्छा
1: बस सुन रहे हैं, सर कुछ गा रहे हैं, वो किसी को सिखा रहे हैं ये। अब लेकिन ये होता था कि वहां बैठे बैठे उन 3 घंटे में कभी भजन सुना, कभी गजल सुनी, कभी कुछ और सुना, कभी कोई राग सुनी, कभी पलटे तैयार किया करवाए जा रहे हैं। तो वो सब कॉन्शियसली उस वो कब मेरे अंदर उतर गया इसका मुझे पता नहीं चला। मुझे धीरे धीरे, जब मैं 10th 11th में जब मैं आई, और इलेवेंथ
0: हाँ
1: में जब मुझे सब्जेक्ट का चुनाव करना था,
0: जी
1: 11th में आकर के,
0: जी
1: तब तब तक मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया था कि मैं शायद इसी के लिए बनी हूँ। 11th
0: अरे वाह
1: में मैंने म्यूजिक सब्जेक्ट का चुनाव किया। तो मैं इसी तरीके से इस बात को बताना चाह रही हूँ कि बहुत चीजें हैं गुरु शिष्य परंपरा में आप सीख सकते हैं। आजकल कई हॉबी क्लासेस जो इस तरह से चल रही हैं वो भी होती हैं। आप स्कूल से ही एक सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं कि आपने आर्ट्स लिया और म्यूजिक लिया। तो हमारे यहाँ JNVU में अभी प्रवेश प्रक्रिया शुरू है, और इसमें अब NEP, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के तहत स्पेशलाइज्ड ग्रेजुएशन का
0: जी
1: मोड आ चुका है। सब्जेक्ट अभी भी 3 ही चुनने होते हैं, जो कि BA की प्रवेश प्रक्रिया में होते थे, लेकिन सब्जेक्ट्स का एक ग्रुप होता था, कोई कॉम्बिनेशन ग्रुप होता था। नाउ इट इज ओपन फॉर एवरी फैकल्टी,
0: अच्छा
1: किसी भी फैकल्टी, किसी भी विषय, चाहे वो साइंस
0: किसी भी स्ट्रीम से पढ़ रहा
1: स्ट्रीम
0: हो,
1: का
0: साइंस
1: है, हाँ
0: बैकग्राउंड। हाँ
1: साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहा है, चाहे वो मैनेजमेंट से है, कॉमर्स वगैरह, तो वो, लेकिन मल्टीपल क्रॉस सिलेक्शन में कोई
0: हाँ
1: सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं।
0: जी, तो ये एडिशनल रहेगा सब्जेक्ट जैसे कि आपने बताया, या
1: ये सब्जेक्ट जो होता है वो माइनर सब्जेक्ट में, या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी, और या एक एक एक चीज और है, स्किल। 3 तरह के ऐसे हैं जिसमें कोई बाहर की फैकल्टी से इस सब्जेक्ट को चूज करता है। अदरवाइज जो किसी सब्जेक्ट में, विषय में ही जो डिग्री लेगा, उस
0: जी
1: बच्चे को तो 2 मेजर पेपर उसी विषय में, जैसे संगीत में अभी कोई 2 मेजर विषयों का चुनाव करता है, 2 मेजर पेपर का, सॉरी,
0: जी
1: तो वो दो मेजर पेपर चूज करेगा, एक माइनर करेगा किसी और

0: तीन से।
1: अच्छा,
0: तो उसको दो मेजर चुनने पर बीए इन म्यूजिक की डिग्री दी जाएगी।
1: ओके,
0: एक साल या दो सेमेस्टर करता है तो सर्टिफिकेट मिलेगा, दो साल हो जाते हैं, चार सेमेस्टर हो जाते हैं तो डिप्लोमा मिलेगा
1: जी,
0: और तीन साल पर डिग्री, चार साल पर ऑनर्स।
1: वाह, बहुत ही, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि बीए इन म्यूज़िक अलग से भी ऐसा हो सकता है अगर दो मेजर, जैसा कि आपने बताया दो मेजर आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं, पेपर रहते हैं म्यूज़िक में। ओके, और उसके अलावा
0: हाँ, ये है कि बच्चे अभी कुछ इस चीज़ को थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं, तो अगर सुन रहे हैं और म्यूज़िक लेना चाहते हैं तो मैं बताना चाहूँगी कि अगर जहाँ तक हो सके आप इसके कॉम्बिनेशन के सब्जेक्ट्स अगर लेंगे, जैसा दो मेजर पेपर म्यूजिक के ले लिए और माइनर में या तो फाइन आर्ट्स हो गया या साइकोलॉजी हो गया या ज्योग्राफी या फिर साहित्य का कोई पेपर हो गया, क्योंकि कला, कलाओं से जो जुड़े हैं वो कला या साहित्य से ही जुड़ा हुआ कोई और भी विषय लेंगे तो
1: उससे फ़ायदा भी होगा। हाँ बिल्कुल, कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, ज्योग्राफी आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं और कॉम्बिनेशन जो आर्ट्स में ही अगर बैठा है म्यूज़िक के साथ तो वो बढ़िया।
0: उसके अलावा अगर बिल्कुल किसी और स्ट्रीम में लेना है तो वो तो वैसे भी आपके लिए ओपन है ऑप्शन, क्योंकि स्किल और मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का ऐसा दो पेपर है जो कि आप थर्ड सेमेस्टर से आप उनका चुनाव कर सकते हैं
1: जी,
0: तो वो एक स्किल एनहेंसमेंट के लिए है। वो म्यूजिक का बच्चा हो तो भी साइंस का कोई पेपर ऐसा ऑप्ट कर सकता है या कॉमर्स का कर सकता है
1: जी,
0: और साइंस का है तो आर्ट्स का कर सकता है, तो ये तो ओपन है बिल्कुल किसी के भी लिए।
1: तो इसके लिए जो आवेदन करना होगा अगर किसी स्टूडेंट को, तो वो अभी से इसकी प्रक्रिया चालू है?
0: हाँ जी, ये 15 तारीख से, अभी जो 15 तारीख गई है और तभी से शुरू हो गई है
1: जी,
0: और ये पूरी ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। बिल्कुल स्पष्ट है इस बार कि कोई हार्ड कॉपी या फॉर्म सबमिट करना नहीं है, वो ऑनलाइन ही होगा और काउंसलिंग भी ऑनलाइन ही होगी
1: जी। ओके, तो और इसकी जो फीस होगी वो भी काफी मिनिमल ही होगी?
0: हाँ, फीस मिनिमल है और अभी लेट फीस के साथ, अभी मतलब विदाउट लेट फीस तो ये 25th तक इसकी डेट ओपन है
1: जी,
0: एंड विद लेट फीस इट वुड बी 1st June।
1: ओके,
0: 1 June तक ये
1: जी। तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये सेशन रहा आपसे बातचीत का, कि कोई भी संगीत प्रेमी स्टूडेंट, विद्यार्थी, शोधार्थी, कोई भी इसमें अपना स्किल एनहेंसमेंट भी करवा सकता है, कर सकता है, उसके लिए एनरोल कर सकता है और साथ ही जो डिग्री कोर्सेज हैं उसके लिए भी आवेदन कर सकता है
0: जी।
1: बहुत ही अच्छा आपसे बातचीत करके हमें लगा, और इस इंस्पिरेशनल और इतनी इन्फॉर्मेटिव बातचीत के जिस सिलसिले में आपसे हमारी जो रूबरू हुए हैं, हम बहुत ही अच्छा लगा, और हम श्रोताओं के लिए आपसे एक संदेश आखिर में चलते चलते सुनना चाहेंगे कि क्या, किस तरह से वो अपने इस शौक को तालीम में बदल सकते हैं।
0: देखिए, मैंने तो हमेशा इस बात को अपने ध्यान में जिंदा रखा है कि मुझे एक बार बहुत अच्छी लगी थी, बहुत शुरुआत में ही मेरे पिताजी ने कहा था कि कोई भी कला को अपने जीवन में साथ में जरूर रखना चाहिए, कोई भी आर्ट साथ में होनी चाहिए, तो वो कोई भी आर्ट हो लेकिन आपका वाकई में जीवन आसान बना देती है। बहुत पल ऐसे आते हैं जीवन में जब आप बहुत उलझे हुए होते हैं, शायद आप किसी से बात करना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन वो जो कलाएं आपके साथ होंगी तो उनके माध्यम से वो समय जो है वो बहुत अच्छे से निकल जाता है, आप उससे बाहर आ पाते हैं।
1: जी भूमिका जी, आपसे बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा और आपकी बात, आपकी जो आवाज़ है वो इतनी सुरीली है, हम चाहते हैं, हमारे श्रोता भी चाहते होंगे इस बात को कि हम आपसे कोई आपका पसंदीदा गाना आपसे सुने और उसी को हम फिर प्ले भी करेंगे।
0: अच्छा
1: जी,
0: एक सॉन्ग है सुनो फिर जना पपी है, नहीं थोड़ा क्लासिकल पे
1: जी, क्लासिकल आपका टेस्ट है बिल्कुल,
0: मैं तो लाइन इसकी गुनगुनाती हूँ, आप इसे बजाइए श्रोताओं के लिए, उन्हें बहुत पसंद आएगा मेरे ख्याल से
1: जी।

0: वाह वाह, बहुत ही सुरमई आपकी आवाज़, उसमें हम बह गए, श्रोता भी अवश्य बह गए होंगे उसमें। आपसे बात करके हमें बहुत बहुत ज़्यादा सौभाग्य जो हमें ये मिला है इतना, और बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमसे जुड़े, हमसे रूबरू हुए, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें बताई। आप हमारे साथ में फिर से कभी बातचीत का जो दौर है वो कभी हमारे साथ बनाए रखें, और आज की इस सेशन के लिए आपका बहुत शुक्रिया पूरी आकाशवाणी टीम की तरफ से।
1: थैंक यू सो मच नेहा जी। मैं अवश्य, मुझे बहुत अच्छा लगता है आकाशवाणी पर आप लोग बुलाते हैं मुझे आना, और मैं खुद अभिभूत हूँ आकाशवाणी परिवार के इस प्यार के लिए।
0: जी
1: बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए।
0: जी, हमारे साथ फिर से जुड़ते रहिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू। हैप्पी संडे।
0: हैप्पी संडे टू यू टू मैम।

और दोस्तों प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ें और आज के दिन की खास बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पेट्रोल और डीजल को बचाने का आह्वान किया है उसी के चलते हमारे शहर में भी पेट्रोल और डीजल बचाने का जागरूकता अभियान तेज हो गया है। और इसी दौर में शनिवार शाम पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी साइकिल पर गश्त के लिए निकले। जालोरी गेट से शुरू हुई इस साइकिल गश्त ने शहरवासियों को सिर्फ पेट्रोल और डीजल बचाने का ही संदेश नहीं दिया, इसके साथ साथ ये भी समझाया कि हमें पर्यावरण को भी संरक्षित करना है, प्रदूषण से बचाना है। ये थी हमारी आज की खास बात। और अब करते हैं हमारे आज की काम की बात। गर्मी बहुत तेज पड़ने लगी है, इतनी तेज कि हम इंसानों के शरीर तो पसीने से तर बतर रहने लगे हैं, लेकिन नदियों और समुद्र का जो पानी है वो एवेपोरेट होकर उड़ने लगा है। ये एक सुखद एहसास भी है कि मानसून भी जल्दी ही आएगा। बारिश की फुहारें जो हैं हमारे मन को इतनी गर्मी के बाद जब वो गिरती हैं तो आनंदित कर देती है, लेकिन बारिश के मौसम

के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि बारिश के मौसम के साथ जब लगातार बारिश होती है तो घर में संद का माहौल हो जाता है। संद के कारण अपने घर के सामान के रखरखाव की, उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है। तो आज के काम की बात में हम बात करेंगे कि बारिश के मौसम में हम रुई के गद्दों को, तकियों को और अलमारी में पड़े हुए हमारे कपड़ों को किस तरीके से सुरक्षित रखें। तो बहुत ज़रूरी है कि उनको नमी से निकाल करके धूप दिखाई जाए। रुई नमी बहुत जल्दी सोखती है, इसलिए धूप गद्दों को धूप दिखाएं, तेज़ धूप में रखें कम से कम 2-3 घंटे, ताकि उनके अंदर जमी नमी बाहर निकले, बदबू बाहर निकले। पंखे की हवा में रखें और जहां पर आप कपड़ों को रख रहे हैं वहां पर नेफ्थलीन बॉल्स या नीम की पत्तियां रखकर उन्हें थोड़ा सा नमी से और बदबू से सुरक्षित रखें। और चलते चलते आज हम 17 मई के दिन गजल गायक पंकज उधास को उनके जयंती दिवस पर याद करते हैं और आपको सुनवाते हैं उन्हीं की ये खूबसूरत गजल।

मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सवेरे के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं बच्चों का पसंदीदा कार्यक्रम चुनमुन।

जय हिंद बच्चों, चुनमुन सुनने वाले सभी नन्हे मुन्ने श्रोताओं को नम्रता दवे का प्यार भरा नमस्कार। बच्चों कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना भाई? अब तो बहुत अच्छे होंगे क्योंकि गर्मी की छुट्टियां शुरू जो हो गई हैं। और आपको पता है बच्चों, कितना मज़ा आता है ये सोच सोच के कि अब तो नानी के घर जाएंगे। नानी के घर जाएंगे और दूध मलाई खाएंगे, मोटे ताजे होकर आएंगे, है ना? तो बच्चों आज दीदी करेगी यही बातें, कहानियाँ और नानी के घर में छुपा हुआ खजाना। दीदी को सब कुछ पता है, लेकिन क्यों ना पहले सुन लिया जाए ये प्यारा सा गाना।

बिल्कुल बच्चों, नानी का घर सबसे प्यारा घर होता है, लेकिन आपको पता है बहुत इंतज़ार करती है नानी पूरे साल भर कि अब मेरे बच्चे आएंगे और मैं उनको आम खिलाऊंगी, है ना? आप भी तो नानी के घर जाके बहुत आम खाते हैं और वो सबसे पहले क्या कहते हैं, देखो मेरा बच्चा कितना दुबला हो गया है ना? ऐसी ऐसी बातें सुनने के लिए कान तरस से जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मम्मी तो हमेशा कहती है कुछ नहीं करते हैं, मोबाइल देखते हैं, है ना? ऐसी बातें ही आती है ना भाई। नानी की नज़र में हमेशा जो बच्चे होते हैं वो हमेशा कमज़ोर ही रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब ये मेरे पास आ गए हैं ना, अब मैं इनको मोटा ताज़ा करके भेजूंगी। पर बच्चों, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो नानी के घर जाकर हमें बहुत मज़े करती हैं। जैसे अगर हम वहाँ पर गए हैं तो भाई बच्चों की तरह अगर मैं सोचूं तो बच्चे सोचते हैं अब हमारी छुट्टियाँ हो गई हैं, अब हम मोबाइल देखेंगे, अब हम और कुछ नहीं करने वाले हैं। लेकिन उसी के पलट नानी सोचती है कि अब मेरे बच्चे आए हैं और मैं उनसे खूब सारी बातें करूँगी। लेकिन बच्चों, आप लोगों को पता नहीं क्या होता है, भर भर के आप सो जाते हैं और चुटकियों में टाइम निकल जाता है, और जिस दिन आपको वापस अपने घर लौटना होता है उस दिन आप सोचते हैं नानी से तो हमने बातें करी ही नहीं, हमने तो खाली मोबाइल देखा, आम खाया और हमने कुछ सीखा भी नहीं। तो बच्चों, क्या ये अच्छी चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नानी के पास अनमोल खजाना है, उनकी कहानियों में भी रहस्य छुपा है। और आपको पता है जो नानी सिखाएगी ना बच्चों, वो और कोई नहीं सिखा सकता, वहाँ पर दादी सिखाएगी और यहाँ पर नानी सिखाएगी।

बिल्कुल बच्चों, दिमाग में बहुत मस्ती सी आई हुई है, लेकिन जब हम ट्रेन में जाते हैं, जब हम किसी और के यहाँ जाते हैं, तो आपको पता है एक मन में खुशी सी लहर दौड़ जाती है। लेकिन वहीं जाके जब हम आलस से भरपूर अपना आदत बना लेते हैं।

वहां पर जैसे कुछ काम नहीं करना, बस सोए रहना, खाना पीना और सोना, और शाम के टाइम में थोड़ा सा घूमना। तो बच्चों, आपको पता है वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। अगर आपने ये वक्त गवा दिया तो आप कुछ नया सीखेंगे कैसे, है ना? तो सबसे अच्छी बात है मामा मामी को पटा के रखना बहुत जरूरी है बच्चों। और वो कैसे कर सकते हैं भाई, मामी भी तो अकेले किचन में थक जाएगी, कितना काम करेगी। तो क्यों ना जो नन्हे मुन्ने सुपरमैन है, सुपर वुमैन है, सुपर गर्ल है, क्यों ना वो अपनी मामी के साथ काम में हाथ बटाएं। क्योंकि जब हम अकेले बैठे होते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे बेकार ख्याल आते हैं, तो और फिर मन करता है कि मैं मोबाइल देखूं, मैं मोबाइल में गाने सुनूं, कार्टून देखूं, तो उससे आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। तो क्यों ना सुपर गर्ल बना जाए और सुपर बॉय बना जाए, है ना? मामा मामी को आप पटा लेंगे तो उससे सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि शाम के टाइम में आपको घुमाने वो ही तो ले जाएंगे, और वो तारीफ भी करेंगे कि देखो बच्चे कितने संस्कारिक हैं। और संस्कार सीखने होंगे तो आपको किसके पास जाना होगा, आपको जाना होगा अपने नाना जी और नानी जी के पास। उनके साथ आपको सुबह रोज मंदिर जाना होगा, वहां पर आपको श्लोक सीखने होंगे, है ना? तब आप स्कूल में आके बड़े गर्व से बोल सकते हैं अपने टीचर को कि मॉर्निंग असेंबली में श्लोक तो हम ही बोलेंगे, क्योंकि हमारे नाना नानी जी ने हमें ट्रेन जो किया है। और सबसे अच्छी चीज़ कि जब आप ये सब करेंगे ना बच्चों, आप कुछ अलग करेंगे, यानी कि पूरे साल भर पढ़ते पढ़ते जो बच्चे थक जाते हैं उनको कुछ नया करने का मौका मिलेगा। और वो जो एहसास होगा बच्चों, वो आपके पापा को भी गर्व से भर देगा, और पापा बोलेंगे प्राउड ऑफ यू।

0: ਵਾਲ ਆਉਣ।
1: तो बच्चों, गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही सबसे पहले दिमाग में आता है कि हम घूमने कहाँ जाएं। दीदी ने ये तो कह दिया कि घूमा करें, लेकिन घूमने जाना कहाँ है भाई? किसी को पहाड़ पसंद है, किसी को वाटर पार्क, तो किसी को बस घर पर रहकर मोबाइल चलाना। लेकिन अगर छुट्टियों में थोड़ा मजा, थोड़ा एडवेंचर और थोड़ी अलग सी कुछ बात हो जाए तो कितना मजा आए। यानी कि बच्चों, दीदी बात कर रही है कि अगर हम अपने इतिहास के बारे में जानें तो हम सीख भी सकते हैं और घूम भी सकते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए आप मेहरानगढ़ फोर्ट पहुंचते हैं, तो दूर से जब हम देखते हैं एक विशाल किले को, तो बच्चों को लगता है कि शायद पता नहीं अंदर कैसा होगा, ये क्या कहानी होगी। हम पूछते हैं आजू बाजू से, लोगों से, अपने फ्रेंड से, लेकिन बच्चों, वो जो खबरें हमें मिलती हैं उसमें कुछ मज़ा नहीं होता। क्यों ना आप खुद जाएं, म्यूजियम में देखें, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, आपको सीखने को मिलेगी। और ऐसा ही नहीं बच्चों कि आप जोधपुर में ही देखें, आप जयपुर जा सकते हैं। जयपुर में हवा महल है, म्यूजियम सिटी पैलेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ से दूर जाएं तो ताजमहल जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बच्चों जिनके बारे में आप घूम भी सकते हैं और उनके बारे में जान भी सकते हैं। क्योंकि बच्चों, भारत की ऐतिहासिक जगह बच्चों को सिर्फ पुरानी बातें नहीं सिखाती, बल्कि ये भी समझाती है कि बिना मशीनों और तकनीक के लोग कितनी अद्भुत चीज़ें बना लेते थे। और अगर आप जैसे कुतुब मीनार देखेंगे तो हर बच्चा सोचता है इतनी ऊंची मीनार आखिर बनाई कैसे होगी। तो सच कहें बच्चों, बड़ों को भी इसका जवाब अच्छे से नहीं आता है। तो क्यों ना आप जाएं, वहां पढ़ें और देखें, और फिर उसके बाद वापस आके अपने दोस्तों से क्वेश्चन करें कि तुम्हें क्या ये पता है, तुम्हें क्या वो पता है। बच्चों, घूमने जाएं तो ऐसी जगह जाएं जहां आप कुछ सीख सकें।

तो बच्चों, गर्मी की छुट्टियों में आज आप जो सुन रहे हैं कार्यक्रम, वो है चुनमुन। और आप जिनके साथ सुन रहे हैं, वो है नम्रता दीदी के साथ। तो बच्चों, आपने कोई दीदी ने ये तो बता दिया कि घूमने कहाँ कहाँ जाना चाहिए, लेकिन घूमने जाएंगे तो हमें ट्रेन से जाना होगा, है ना? अब बात आती है कि भाई पैकिंग कैसे किया जाए। अक्सर बच्चों की आदत होती है, जो उनकी बहुत फेवरेट चीज़ होती है ना, पसंदीदा चीज़ें होती हैं, वो सारी एक साथ ले लेते हैं। ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, ये इसके बगैर तो हमें सांस भी नहीं आ सकती, इसके बगैर हमें भूख भी नहीं लग सकती। तो बच्चों, मम्मी की हालत ऐसी हो जाती है कि हम शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, है ना? ऐसा आपको सुनने को मिलता है ना? तो भाई आपको टेंशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ कौन है? नम्रता दीदी। तो बच्चों, इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज़ करनी होगी, यानी कि इमरजेंसी हीरो की तरह आपको बनना होगा। जैसे अगर 3 दिन का ट्रिप है तो 3 अच्छे सेट ले लें, अगर एक एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, क्योंकि भैया आप बच्चे जो हैं समुद्र के पास पास जाएंगे तो गीले तो होंगे कपड़े, तो ठीक है 1-2 एक्स्ट्रा ले सकते हैं। लेकिन खिलौने अगर आप ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 4-5 खिलौने आपने एक साथ ले लिए, बिल्कुल नहीं बच्चों। खाली एक जो आपका बहुत फेवरेट है वो आप ले सकते हैं। बैग में एक छोटा सा पॉकेट, सुपर हीरो पॉकेट बनाइए, जिसमें पानी की बॉटल, टिश्यू, सैनिटाइज़र, छोटा स्नैक या ज़रूरी दवाइयाँ, वो आपकी मम्मी आपको बता सकती हैं। जैसे आप छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं तो अक्सर जब वेदर चेंज होता है तो थोड़ा एलर्जी हो जाती है ना? तो आप मम्मी को याद दिला सकते हैं, मम्मी क्या मेरी कोई दवाई आपको लेनी है? तो मम्मी को लगेगा, वाह ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, देखो बच्चे कितने समझदार हो गए हैं, है ना? और हमेशा ध्यान रखें बच्चों कि बैग इतना भारी कभी ना बनाएं जो आप खुद ना उठा सकें, यानी कि पापा को देखकर मासूम चेहरा बनाना पड़े कि ये हमसे उठेगा भी नहीं, अब आप हमें डांटना मत। लेकिन बच्चों, अगर आप घूमने जा रहे हैं तो याद रखें, आप उतना ही लगेज लें जितना आप कैरी कर सकते हैं, तब घूमने में मज़ा आएगा और मम्मी हो जाएगी बहुत खुश, क्योंकि उनको लगेगा कि भाई मेरा बच्चा तो सबसे सुपर हीरो है, क्योंकि उसको सारी समझ है ना? करेंगे ना बच्चों? तो दीदी की बात आपको माननी बहुत ज़रूरी है।

बिल्कुल बच्चों, सेल्फी तो ले लेकिन बहुत ध्यान से, है ना भाई? सेल्फी लेने में चूक न जाना, ये गाना बहुत अच्छा है, सेल्फी ले लेकिन बहुत ध्यान से।

तो बच्चों, चुनमुन का सफर अब खत्म होने को है। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, लेकिन उससे पहले करते हैं चुनमुन की टीम से रूबरू। कंट्रोल रूम में मिस्टर प्रवीण कुमार, कंसोल पर हैं शुभम और मैं आपके साथ नम्रता। तो अब दीजिए अनुमति। जय हिंद।

मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं अदनान सामी और आशा भोसले की आवाज में ये गीत।

लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम का ये आखिरी नगमा, पंकज उदास की आवाज़ में बोल है शहीद राही के, और इस गीत को अपनी धुन से सजाया है पंकज उदास ने।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। वक्त हो रहा है फिल्म संगीत का।

अब आप सुनेंगे फिल्म कोई मिल गया से ये गीत, उदित नारायण, अलका याग्निक की आवाजें, इब्राहिम अश्क के बोल और राजेश रोशन का संगीत।

आप सुन रहे हैं साल 2001 में आई फिल्म कभी खुशी कभी गम का ये गाना। सोनू निगम, अलका याग्निक की आवाजें, संदेश शांडिल्य का संगीत और बोल अनिल पांडे के।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म परदेस का ये गाना, कुमार सानू के बोल, माफ कीजिएगा, कुमार सानू की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल और नदीम श्रवण का संगीत।

फिल्म संगीत कार्यक्रम के आखिर में आप सुन रहे हैं फिल्म दिल से का ये गाना। उदित नारायण, महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ें, गुलजार के बोल और ए आर रहमान का संगीत।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त हो रहा है लोक संगीत का।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार का रिले किया जाएगा।
1: प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंच रहे हैं। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी अपनाने, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। श्री मोदी की 2018 में स्वीडन की यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच भागीदारी बढ़ी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। विधि और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन से मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 38 हो गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने भर्ती परीक्षाओं में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों और गलत उत्तर कुंजी को लेकर बार बार याचिकाएं आने को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव को कहा है कि वे कार्मिक सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ आईएएस अफसरों की एक हाई लेवल कमेटी का गठन करें। ये कमेटी इस विषय पर गहन परीक्षण कर भविष्य की भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और शुचिता सुनिश्चित करने के लिए एसओपी बनाने के साथ ही अन्य सुधारात्मक उपाय भी निर्धारित करेगी। अदालत ने कहा कि कमेटी ये भी परीक्षण करेगी कि क्या ऐसे प्रश्न और उत्तर कुंजी तैयार करने वाले अधिकारियों और विशेषज्ञों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 लेवल द्वितीय को लेकर दायर 45 याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्र कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि बार बार चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में नहीं है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बीच विकास कार्य प्रभावित होते हैं, आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं, पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और शिक्षा, बैंक तथा सरकार के संबंधित विभागों पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी ने कल अजमेर से 3 नई नियमित साप्ताहिक ट्रेनों का शुभारंभ किया। इनमें अजमेर बांद्रा साप्ताहिक एक्सप्रेस, अजमेर दौंड साप्ताहिक एक्सप्रेस और अजमेर बांद्रा एक्सप्रेस शामिल है। मंडल रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा ने ये जानकारी दी। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है। आज के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और उससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। आज ही विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी है। इसका उद्देश्य

0: उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। नागौर के अजमेर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर हुई एक दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल हो गए। यह हादसा चकढ़णी गांव की सीमा पर एक बस और कार की आमने सामने की टक्कर से हुआ। कार सवार सभी यात्री बुटाटी के पास संत चतुर्दास महाराज के मंदिर जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं कृषि जगत।

0: किसान भाइया, गर्मी रो मौसम चल रियो है और किसान भाई खेता में भांत भांतरी जी की फसला है, सब्जियां है वे ले राखी है। और खास तौर से बात करा तो सब्जियां किसान भाई खूब सारी ले राखी है और इन रुद्र महीने जी की सब्जियां ले राखी है। ऐसे अगले कुष्माण कुलरी सब्जियां बाजिया करे। किसान भाइया, आपने जानकारी देवा आज के कुष्माण कुलरी जी की सब्जियां है, उन्हारा महीने रोग नियंत्रण अपा किन तरह से राख सका। कुष्माण कुलरी सब्जियां महीने कद्दू वर्गीय सब्जियां ने नाम से भी अपा जाना, जिन महीने आप बात करा लौकी है, कद्दू है, टिंडा है, करेला, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा ऐसे कला आया करे। और इन सब्जियां मैंने विटामिन ए, सी, कैल्शियम, आयरन राज्य का स्रोत है, यह भरपूर मात्रा मैंने हुआ करे। और प्रमुख रूप से बाजार मैंने इन सब्जियां की मांग भी रिया करे। इन सब्जियां मैंने प्रमुख रूप से किसान भाई पर बात करा तो लाल मकड़ी आला गया करे, इंड जी की शिशु निम्प जी का होया करे और वेश दोनों ही अवस्थर मैंने पौधा ने हानि पहुंचाया करे। मकड़ी पतियारी जी की निचली सतह है, उठे लाग जा और रस चूस पर नुकसान करिया करे, जिनसु पतिया माते सफेद धब्बा जी का है बन जा, जका बाद मैंने भूरा रंगरा हो जाया करे। आपरे बुनुड़ा रेशमी जाला पत्तियां ढकले और हवा चाले तो जमीन मिट्टी राज्य का कण है ए जाला माते लग परा और उनार और सघन बना दिया करे। इनसु पत्तिया महीने प्रकाश संश्लेषण जी की क्रिया है आ खत्म हो जाया करे, जिनसु प्रभावित हो परी और पत्तियां गिर जा और फूल और फल दोनों ही कम लागिया करे और उत्पादन रहे मात्रा रहे मैंने भी भारी कमी आया करे। हमें किसान भाई सामने आया कि भाई लाल मकड़ी लागी है तो इंडो नियंत्रण आप किन तरह से कर सका। इनारे नियंत्रण वास्ते इथियोन 50 ईसी 0.6 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना परा और छिड़काव करना चाहिए। कुष्माण कुलरी सब्जियां मैंने जिको रोग है फल मक्की सु भी लागिया करे, प्रोड और लट दोनों ही अवस्था मैंने पौधा ने नुकसान पहुंचाया करे। प्रोड मक्खी आपरा जी का अंड निक्षेपक है, उन्हें मदद सु फला रमाइने छेद पर परार गुद्दा रमाइने अंडो दे दिया करे। बारू इन छेदा ने एक लसदार पदार्थ वापस बंद कर दिया करे। अंडा सु 3-5 दिन रमाइने लट बन जा और फला ने महीनो महीनो खावनो हरू कर दिया करे। जिनसु कही वे के जिको फल है और एकदम सड़ने लाग जा, बारू बहुत बढ़िया दिखे, महीनो हट जा और बिल्कुल फल गिर जाए करे। नियंत्रण वास्ते किसान भाई कहीं कर सके, काणा जी का फल है वहाँ हेंगू पहला तो तोड़ दा और भूमि रमाइने गहरो गड्ढो खोद परान उठे नष्ट कर देना चाहिए। मेलाथियन 50 ईसी 1 मिलीलीटर रो प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना परा अनापाने छिड़काव करना चाहिए। और जिकी वैश्विक मक्खिया है उनारी रोकथाम रे वास्ते प्रलोभक रोग जो घोल है वो बना परा और मिट्टी रा प्याला रा मैंने 50 मिलीलीटर घोल प्रति प्याला डाल परार खेत में जगह जगह माते रख देना चाहिए, जिनसु भी इन रोजो को खात्मा है और हो जाया करे। तुलसी का रोग भी लागिया करे, रोग रा प्रमुख लक्षण वो है के पतियारी जी की ऊपरी सतह है आ पीला रंग रा धब्बा अटे पड़ जा और निचली जी की सतह है वो कवक रमाइने वृद्धि होने लाग जा। उग्र अवस्था रमाइने रोग ग्रसित पतियां जी की है ए जड़नी हरू हो जा और फल जी का है वे ठीक तरह नी लागिया करे। नियंत्रण वास्ते किसान भाई कहीं करे के मैनको जेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना परा और छिड़काव करे। इनरे हाथे हाथे कुष्माण कुलरी जी की सब्जियां है उन मैंने झुलसा रोग भी लागिया करे, रोग रे प्रकोप सु पतिया माते भूरे रंगरी जी की छल्लेदार धारियां है ए बन जा। नियंत्रण वास्ते किसान भाई कहीं कर सके, टेबू कोनाजोल 50% रसाते ट्राई फ्लोक्सी ट्रोबिन 25% या कार्बेंडाजीम 12% रसाते मैनको जेब 63% रो 1 ग्राम प्रति लीटर में घोल बना परा और छिड़काव करे। जरूरत पड़े तो और जो छिड़काव है 15 दिन री छेती माते एक दान भले कर लेना चाहिए। किसान भैया आ ही जानकारी के कुष्माण कुलरी जी की सब्जियां हैं उन्हें मैंने रोगो रो नियंत्रण आपा किन तरह से राख सका। कृषि जगत कार्यक्रम रो टेम पूरो वेरियो है। दिनेश राणे जाने शेख दिराओ, राम राम।
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कृषि जगत।

0: पंछी बनकर उड़ना है मुझे, ख्वाबों के बादल छूना है मुझे।
1: रोक सकेगी क्या ये दुनिया, अपनी मंजिल तक पहुंचना है मुझे। सखियों, आज नारी वाटिका कार्यक्रम में आप अपनी दो सखियों मधु बनर्जी और
0: मकसूदन के साथ चलेंगे आसमान की उड़ान के सफर पर।
1: तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

0: पंछियों की उड़ान, सुबह की पहली किरण, खुले आसमान में फैले बादल और उन बादलों को चीरते हुए उड़ते छोटे छोटे पंछी। कभी सोचा है सखियों, इन पंछियों की जो उड़ान है वो हमें क्या सिखाती है? ना कोई शिकायत, ना कोई डर, बस पंखों पर भरोसा और आसमान को छू लेने का हौसला।
1: ये नन्हे पंछी सिर्फ आसमान में नहीं उड़ते मधु, बल्कि इंसान के टूटे हुए हौसलों को भी उड़ना सिखाते हैं। जब एक छोटा सा पक्षी अपने घोंसले से पहली बार बाहर निकलता है तो उसके सामने पूरा आसमान होता है, लेकिन साथ ही डर भी तो होता है।
0: हाँ मकसूदन, लेकिन फिर भी वो उड़ता है क्योंकि उसे भरोसा जो होता है, यदि गिरा तो फिर संभल जाऊंगा। शायद जिंदगी भी यही है, डर के बावजूद आगे बढ़ना।
1: पंछी हमें बताते हैं कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल हो, अगर हौसले जिंदा हो तो उड़ान कभी नहीं रुकती है।

0: क्यों परिंदे जो है वो जब उड़ान भरते हैं ना तो उन्हें यकीन नहीं होता कि रास्ते आसान होंगे, लेकिन उन्हें अपने जो पंख हैं उन पर भरोसा होता है।
1: शायद यही आत्मविश्वास है जिंदगी में जीतने के लिए। हर बार मजबूत होना जरूरी नहीं, खुद पर विश्वास होना भी जरूरी है।
0: कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ देती है। लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगी और हालात भी कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अंदर कहीं एक छोटी सी आवाज आती है जो कहती है एक बार फिर कोशिश करके देखो।
1: ओ परिंदे कभी हवा रुकने का इंतजार नहीं करते, वे तूफानों में भी रास्ता बना लेते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है ऊंचा उड़ने के लिए पंखों से ज्यादा हौसलों की जरूरत होती है। मधु
0: सकारात्मक सोच जो होती है ना, पॉजिटिव थिंकिंग, वो जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत होती है मकसूदन। ये अंधेरे में उम्मीद ढूंढना सिखा देती है, हार में सीख ढूंढना सिखाती है और गिर कर फिर संभलना भी।
1: और जिस दिन इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है उस दिन दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। याद रखिए, परिंदे शाखाओं पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करते हैं और इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी उसका आत्मबल ही है।
0: बिल्कुल सही कह रही हूँ सखियों। यदि रास्ते कठिन हैं तो समझ लीजिए कि उड़ान जो है वो बहुत बड़ी होने वाली है। अपने सपनों को डर से मत हारने दीजिए, खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि आसमान उन्हीं का होता है जो उड़ने का हौसला रखते हैं।
1: और परिंदों सा आत्मविश्वास रखिए, गिरेंगे भी संभलेंगे भी, लेकिन एक दिन अपना आसमान जरूर छू लेंगे। खुद पर भरोसा ही सबसे बड़ी उड़ान है।

0: सखियों, सपने देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सपनों का एहसास जो है वो बहुत खूबसूरत होता है। आंखों में एक उम्मीद, दिल में एक चाह और कुछ कर गुजरने का हौसला भी।
1: क्योंकि सपने ही तो इंसान को आगे बढ़ना सिखाते हैं, वरना जिंदगी तो बस यूं ही गुजर जाती है।
0: बिल्कुल सच कह रही हो। कभी कभी एक छोटा सा सपना होता है ना, वो भी इंसान की पूरी दुनिया बदल देता है मकसूदन।
1: और सपनों की सबसे अच्छी बात ये है कि वो किसी अमीर, गरीब, छोटे बड़े या उम्र को नहीं देखती। जिसके दिल में चाह हो वही उड़ान भर सकता है।
0: हाँ, सपने की उड़ान ही ऐसी होती है कि जब चाहे हम वो सपने देखते हैं और सपनों में उड़ान भर लेते हैं। उड़ने दो परिंदों को भी शोक हवा में, कि लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। तो बचपन के सपने तुम्हें याद है?
1: वाह क्या बात मधु। और कई लोग तो सिर्फ इसलिए अपने सपने छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे।
0: हाँ, लेकिन जो लोग दुनिया की बातों में उलझ जाते हैं ना, वो अक्सर खुद की आवाज सुनना भूल जाते हैं, अपने सपनों को छोड़ देते हैं।
1: बिल्कुल। और अगर सफर में मुश्किल ना आए तो मंजिल का मजा ही क्या है। और अगर सपने अधूरे ना लगे तो उन्हें पूरा करने का जुनून भी कहाँ से आएगा।
0: बिल्कुल सही। कभी महसूस किया है तुमने कि कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमें रात को सोने भी नहीं देते? बार बार दिल कहता है कि नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है सपने को सच करने के लिए।
1: हाँ, और वही सपने एक दिन इंसान की पहचान बन जाते हैं।
0: लेकिन रास्ता तो आसान नहीं है। सपना देखना आसान है, लेकिन कभी हालात रोक लेते हैं तो कभी लोग और कभी खुद हमारा मन का डर।
1: मगर असली उड़ान वही भरता है जो डर के बाद भी आगे बढ़ता है।
0: हौसलों की आग को कम मत होने देना। रास्ते मुश्किल हों तो भी कदम मत रोकना। एक दिन यही मेहनत रंग लाएगी। बस अपने सपनों को कभी मत छोड़ना।
1: बहुत खूब। और सच भी यही है कि सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ किस्मत नहीं, मेहनत भी चाहिए।
0: हाँ, क्योंकि बिना मेहनत के तो सिर्फ ख्वाहिश बनकर ही रह जाते हैं। सपने पूरे कैसे होंगे?
1: और मेहनत करने वाले को सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो हारने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता है।
0: हाँ, हार तो मिल सकती है लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो साथ

0: का पता चलता है।
1: क्या बात, वहां कई बार इंसान अकेले भी पड़ जाते हैं, सही कहा मधु, और अपने सफर में, लेकिन शायद कुछ मंजिलें अकेले चलकर भी हासिल हो जाती है।
0: अपने सपनों के पीछे तो अकेले ही दौड़ना पड़ता है,
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि हर किसी को जो है ना हमारे सपनों पर यकीन नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि सब हमारी बात को मान ले, जो हम सपना देख रहे हैं वो नहीं लगे कि हम सच कर सकते हैं।
1: लेकिन हमें खुद पर यकीन होना बहुत जरूरी है।
0: रख भरोसा खुद पर, इस पर ही बात याद आ रही है मुझे। रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते, पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ ही लेते हैं रास्ते।
1: वाह क्या बात। और सच कहूं तो सपनों की उड़ान सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, ये खुद को पहचानने का सफर भी है।
0: बिल्कुल, जब इंसान अपने सपनों के पीछे चलता है ना, तो वो पहले से ज्यादा मजबूत बन जाता है।
1: और फिर एक दिन वही लोग जो कहते थे तुमसे नहीं होगा, सबसे पहले ताली भी वही बजाते हैं मधु।
0: बिल्कुल, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता सखियो, हौसलों से उड़ान होती है।
1: बस इसी हौसलों के साथ चलते रहना, क्योंकि सपने देखने वालों की हार नहीं होती।
0: और हर नई सुबह जो है ना, वो कहती है कि एक नई उड़ान अभी आपके लिए बाकी है।

0: उड़ जानी उड़ जा तू। मकसूदन, कई बार ऐसा होता है ना, पंछियों की उड़ान को देखकर हमारा भी मन करता है कि हम आसमान में उड़ें, उनके हौसले की कहानी को सुने।
1: और सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो उड़ने से पहले ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे।
0: हाँ, पंछी कभी कुछ नहीं सोचते। काश हर लड़की भी ऐसे ही सपनों के साथ बेखौफ उड़ पाती।
1: क्योंकि एक लड़की की जिंदगी में भी किसी परिंदे जिस जैसी नहीं होती है, उसे भी कई बार अपने हिस्से का आसमान पाने के लिए बहुत संघर्ष करना
0: बिल्कुल
1: पड़ता
0: सही
1: है।
0: कह रही हो कि लड़की जो है वो भी पंछी और परिंदे की तरह ही होती है। एक चिड़िया से उसकी तुलना की जाती है। कभी घर की जिम्मेदारियां, कभी समाज की बातें, और कभी अपने ही सपनों को चुपचाप दिल में छुपा लेना।
1: लेकिन जब एक औरत अपने हौसलों से उड़ान भरती है ना, तब सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदलती, पूरा घर रोशन हो जाता है।
0: जिस तरह परिंदे जो है ना वो खुली हवा में रास्ता बना लेते हैं सखियों, उसी तरह जो हिम्मत वाली महिलाएं होती है ना, वो हालातों में अपनी मंजिल छीन लेती हैं।
1: और औरतों की अगर भरोसा और सम्मान मिले तो वो टूटे हुए घर को भी फिर से बसा सकती है।
0: हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि हालात ऐसे होते हैं कि कुछ बड़ी घटना दुर्घटना हो जाती है, उसके बाद भी महिलाएं देखो ना हौसले के साथ में घर बना लेती हैं। उनके सपनों को यदि पंख मिल जाए तो फिर वो आसमान की ऊंचाइयों को क्यों नहीं छुएंगी।
1: और उड़ान रुकनी नहीं होती, पंख काटने नहीं पड़ते, हौसले नहीं, क्योंकि हौसले आसमान से भी ऊंचे होते हैं।
0: पंखों से उड़ान थोड़ी होती है, हमारी उड़ान तो हौसलों से ही होती है।
1: बिल्कुल।
0: आज की जो युवतियां हैं ना, वो रुकना नहीं चाहती हैं। हर बच्ची पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, और अपने नाम से अपनी पहचान बनाना चाहती है। यही तो उसकी उड़ान है।
1: और यही सबसे खूबसूरत बदलाव है कि अब बेटियां सिर्फ सपने देखती नहीं, उन्हें पूरा भी कर रही हैं।
0: कभी डॉक्टर बनकर, कभी अफसर बनकर, कभी अपने घर की ताकत बनकर, हर जगह अपनी उड़ान से एक नई इबारत लिख रही हैं।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: सखियों, महिलाओं ने तानों के तीर और जिम्मेदारियों के पिंजरों से निकलने के बाद ही जो अपनी जो ताकत है सपनों को देखने की, उसको पहचाना है।
8: नर्म लहजे में भी ताकत होती है, ये दुनिया समझने लगी है।
7: बिल्कुल,
8: औरत अब खामोश नहीं मजबूत दिखने लगी।
7: हाँ,
8: है।
7: वो हर जगह मजबूती से खड़ी होने लगी। और सच कहूँ ना तो एक औरत जब मुस्कुराते हुए मुश्किलों से लड़ती है ना, तब वो किसी उड़ते हुए परिंदे से कम नहीं दिखती।
8: क्योंकि उसे गिरकर भी संभलना आता है और टूटकर फिर से जीना आता है।
7: पिंजरे में रहकर भी जिसने सपने जिंदा रखे हो ना, वो एक दिन खुले आसमान तक पहुंच ही जाता है।
8: इसलिए हर लड़की को ये जरूर याद रखना चाहिए कि उसकी पहचान सिर्फ रिश्तों से नहीं, उसके हौसलों से भी होती है।
7: हौसला जो है वो दिल में रखना बहुत जरूरी है, तभी हम सपनों को सच कर सकते हैं। और जो अपने हौसलों की उड़ान पर भरोसा रखती है ना, उसी के लिए आसमान जो है वो खुला रहता है, तभी तो मुनिया खुले आसमान में उड़ चली जाती है।

0: सखियो, जब मुनिया जंजीरें तोड़ कर उड़ती है ना, तो किसी सरहद का ख्याल कहाँ रहता है। और सरहदों के पार उड़ान सुनने में कितना विशाल एहसास है ना।
1: क्योंकि कुछ उड़ानें सिर्फ आसमान तक नहीं जाती, वो दिलों तक पहुंच जाती है मधु।
0: पंछियों को देखिए ना, उन्हें मुल्कों की सरहदें जो हैं वो रोक नहीं पाती। न भाषाओं का फर्क, न बीच में नदी हो या तालाब हो, पोखर हो, पेड़ हो, जंगल हो, पहाड़ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
1: वो बस खुले आसमान में अपने सफर पर निकल पड़ते हैं, जैसे पूरी दुनिया उनका घर हो।
0: परिंदों ने कभी नक्शों से रास्ते नहीं पूछे मकसूदन, वो हवाओं से दोस्ती करके मंजिल तक पहुंच जाते हैं।
1: काश इंसान भी इतनी आसानी से दिलों के फासले मिटाना सीख जाता।
0: क्योंकि नफरतें जो है ना, वो सरहदें बना सकती हैं, लेकिन मोहब्बत हमेशा रास्ते बना लेती है।
1: और उड़ान सिर्फ पंखों की नहीं होती है, सोच की भी होती है।
0: बिल्कुल सही कहा, जब सोच बड़ी हो जाए, विशाल हो जाए, तो इंसान छोटी छोटी दीवारों से ऊपर उठ जाता है।
1: और जो अपने हौसलों को कैद नहीं होने देते, उनकी उड़ान अक्सर सरहदों के पार जाती है।
0: एक लड़की की ख्वाहिश भी तो ऐसी ही होती है, वो सिर्फ चार दीवारी तक नहीं रहना चाहती, अपनी पहचान को बाहर भी पहुंचाना चाहती है, तो वो घर से बाहर भी निकलना चाहती है, वो चाहती है कि उसको दुनिया जाने।
1: और जब उसे भरोसा मिलता है, तो वो अपने सपनों की दुनिया को खोल पड़ती है, पूरे आसमान में घूम पड़ती है ना।
0: और कहीं भी पहुंच जाती है, कभी किताबों के सहारे, कभी अपनी मेहनत के दम पर, अपने लिए एक नया आसमान चुन लेती है और परवाज कर लेती है।
1: उसे रोका बहुत गया, मगर वो ठहरी हवा जैसी, रास्ता खुद बनाती गई।
0: सच, असली उड़ान वही होती है जो डर, बंदिश और सीमाओं से आगे निकल जाए।
1: और तब इंसान सिर्फ एक जगह का नहीं रहता, वो अपनी सोच से पूरी दुनिया का हो जाता है।
0: बिल्कुल, सरहदें जमीन पर बनती हैं, आसमान पर नहीं, इसलिए परिंदे जो हैं वो आज भी बेखौफ उड़ते हैं।
1: और शायद इसी जिंदगी में सबसे बड़ी खूबसूरती यही छुपी है कि सपनों की उड़ान की कोई सीमा नहीं, उसे कोई नहीं रोक सकता।
0: हाँ, तो जो पंछी है उनको भला कौन रोक सकता है, न नदियाँ, न पवन के झोंके, न बादल।

0: पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कहाँ कोई सरहदें ने रोक पाती है सखियों। और इंसान जो है ना, वो ऊंची ऊंची इमारतों में कैद हो जाता है। पंछी तो खुले आसमान में आजाद हैं, उनके पास धन भले ही नहीं है, महल नहीं है, फिर भी वे हर सुबह देखो ना चहचहाते हैं, गाते हैं, क्योंकि खुशी चीजों में नहीं आजादी में होती है। सुबह की पहली किरण जब धरती को छूती है तो कोई चिड़िया पेड़ की शाख पर बैठकर जिंदगी का गीत गुनगुनाने लगती है। वो हमें सिखाती है कि उड़ने के लिए सिर्फ पंख नहीं, हौसले भी तो चाहिए।
1: और कई बार जिंदगी हमें पिंजरे जैसी लगती है, जिम्मेदारियों का पिंजरा, रिश्तों का पिंजरा, अकेलेपन का पिंजरा, और कभी कभी अपने डर का पिंजरा। लेकिन याद रखिए, हर इंसान के भीतर भी एक पंछी रहता है जो उड़ना चाहता है, जो खुलकर जीना चाहता है, जो सपनों के आसमान को छूना चाहता है।
0: पंछी कभी ये नहीं सोचता सखियों कि आसमान कितना बड़ा है। वो अपने पंखों पर भरोसा रखता है, और ये भरोसा जो है वो उसे बादलों के पार ले जाता है। हम भी अगर अपने भीतर का जो डर है ना, उसे हरा दें, तो जिंदगी की हर बंद खिड़की, बंद दरवाजा खुल जाएगा, हर अंधेरी राह में रोशनी मिल जाएगी, और हम सुकून से जी सकेंगे।
1: तो आइए थोड़ा पंछियों से सीखे, कम में भी खुश रहना, हर हाल में मुस्कुराना, और सबसे जरूरी, खुले आसमान में सपनों की उड़ान भरना, क्योंकि आज

0: आसमान सबका होता है, बस उड़ने का हौसला होना चाहिए। अपने पंखों को सपनों की ताकत दीजिए और उड़ जाइए उस आसमान में जहां डर नहीं, सिर्फ उम्मीद हो और
1: सिर्फ
0: सिर्फ
1: उड़ान
0: उड़ान हो।
1: हो।

0: सखियों, आने वाला वक्त हसीन हो और हमारी उड़ान कैसे दरकार रखे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो अपना हौसला है ना वो बनाए रखें। जब कोई इंसान गिर कर फिर खड़ा होता है ना, टूट कर भी मुस्कुराता है, अंधेरों में रोशनी ढूंढ लेता है ना, तभी शुरू होती है उसकी असली उड़ान।
1: पंछी आसमान देखकर नहीं डरता, वह अपने पंखों पर भरोसा करता है। और इंसान जब खुद पर यकीन कर ले तो उसकी मंजिल भी आसमान जैसी होती है और वो वहां पहुंच जाता है।
0: उड़ान का मतलब सिर्फ दूर जाना नहीं, बल्कि अपने डर, अपनी सीमाओं को अपने भीतर के पिंजरे के पीछे छोड़ देना है।
1: हर सपना एक उड़ान है, हर कोशिश एक उड़ान, और हर नई सुबह जिंदगी को फिर से जीने की उड़ान।
0: तो उड़िए मगर किसी को गिरा कर नहीं, अपने हौसलों को साथ लेकर, क्योंकि जो आसमान में उड़ते हैं ना, वो सिर्फ ऊंचे नहीं होते, वे आजाद भी होते हैं।
1: जिनके इरादों में जान होती है उसकी हर राह आसान होती है। डरते नहीं जो ऊंची उड़ानों से, उन्हीं की तो असली पहचान होती है।
0: जिंदगी में कभी रास्ते बंद मिले ना सखियों, तो आसमान की तरफ देखिएगा, कोई ना कोई परिंदा आपको फिर से उम्मीद देगा और जीना जरूर सिखा जाएगा।

0: सखी, उड़ना तो सब चाहते हैं, लेकिन ये उड़ना इतना आसान कहाँ होता है। इसके लिए सपने भी देखने पड़ते हैं और फिर उन्हें सच करने का हौसला भी रखना होता है और जुटे रहना पड़ता है जब तक उस ख्वाब जो है हमारा सच न हो जाए। और आपसे बातें करते करते देखे ना, हम उड़ान के उस सफर पर निकल चले हैं कि समय कैसे बीत गया हमें पता ही नहीं चला।
1: वक्त हो चला है विदा लेने का। चलते चलते आपको बता दें कि आज आपको मधुर गीत सुनाए कंसोल पे बैठे हमारे साथी नवनीत अहलावत ने। ट्रांसमीटर पर हमारे साथ रहे विक्रम सिंह भाटी और प्रेम किशोर सेन। कंट्रोल रूम से हमारे साथी रहे फारूक शेख।
0: जी, अब आपकी अपनी सखी मधु बैनर्जी और
1: मकसूदन को दीजिए
0: इजाजत।
1: इजाजत। नमस्कार।

0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारीवाटी का। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार का रिले किया जाएगा।
1: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
2: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
3: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूं, जहां लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
2: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, एआई, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और

0: नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय

0: पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रूपये की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रूपये, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रूपये और गुरुग्राम में 85.12 रूपये हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी सीएनजी की कीमतों में 2 रूपये की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार यह फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। यह घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट कोविड-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में हैं। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन

0: शहर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की शुरुआत में आप सुन रहे हैं फिल्म स्वदेश का ये गाना, उदित नारायण की आवाज, जावेद अख्तर के बोल, ए आर रहमान का संगीत।

फिल्म कोयला से आप सुन रहे हैं ये गीत। उदित नारायण, अलका याग्निक की आवाजें, इंदीवर के बोल, राजेश रोशन का संगीत।

कविता कृष्णमूर्ति, मनहार और सुखविंदर की आवाजों में आप सुन रहे हैं फिल्म सौदागर का ये गाना। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

फिल्म संगीत के आखिर में आप सुन रहे हैं फिल्म सिर्फ तुम का ये गाना, अमीन शबरी की आवाज, फरीद शबरी की आवाज, बोल समीर के, नदीम श्रवण का संगीत।

यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारी आज की ये सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे दूसरी सभा में आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्स पर। शाम के 5 बजे हैं, हमारी आज की दूसरी सभा अब आरंभ होती है। आइए इस सभा में सबसे पहले सुनिए युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युवा।

0: आजकल ऐसा लग रहा है कि ये जो सूर्य नगरी है, इसके जो सूर्य देव है, इन्हें ऑप्शन नहीं मिल रहा। नहीं तो इनका बस चले तो शायद ये रात को निकल के भी चमकने लग जाए। जी हाँ, इस चिलचिलाती धूप में, इस प्यारी सी शाम में हम जुड़ चुके हैं आप ही का कार्यक्रम युववाणी लेकर, जहाँ पर आज का दिन है संडे। और संडे का दिन होता है बड़ा ही खास, क्योंकि आज होने वाली है ढेर सारी बातचीत आप लोगों से। और हाँ दोस्तों, अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो लग रहा है कि जब शाम होती है तब अच्छा म्यूजिक, अच्छी बातें और अच्छी कोई कोल्ड ड्रिंक हो, जैसे कि नींबू पानी, ऑफकोर्स चाय कॉफी कम करके नींबू पानी पे जोर दे सकते हैं। तो इसके साथ आप आ जाइए हमारे साथ ढेर सारी बातें करने, क्योंकि ये आप ही का दिन है। हाल फिलहाल आपके साथ जुड़ी है दो प्यारी आवाजें, मेरा नाम है रिद्धि
1: और मैं हूँ विकास। तो जैसा कि श्रोताओं रिद्धि ने बताया है कि गर्मियों के दिन चल रहे हैं और रिद्धि समर वैकेशंस भी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आज का जो दिन है संडे का, वो लोगों के लिए इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि आज के दिन जो है वो काफ़ी सारे लोग गर्मी से बचने के लिए जो है वो अपने नियर बाई में जो भी स्विमिंग पूल्स है या फिर ऐसे कोई भी विजिटिंग प्लेसेस है जहाँ उन्हें सुकून मिले, वहाँ पर जाना प्रीफर करते हैं। और साथ ही साथ कुछ लोग जो है रिद्धि, वो घर में बैठ कर ही जो है वो अपनी चाय का और टेलीविज़न का जो है वो आनंद ले रहे हैं।
0: जी हाँ विकास, ये तो है कि जो संडे का दिन होता है उसका सबसे प्यारा पार्ट ये है कि जो 3-4 घंटे की नींद होती है दिन की, जो
1: बिल्कुल
0: अक्सर हम
1: बिल्कुल
0: घरों में देखते हैं, बहुत कॉमन चीज़ है,
1: जी।
0: वो अगर मिल जाए इतनी गर्मी में तो क्या ही मज़ा है। खैर अभी तो शाम हो चुकी है और शुरू करते हैं इस प्यारी सी शाम का आगाज़ इस गाने के साथ।

0: विकास, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया था कि गर्मी के वेकेशंस भी स्टार्ट हो गए हैं, तो ये सुन के जो नॉस्टैल्जिया हिट किया है, जब हम छोटे थे तो स्कूल, जब लगता था ना कि वेकेशन से जस्ट पहले वाला दिन है, तो स्कूल जाने में भी मज़ा आता था और ऐसा लगता था कि भाई कब छुट्टी होगी, उसके बाद कब जो ये लंबा ब्रेक आता है 1-1.5 महीने का, और क्या मज़े किया करते थे यार। जो हॉलीडे होमवर्क का क्रेज़ होता था, जो लगता था कि शायद हम पहले ही हफ्ते में ख़त्म कर देंगे, पर वो एंड मोमेंट पर जो ख़त्म होता था, डांट पड़ पड़ के स्कूल जाना इसे ख़त्म करो, क्या दिन थे यार वो।
1: क्योंकि रिद्धि, हम दरअसल उस काम को करना कभी कभी इसलिए भी भूल जाते थे क्योंकि हम पूरी तरीके से हमारी वैकेशंस को जो है वो एंजॉय करते थे, चाहे वो फैमिली ट्रिप हो या चाहे हमारे आसपास जो फ्रेंड्स के साथ में हम जो गेम्स खेला करते थे, तो न जाने कब वो वैकेशंस इन सब चीज़ों के अंदर ही अंदर निकल जाते थे, हमें पता ही नहीं चलता था।
0: हाँ, कई बार ये होता था कि वेकेशन पे ब्रेक पे कहीं जा रहे हैं तो 10-15 दिन तो बाहर घूमने में चले गए, फिर ये लगता था कि अभी तो छुट्टियाँ स्टार्ट हुई है तो गली मोहल्लों में खेलना, अलग अलग गेम्स, खुद के गेम्स बना के खेलना, खुद की थ्योरीज बनाना, इसके बाद शाम को बाहर खेलना, कितना फिक्स वो एक टाइमिंग होता था। कुछ कुछ तो कैंप भी लगते थे जहाँ पर स्विमिंग करने जाते थे, स्केटिंग करने जाते थे, तो अलग अलग कैंप्स ज्वाइन करना, फिर उनके फाइनल डे होते थे तो उसका अलग सेलिब्रेशन होना,
1: मतलब 1 महीने तक तो जो है वो हम पढ़ाई को लगभग जो है पूरी तरीके से
0: भूल ही जाते थे। और साथ में ये भी होता था कि अब तो हम देख रहे हैं कि हम इंसानों की भी गलती है कि पर्यावरण भी बहुत ज्यादा बदल गया है। जो गर्मी पहले हुआ करती थी वो वैसी अब नहीं है, अब जो लेवल है हीट का और
1: वो काफी पीक पर है,
0: बहुत पीक पर है। और साथ में अब ये भी हो गया है कि बच्चे भी टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, उन्हें
1: तो
0: भी
1: इंडोर, बिल्कुल आपने सही कहा, इंडोर एक्टिविटीज जो है वो प्रिफर कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो गेम्स से रिलेटेड हो या फिर चाहे कोई कंप्यूटर कोर्सेज ही क्यों ना हो, तो इंडोर को जो है वो काफी सारी प्रेफरेंस दी जा रही है
0: प्लस साथ में ये भी हो रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया और गेम्स ने बचपन छीन लिया है। इस बात को कितना डिनाई करे वो तो इंसान की मर्जी है, पर हाँ ये फैक्ट है कि फोन और स्क्रीन ने जो बचपन का एसेंस था वो छीन लिया है। हालांकि हम जब बात कर रहे हैं, अभी भी कई बार होता है कि जब घर पे कुछ भी ओकेजन होता है तो आम की चीज़ें बनती है, तो आम का जिक्र आते ही सबसे पहली चीज़ आती है कि मम्मी घर में जो आम रस बनाती है। एक तो हम देखते हैं कि आइसक्रीम जो हम बाजार से लेकर आते हैं, और एक जब हम छोटे थे तब हुआ करता था, आज भी होता है कि जो वो आमरस है उसे जमाया जा रहा है, उसे फ्रीजर में रख के खुद की आइसक्रीम बनाई जा रही है, खुद के इन्वेंशन निकल निकल के आ रहे हैं।
1: बिल्कुल, जैसे कि मैंगो क्रीम हो गई या फिर आपका जो भी मैंगो का जो थिक शेक हो गया है, तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं। और मैंगो को स्पेशली जो रिद्धि है वो गर्मियों में ही पसंद किया जाता है, ये हम सभी जानते हैं।
0: हाँ, वो किंग ऑफ फ्रूट्स है और इसे हम सभी प्रूव भी करते हैं, इतने अलग अलग फॉर्म्स में खाया जाता है। तो विकास, आज बड़ा ही आपने अच्छा जिक्र किया।

0: समर वेकेशंस का कई बार बड़े होने के बाद जिंदगी की भाग दौड़ में भी नहीं पता पड़ता कि कब ये टाइम आके निकल रहा है, पर हाँ वेकेशन चल रही
1: बिल्कुल।
0: है
1: और
0: तो
1: कहते हैं ना कि एक बार जब आप अपनी जॉब लाइफ में जब एंटर कर जाते हैं तो फिर आपके लिए क्या ही समर वेकेशंस होते हैं आपके लाइफ में। लेकिन मेरा तो उन सभी बच्चों से यही कहना है कि अगर आपको समर वेकेशंस का एंजॉय लेना है तो पूरी तरीके से लीजिए, क्योंकि वही एज है जहाँ पर आप खुल कर जो है वो अपना बचपन जी सकते हो, अपनी हॉलीडेज़ को जो है वो बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। लेकिन साथ में अपना जो वेकेशन समर वेकेशन होमवर्क है वो करना बिल्कुल ना भूले।
0: वो तो एंड मोमेंट पे खत्म होगा,
1: बिल्कुल
0: पर हाँ ये बात है कि अगर आप इस समय से गुजर रहे हैं, आपके भी जीवन में समर वेकेशंस के प्रिविलेज है, तो प्लीज इसे एंजॉय कीजिए, क्योंकि एक बार वक्त निकल जाता है ना तो फिर से तो वापस कभी नहीं आता। हाल फिलहाल अभी तो हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रैक।

0: विकास, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पुराने ज़माने में जो लाइफ थी हमारी, वो
1: बिल्कुल
0: बड़ी ही प्योर और बड़ी सिंपल सी ज़िंदगी हुआ करती थी।
1: एग्जैक्टली
0: पर आज के समय में हम देख रहे हैं कि

0: जो डिजीज़ेस है उसका दौर जो है वो बढ़ता जा रहा है।
1: बिल्कुल
0: जब हम बहुत जगहों पर देखते हैं कि जब लोग यंग एज में होते हैं तभी उनको बहुत सी ऐसी बीमारियां हो जाती है जो शायद लाइफ के लेटर पार्ट में हुआ करती है।
1: बिल्कुल
0: आज के टाइम में डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गया है, आज के टाइम में
1: ब्लड
0: ब्लड
1: प्रेशर
0: प्रेशर बहुत
1: बिल्कुल
0: कॉमन
1: मैम
0: हो गया है, थायराइड बहुत कॉमन हो गई है। तो ये जो चीज़ें हैं ये शायद इस एज में होने वाली नहीं है, पर आज के लाइफस्टाइल को देखें, आज की हमारी
1: खान
0: पर्सनल
1: पान को
0: लाइफस्टाइल,
1: देखे
0: खान
1: अगर
0: पान को देखें, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट देखें, तो इसी से याद आता है कि आज का जो दिन है वो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के नाम से माना जाता है।
1: बिल्कुल
0: जब आज के दिन ब्लड प्रेशर के आसपास अवेयरनेस फैलाई जाती है, तो आज के दिन विकास बात करने का यही मन कर रहा है कि जो हमारी लाइफस्टाइल है क्या वही जिम्मेदार है इन चीज़ों के लिए।
1: बिल्कुल सही कह रही थी आपने। लाइफस्टाइल तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है ही है, क्योंकि हमने देखा है कि जो आज की जनरेशन है, जैसा कि आपने अभी बताया कि उनके रहन सहन या खान पान को लेकर अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई है। साथ ही साथ जो उनका डिसिप्लिन है, जो लाइफ का डेली लाइफ का रूटीन है, वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है उनके हेल्थ पर। तो ये चीज़ बहुत ही कॉमन हमें देखने को मिल रही है कि हर दूसरे तीसरे इंसान के अंदर हमें डिजीज़ देखने को मिल रही है, चाहे वो थायराइड ही हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, या फिर ब्लड प्रेशर ही क्यों ना हो। और उसके लिए हम सभी को, मुझे लगता है, ये करना चाहिए कि सबसे पहले आपको अपनी रेगुलर लाइफ स्टाइल पर जो है ना वो फोकस करना होगा। रीति
0: हाँ, वो फोकस तो है ही है, साथ ही साथ जो बॉडी मॉनिटर होती है हमारी, मतलब जो
1: बिल्कुल
0: रेगुलर चेकअप्स होते हैं वो
1: वो भी ज़रूरी
0: अब
1: है
0: सुनने में लगता है कि कितना बड़ा टर्म है बॉडी चेकअप,
1: बिल्कुल
0: बट अब जैसी लाइफ हो गई है हर इंसान को अपना रेगुलर बॉडी चेकअप कराना ही चाहिए, क्योंकि बहुत कम उम्र में ही चीज़ें देखने को मिल रही है जो कि सही नहीं है। तो आज के दिन आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि जब इंसान इस ऐसे कोई डिजीज से निकल रहा हो, इस ऐसी कोई चीज़ से गुजर रहा हो, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, मतलब वो खुद या आसपास का माहौल, या इसका क्या
1: बिल्कुल।
0: सोल्यूशन हो सकता है, या फिर दोनों ही बराबर में इसके शामिल है, तो इस
1: और
0: पर बात
1: हमारे
0: करेंगे।
1: जो, बिल्कुल सही कहा आपने, और जो हमारे श्रोता है वो भी हमसे इस विषय पर बात करने के लिए जो है वो हमें फ़ोन कर
0: ज़रूर
1: सकते
0: जुड़
1: हैं।
0: सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि कई जगहों से अलग अलग टिप्स आए, या फिर
1: बिल्कुल
0: कुछ बढ़िया से कोई शब्द ही आ जाए, वो
1: बिल्कुल
0: सुनकर अगर किसी की लाइफ में बदलाव आता हो तो वो तो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो हम हमारे नंबर बता देते हैं आपको, जो कि है 0291-255-3300, दूसरा नंबर है 255-4300।
1: और साथ ही साथ रिद्धि, आज के हमारे इस प्रोग्राम में जो है वो हमारे श्रोताओं के लिए एक स्पेशल इंटरव्यू भी है, जहां पर हम बात सुनाएंगे उन्हें एक बहुत ही हेल्थ टिप्स को लेकर, लेकिन इस प्यारे से गाने के बाद।

0: सेल्फी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के मौके पर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कौशल कुमार से आरजे राहुल की बातचीत।
4: जी बिल्कुल, इस भागती दौड़ती हुई जिंदगी में हमारे साथ इस खूबसूरत से शरीर के साथ साथ हमारे अंदर खूबसूरत सा ब्लड भी दौड़ता है, वो भी बड़ी खूबसूरती के साथ। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर ये कम गति से दौड़ा तो दिक्कत हो सकती है, अगर ये ज्यादा गति से दौड़ा तो भी दिक्कत हो जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, आज का दिन इसी विषय को लेकर एक खास बातचीत की तरफ हम रुख करेंगे। विषय है विश्व रक्तचाप दिवस यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के मौके पर हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर कौशल कुमार हरलाल का हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूंगा सर आप अपने बारे में कुछ बताइए सबसे पहले।
5: ये सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, मैं डॉक्टर कौशल कुमार हरलाल का सीनियर हृदय रोग विशेषज्ञ। मैं अभी जोधपुर में पिछले 10 वर्ष से कार्यरत हूँ, हृदय रोग का ध्यान रखते हुए लोगों का परामर्श करते हुए। बेसिकली मैं सीकर जिले से बिलोंग करता हूँ और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो वहीं से हुई। उसके बाद में मैंने MBBS किया SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से, फिर MD करी उदयपुर से, और फिर साउथ में बेंगलोर में मैंने जो हर्ट की जो विशेष बीमारियां और ऑपरेशन होते हैं उसके बारे में योग्यता लेके फिर पिछले 10 साल से मैं जोधपुर में कार्यरत हूँ।
4: डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है हमें लगता है कि एक उम्र के बाद ही हमें इस पकड़ेगी, लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि यंग एज में भी BP की जो बीमारी है उसकी शुरुआत हो चुकी है, तो इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है?
5: जी आपने बिल्कुल कहा कि जो हाई ब्लड प्रेशर है किसी जमाने में ओल्ड एज की होती थी, फिर धीरे धीरे यंग एज की होती होती। अभी हम मैं जो मेरे पर्सनल अनुभव की बात करूं तो 25 साल की उम्र के अंदर भी, इवन उससे पहले भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हाई ब्लड प्रेशर हम कब लेबल करते हैं। अभी काफ़ी लंबे समय से हम मानते थे कि जब ब्लड प्रेशर है 140-90 से ज़्यादा हो, उसमें दो होता है, ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, नीचे वाला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइन हुई है, प्लस जो ब्लड प्रेशर हाई रहने पे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो उनका अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट करने के लिए जो अभी इंटरनेशनल गाइडलाइन आई है वो ये

0: कहती है कि अगर ब्लड प्रेशर 130 और 80 से ज़्यादा हो तो हम उसको हाई ब्लड प्रेशर लेबल करते हैं। तो इसके कई सारे कारण हैं। 90% केसेज के अंदर हमको हाई ब्लड प्रेशर का कोई वैसे आइडेंटिफाई कारण नहीं मिलता है, तो हम उसको असेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। बट इसके जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर एक तो है आजकल की जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, शारीरिक निष्क्रियता है, ज़्यादातर है लोग सिटिंग जॉब करते हैं, डिजिटलाइजेशन हो गया है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो जो शारीरिक निष्क्रियता है वो सबसे मुख्य कारण है। उसके बाद में होता है अनहेल्दी जो फूड हैबिट्स हैं, आजकल जो प्रोसेस्ड है, डिब्बाबंद फूड है, रेडी टू ईट फूड है, वो इसके लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद में आता है तनाव भरी ज़िंदगी है, आज स्कूल जाते हुए बच्चे से लेकर यूथ को देखो, सबको अंदर स्ट्रेस रहता है, सब एक दूसरे के अंदर और एम्बिशियस होके और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना और बड़ी गाड़ी रखने के लिए सब चाहते हैं। तो उसके लिए एम्बिशियसनेस ज़्यादा होने से स्ट्रेस का इम्पोर्टेंस काफ़ी है इसके अंदर। इसके बाद में अपर्याप्त नींद है, अगर नींद की क्वालिटी और ड्यूरेशन दोनों ही अगर पुअर हैं तो वो हार्ट की बीमारियां हैं उसके लिए आमंत्रित करती है। उसके बाद में कुछ व्यसन है जैसे कि स्मोकिंग है, आजकल का युवा है उसमें स्मोकिंग और एल्कोहल और जो दूसरी ड्रग्स है, जो कि आज हम जोधपुर संभाग की बात करें तो रोज हम देखते हैं न्यूज़पेपर्स में, जो दूसरे जो नशे हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो सारे नशे हैं वो भी हार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हैं। और लास्ट में बताना चाहूँगा कि एक फैमिली हिस्ट्री जो होती है ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की या हार्ट की प्रॉब्लम्स की, अगर किसी को भी है तो नेक्स्ट जनरेशन में 10 साल पहले वो बीमारी होने की संभावना रहती है। तो मोटे मोटे ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो हार्ट की प्रॉब्लम्स और हाइपरटेंशन को बढ़ावा देते हैं।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बातचीत में आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगातार मोबाइल का यूज, गेमिंग, सोशल मीडिया का प्रेशर और लेट नाइट का जो कल्चर है, वो बीपी बढ़ाने में किस तरह से रोल प्ले करता है?
0: जी बिल्कुल, ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर। क्योंकि देखिए, एक तो जैसे मैंने कहा कि अपर्याप्त नींद है, अगर 7 से 8 घंटे की अच्छी क्वालिटी की स्लीप नहीं ली जाए तो वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, क्योंकि कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी को रिकवर करते हैं। अगर हम लेट नाइट सो रहे हैं या हमारी नींद डिस्टर्ब हो रही है तो वो कुछ कैटेकोलामिन्स होते हैं जो कि बॉडी को डैमेज करते हैं, हार्ट की जो ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं और ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। सेकेंड है कि इन सब के कारण से बहुत ज़्यादा फिजिकल निष्क्रियता हो रही है, जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल मैंने बताई, प्लस इंटरेक्शंस है वो लोगों के कम हुए हैं। पहले फ्रेंड्स से मिलते थे, हंसी मजाक करते थे तो गुड हार्मोन्स रिलीज होते थे, तो वो सब होते हैं कि ओवरऑल एक वेलबींग के लिए अच्छा होता है, सोशलाइजेशन होता है वो हार्ट के लिए भी अच्छा है और ओवरऑल भी अच्छा रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो डिजिटलाइजेशन के कारण से काफ़ी सीमित हुई है और ये हाई ब्लड प्रेशर और जो दूसरे हार्ट की बीमारियां हैं वो बढ़ाती है।
1: ऐसा लोगों का मानना है कि अगर मेरा ब्लड प्रेशर जो है फ्लक्चुएट करेगा तो मुझे हार्ट की बीमारी हो जाएगी। ये तो बात मानते हैं कि भी हार्ट पे बिल्कुल इसका असर पड़ता है, लेकिन क्या बॉडी के और भी ऐसे ऑर्गन्स हैं जिसका ब्लड प्रेशर कम होना या बढ़ने पर फर्क पड़ता है?
0: जी बिल्कुल, दो ऐसी बीमारियां हैं हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, उन दोनों को हम साइलेंट किलर कहते हैं।
1: जी
0: वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका खुद के जो लक्षण होते हैं वो बहुत लेट आते हैं। जो लक्षण आते हैं वो जब आते हैं वो जब दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको डैमेज करने पर। तो अगर हम बात करें तो टॉप टू बॉटम जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो हर अंग को प्रभावित करता है, जैसे ब्रेन के अंदर ये स्ट्रोक की संभावना बढ़ा देता है, धीरे धीरे डिमेंशिया या मेमोरी लॉस करवा देता है। आंखों की बात करें तो जो ब्लाइंडनेस होती है, आंख के पर्दे को डैमेज करके ब्लाइंडनेस कर देता है। हार्ट के अंदर है ये हार्ट का फेलियर भी करा देता है, हार्ट अटैक करवा देता है, किडनी डैमेज कर सकता है। इसके बाद में जो पेरिफेरल आर्टरीज होती है, हाथ और पैरों की नसें होती है, उनके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होके पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हम बोलते हैं, जिसमें क्लोडिकेशन हम कहते हैं मेडिकल भाषा में। तो ऑलमोस्ट बॉडी के जितने भी अंग होते हैं जो अपने मेल होते हैं उनमें नपुंसकता या इम्पोटेंसी करा देता है, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं उनको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है वो अफेक्ट करते हैं।
1: बिल्कुल। प्रोग्राम युवाणी चल रहा है, युवाणी प्रोग्राम में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और आजकल का यूथ जो है वो जिम की तरफ रुख कर रहा है। जिम की तरफ कर रहा है ये तो ठीक है, बात करना चाहिए, एक्सरसाइज है, करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ जो है वो एनर्जी ड्रिंक्स, सप्लीमेंट्स भी बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, तो इसके क्या असर हार्ट पर पड़ते हैं? ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएट होना में इसकी क्या किस तरह से भूमिका होती है?
0: जी जिम के अंदर मैं आपको दो चीज़ें थोड़ा सा बताना चाहूँगा यूथ को, कि कुछ लोग क्या है कि बहुत लंबे समय से एकदम सेडेंट्री स्टाइल में रहते हैं, वो अचानक से जिम में जाते हैं, उनको मोटिवेशन मिलता है और बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करते हैं। तो एक तो कभी भी आप नया नया अगर जिम ज्वाइन करो या आप लंबे समय से रेस्ट पे रहे हो फिर आप जिम जाते हो, तो आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे धीरे धीरे है अपनी ड्यूरेशन और जो सीवियरिटी होती है, जैसे वेट ट्रेनिंग करो, चाहे आप ट्रेडमिल की डिस्टेंस या स्पीड की बात करें, तो वो सारी चीज़ें बॉडी को अडाप्ट होने में टाइम लगता है। जैसे कि आप ट्रैकिंग पे जाते

0: या हिमालय पर जो लोग जाते हैं तो पहले दिन ही उनको नहीं कहते कि आप ऊपर चढ़ो, उनको धीरे धीरे धीरे धीरे अडाप्टेशन होता है। इसी तरह हर्ट का भी अडाप्टेशन होने में टाइम लगता है। तो कभी भी कोई भी यूथ है या मिडिल एज के लोग हैं, वो अगर जिम जाते हैं तो उनको ग्रेजुअली धीरे धीरे धीरे धीरे अपनी स्पीड और जो वेट ट्रेनिंग की सीवियरिटी बढ़ानी चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है। दूसरी बात आती है एनर्जी ड्रिंक्स की, तो ज़्यादा से जो एनर्जी ड्रिंक्स हो रही होते हैं उनमें स्टूमुलेंट्स होते हैं, कैफीन होता है या एनाबोलिक स्टेरॉइड्स होते हैं। वो एक बार तो किक देंगे पर लंबे समय वो क्या करते हैं, हार्ट की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डैमेज करते हैं, उनके अंदर ब्लड की क्लोटिंग टेंडेंसी बढ़ा देते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के जिम कर रहे हैं, जिम करते करते कोलैप्स हो जाते हैं। तो ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो एक तो उनका हार्ट अडाप्टेड नहीं होता है उनका, दूसरा वो है कि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ये स्टूमुलेंट मेडिसिन लेते हैं तो जो कि अचानक से ब्लड की क्लोटिंग टेंडेंसी बढ़ा देते हैं।
1: डॉक्टर साहब, एक नॉर्मल स्टूडेंट या फिर वर्किंग यूथ जो है, उसकी लाइफस्टाइल में ऐसी कौन सी 5 गलत हैबिट्स हैं जो उसको साइलेंटली उसकी बीपी पर असर कर रही है?
0: देखिए, यूथ का नाम ले तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूंगा स्मोकिंग, एल्कोहल और जो भी ड्रग्स वगैरह की हैबिट्स है वो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, 100% अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा, डेली कम से कम 30 से 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक है, साइकिलिंग, स्विमिंग, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए और हफ्ते में कम से कम 5 से 6 दिन होनी चाहिए। तीसरा यह है कि जो फूड हैबिट्स है वो बहुत अच्छी रेगुलर रखनी चाहिए, जिसमें कि मोटा अनाज खाना है, सब्जियां फल ज़्यादा हों, डिब्बा बंद प्रोसेस फूड को मिनिमम रखें, वीक में जैसे एक दिन रखें उस दिन आप वो खा सकते हैं, पानी ज़्यादा लें, नमक की मात्रा कम लें। चौथा यह है कि आप अच्छी क्वालिटी की स्लीप लें, कम से कम 6 से 7 घंटे आप सोते समय कम से कम 10 फीट दूर अपना मोबाइल रख के सोएं, जिससे आपकी अगर नींद खुले तो आप उठ उठ के अपने नोटिफिकेशन चेक नहीं करें, क्योंकि ड्यूरेशन के साथ साथ क्वालिटी ऑफ स्लीप होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। पांचवा यह है कि मानसिक तनाव से अपने आप को दूर रखना है, उसके लिए योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन या बहुत सारी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज होते हैं तो उनका सहारा ले सकते हैं।
1: जब भी कोई मरीज आपके पास आता है, अमूमन हम देखते हैं कि कोई भी मरीज जब चेक करा लेता है अपने आप को, उसका चेकअप पूरा हो जाता है, तब लास्ट में जाते जाते पूछता है, डॉक्टर साहब मैं खाने पीने का कैसे क्या ध्यान रखूं? बीपी का मरीज है, उसका एक बेसिक रूटीन क्या होना चाहिए खाने को लेकर?
0: जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक तो नमक की मात्रा हम बोलते हैं कि जो सॉल्ट होता है वो 2 से 3 ग्राम तक ही अपने खाने में होना चाहिए। डिब्बा बंद और जो प्रोसेस्ड फूड हम इसलिए मना करते हैं क्योंकि उनके अंदर हाई सॉल्ट होता है, अचार वगैरह है, सॉल्टेड फूड्स है, उनको अवॉइड करना है। सलाद और जो फ्रूट्स होते हैं वो हमें ज़्यादा खाना होता है। कभी भी जब हम खाना शुरू करें तो हमको प्लेट भर के पहले सलाद और फ्रूट्स लेना है, मोटा अनाज है उसमें शामिल करना है, जैसे बाजरा है जो है वो हमको शामिल करना है, मैदा वगैरह है वो मिनिमाइज
1: अवॉइड
0: रखना
1: करना
0: है।
1: है जी।
0: दूसरा ये है कि रात को सोने से कम 2 घंटे पहले खाना खाना है। मिडनाइट जो स्नैक्स होते हैं स्पेशली यूथ के अंदर, और लेट नाइट तक कुछ लोग वर्किंग करते हैं, कुछ लोग मतलब वेब सीरीज देख रहे हैं, रात को 12 बजे स्नैक्स ले रहे हैं, 1 बजे स्नैक्स ले रहे हैं, तो ये बहुत ही घातक होते हैं क्योंकि उस समय जो बॉडी है उनको रिपेयरिंग मोड में रहती है, तो अगर उसको लगातार स्टिमुलस मिलता रहेगा तो फिर वो रिपेयरिंग मोड डिस्टर्ब हो जाता है, तो उससे सारा जो फैट है वो डिपोजिशन होता है और जो हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाता है। तो आजकल जो यूथ में मोटापा बढ़ रहा है या यंग एज के अंदर बीपी और जो शुगर बढ़ रहा है वो उनकी ईटिंग हैबिट्स और उसके कारण से है।
1: अगर कोई यूथ रोज स्ट्रेस ले रहा है, उसे फील कर रहा है, तो वो टेंशन ले रहा है, तो वो कैसे पहचाने कि यार ये बीपी की बढ़ने की मेरी शुरुआत हो चुकी है? उसे कैसे फील होगा?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि बीपी बहुत ज्यादा होता है तब जाके हेडक वगैरह है, घबराहट है, या फिर वो जो दूसरे ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं तो सांस फूलना है, पांव में सूजन आना है, ये काफी लेट जाके होता है। तो हर एक यूथ को मैं सलाह देता हूं कि 30 साल की उम्र के बाद में सबको कम से कम भी 6 महीने में एक बार तो ब्लड प्रेशर चेक करवाना ही है। जिनके परिवार में मतलब माताजी, पिताजी, अंकल या बड़े भाई बहन को ब्लड प्रेशर की या हार्ट की प्रॉब्लम है तो उनको 25 साल के बाद में एटलीस्ट साल में 2 बार ब्लड प्रेशर चेक कराना है। दूसरी बात, ये इजीली अवेलेबल है, घर पे भी आप इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं और आसपास कहीं भी आप क्लिनिक पे जाके चेक करवा सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि बीपी की सिंगल रीडिंग अगर हाई होती है तो पैनिक नहीं होना है, कभी भी आप बीपी आप चेक करेंगे तो आप 15-20 मिनट बैठ के रिलैक्स होके, इसकी भी पर्टिकुलर पोजीशन होती है, बीपी कफ जो होता है, स्टैंडर्ड साइजेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रख के फिर बीपी लेना है। तो एटलीस्ट 2 से 3 रीडिंग का हम एवरेज निकालते हैं, अगर वो 130-80 से ज़्यादा है या 140-90 से ज़्यादा है तो आपको गूगल ना करके चिकित्सीय परामर्श लेना है, क्योंकि आजकल ये भी टेंडेंसी बढ़ गई है कि कोई भी बीमारी होती है, लक्षण होते हैं, गूगल करते हैं तो उससे और ज़्यादा पैनिक होते हैं, क्योंकि वो एक आपको ट्रेंड बताएंगे। एक ही सिम्टम जैसे हेडेक है वो ब्रेन ट्यूमर में भी होता है, जुखाम खांसी में भी होता है और नॉर्मल भी हेडेक हो सकता है, तो आप जैसे गूगल करेंगे तो पता लगेगा तो वो सोचेंगे आप सबसे गंदी वाली बीमारी है, ब्रेन ट्यूमर हो गया मेरे, तो आप वैसे स्ट्रेस में आ जाओगे। तो उसके लिए जो भी चिकित्सक है, फिजिशियन है, जो भी आपके आसपास क्वालिफाइड डॉक्टर है, आप उनसे जाके मिले तो आपको सही सलाह देंगे।
1: बिल्कुल सही बात है। बातचीत में आगे बढ़ेंगे, मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये 20 से 30 मिनट की जो जनरल वॉक होती है, क्या ये वाकई में फायदेमंद है आप?

0: कि बीपी को कंट्रोल करने में।
1: जी बिल्कुल, हम जनरली बोलते हैं कि एक हफ्ते में करीबन 150 मिनट की वॉक होनी चाहिए, मीन्स एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स 5 days a week होनी चाहिए। तो ये ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि हम बात करते हुए मोबाइल चलाते चलाते वॉक कर रहे हैं, तो वो नहीं है। वॉक ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर आपकी हार्ट रेट बढ़े, आपकी सांस की गति बढ़े। तो एटलीस्ट हम ब्रिस्क वॉक जिसके बोलते हैं, यानी अगर आप वॉक कर रहे हो तो आप एक फुल सेंटेंस नहीं बोल पाओ, इस स्पीड पे आपको वॉक करनी है। तो वॉक भी किस इंटेंसिटी पे है वो जरूरी है। तो अगर डेफिनेटली ये की जाए, तो अगर रेगुलर करते हैं तो एटलीस्ट 4 से 5 मिलीमीटर मरकरी ब्लड प्रेशर आप खाली वॉकिंग से ही कम कर सकते हैं।
0: और एक चीज मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब आपसे कि भाई जो पेशेंट है आपके पास कई बार बहुत लेट आते हैं, कई बार बहुत अर्ली स्टेज पर भी आ जाते हैं, तो क्या बीपी की जो दवाई है एक बार शुरू होने के बाद बंद की जा सकती है अगर आप समय पर इसका निवारण ले लें तो?
1: जी देखिए, ब्लड प्रेशर मैंने आपको कहा कि बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होते हैं, जैसे मोटापा है, जैसे कि आपकी फूड स्टाइल है, आपकी नींद है, प्लस आपका डेली फिजिकल एक्टिविटी है। तो ये 5-7 रिस्क फैक्टर है। अगर आप में कौन कौन से वो रिस्क फैक्टर है और आप उसका कौन कौन से वो कंट्रोल करते हो, इसके ऊपर है। मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो 5 से 6 किलो वेट लॉस किया है, जो उन्होंने फूड में काफी कंट्रोल किया है, तो उनकी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है 50% हो जाती है। कईयों को बहुत मिनिमम डोज पे चालू करते हैं तो बंद भी हो जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट है उसको कितना कंप्लायंस रहता है, कितनी बात मानता है, कितना फॉलो करता है, उसके ऊपर। ऐसा कभी नहीं है कि एक बार लाइफ में स्टार्ट हो गया तो फिर नहीं हो सकती। ऐसे ही डायबिटीज का भी है, बहुत सारे हैं जिनको बॉर्डरलाइन डायबिटीज है। अगर अपना वेट कम करते हैं, फूड को कंट्रोल करते हैं, डेली वॉक करते हैं, नींद अच्छी लेते हैं, तो उनकी दवाइयां आधी तो हो ही जाती है, कईयों की बंद भी हो जाती है।
0: क्या बात है, बिल्कुल बहुत बहुत शानदार, बहुत सही तरीके से आपने हमारे श्रोताओं को एक जानकारी साझा करी। डॉक्टर साहब बातचीत में आगे बढ़ेंगे, छोटा सा रैपिड फायर है, आपको इंस्टेंटली जवाब देना है और हम वो रैपिड फायर शुरू करते हैं, ठीक है? यूथ के लिए ओरिएंटेड रहेगा खास तौर से कि भैया कॉफी ज्यादा डेंजरस है या फिर कोल्ड ड्रिंक,
1: दोनों
0: रात भर जागना या फिर ब्रेकफास्ट स्किप करना,
1: दोनों
0: दोनों, स्ट्रेस कम करने के लिए म्यूजिक सुने या फिर मेडिटेशन करें,
1: दोनों
0: दोनों करें, क्या बात है, वॉकिंग ज्यादा बेटर है या फिर जिम,
1: वॉकिंग
0: नमक ज्यादा हार्मफुल है या फिर शुगर,
1: दोनों
0: अति अगर किसी भी मात्रा में आप किसी भी चीज की लेंगे तो वो
1: दोनों
0: आपके लिए
1: दोनों दोनों
0: हानिकारक
1: दोनों
0: ही साबित
1: नुकसानदेह,
0: होंगी।
1: दोनों
0: बहुत ही
1: नुकसानदेह।
0: शानदार, बहुत खूब आपने इतने सही और सटीक जानकारी हमारे श्रोताओं को प्रदान करी। मैं जानना चाहूंगा आपसे जितने भी स्पेशली यूथ हमें सुन रहे हैं उनके लिए क्या कुछ खास संदेश बताना चाहेंगे आप?
1: जी यूथ है वो सभी का टारगेट होते हैं, क्योंकि वो भविष्य होते हैं, भारत का भविष्य है, समाज का भविष्य है, अपने परिवार का भविष्य है। और आजकल तो हम ये कहते हैं कि अर्ली एडोलिसेंस एज ग्रुप है, जैसे कि बच्चा जब 8 से 9 साल का होता है, 10 साल का होता है, वहीं से अगर हम उनमें अच्छी आदतें शामिल कर दें तो जब वो यूथ बनेंगे, एडल्ट बनेंगे, तो वो अपने लिए हेल्दी लाइफ और हेल्दी समाज और हेल्दी भविष्य का निर्माण करेंगे। तो जो भी यूथ हैं यंग एज के अंदर है, उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, आगे बढ़ना अच्छी बात है, महत्वाकांक्षा रखना अच्छी बात है, बट महत्वाकांक्षा के लिए अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना बहुत जरूरी है। आजकल के समय में मानसिक रूप से तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिजिकली लोग फिट लगते हैं बट मानसिक रूप से वो या तो डिप्रेशन में होते हैं, एंग्जाइटी का शिकार होते हैं। तो सबसे पहले सही समय पर सोना, सही समय पर उठना, अपने दोस्तों के साथ में घुलना मिलना, बातचीत करना, आउटडोर गेम्स खेलना, संतुलित आहार लेना, जो भी व्यसन होते हैं एल्कोहल स्मोकिंग ड्रग्स से उनसे दूर रहना, ये सारी चीजों बेसिक चीजें हैं जो हमने बचपन में बुक्स में पढ़ी है, हमारे दादाजी दादी ने बताई है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, अगर हम उन चीजों को फॉलो करेंगे तो हम 90% बीमारियों से दूर रह सकते हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बातचीत में डॉक्टर कौशल कुमार हरलाल का जी जुड़े और श्रोताओं को बहुत सही और सटीक जानकारी प्रदान करी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं अभी आपने सुनी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के मौके पर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कौशल कुमार से आरजे राहुल की बातचीत। इसका प्रोडक्शन रहा राजेश लामरोड का। तो श्रोताओं आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि जो लाइफस्टाइल में बदलाव आ रहे हैं, और जैसा अगर आपने पूरा इंटरव्यू सुना होगा तो उन्होंने बड़ा बखूबी तरीके से बताया कि किस तरीके से आज की जनरेशन को इस तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है और कैसे हमारी लाइफस्टाइल और जीने के तरीके से जो ये डिजीजेज है बहुत ही अर्ली एज पर हमारे साथ आने जुड़ने लग गए हैं। तो आप भी इस विषय पर अपनी राय रख सकते हैं। हम हमारा नंबर फिर से दोबारा दोहरा रहे हैं, जो कि है 02912553300 और दूसरा नंबर है 2254300। और हिंदी में बताएं तो ये है 2553300 और दूसरा नंबर है 2554300। तो आप भी जल्दी से फ़ोन करिए और इस टॉपिक पे आप कुछ शेयर करना चाहें तो हमें बता दीजिए।

जैसा कि रिद्धि अभी हम बात कर रहे थे हाइपरटेंशन के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अपनी हेल्थ का तो ध्यान रखना ही चाहिए, साथ ही साथ अपने फैमिली मेम्बर्स हो गए या फिर फ्रेंड सर्कल्स में भी जो है उनसे डिस्कशन करना चाहिए कि किस तरीके से हम खुद को हेल्थी रख सकते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो है मंथली जो कैंप है वो भी लगते हैं, जहाँ पर आप अपना रेगुलर चेकअप करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमारे जो भी श्रोता हैं उनके कोई फैमिली डॉक्टर

0: तो उनसे भी वो लोग कंसर्न कर सकते हैं, या फिर अपनी पूरी फैमिली को जो इसके बारे में अवेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो हाइपरटेंशन से बचा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है रिद्धि, कि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि आज के टाइम में जो लोगों में हाइपरटेंशन है, खास तौर से अगर मैं बात करूँ यूथ की, तो वो वर्क प्रेशर जो रहता है उनका जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ, तो उससे भी जो है वो बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ रहा है। और साथ ही साथ हमें देखने को मिला है कि किस तरीके से जो है वो अपना जो वो वर्क शेड्यूल है वो मैनेज नहीं कर पाते, तो इस वजह से उनको एक प्रेशर फील होता है कि अरे यार मुझे इतने समय में ये काम करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके वर्क प्रोफेशन ही नहीं रिद्धि, साथ ही साथ आप के जो पर्सनल काम होता है, जैसे किसी का कोई गोल्स होते हैं, किसी के कोई टारगेट्स होते हैं, तो वो प्रेशराइज होकर जो है वो उनको अचीव करना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप हेल्थी ही नहीं रहोगे तो आप उस गोल को अचीव करके भी क्या कर लोगे।
1: ये बात काफ़ी सच है कि जब इंसान हेल्दी नहीं होगा तो क्या होता है, क्योंकि आज के टाइम में जो टारगेट ओरिएंटेशन है, जो लोग बंधे रहते हैं अपनी बंदिश में कि कैसे काम होगा या फिर किस तरीके से उनका वर्क लाइफ बैलेंस होगा, तो यहाँ पर सबसे बड़ा रोल ही होता है विकास के। जो कारण है हाइपरटेंशन का, ब्लड प्रेशर का, वो मेजरली ये रहता है कि सबसे पहली चीज़ कि जो मोशन है, जो
0: जी,
1: इंसान का फिजिकल मोशन है, वो बहुत कम हो जाता है आज के टाइम में। जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, हम देखते हैं कि दिन भर सिटिंग रहती है और जो लंच टाइम होता है वो मात्र आधे घंटे का होता है, उसमें भी
0: बिल्कुल
1: शायद कुछ लोग घूमते भी नहीं होंगे, क्योंकि लंच ऑब्वियसली
0: बिल्कुल
1: चीज़ है, ऐसा तो है नहीं कि घूमते घूमते लंच हो। तो अगर हम पूरे दिन में देखें, अगर आजकल तो हमारे फ़ोन में भी फीचर आ गए हैं कि अगर हम फ़ोन में काउंट कर सकते हैं कि कितने स्टेप्स है आपकी, कितनी एक्टिविटी हो रही है दिन भर में, तो ये बड़ा आसान
0: बिल्कुल
1: तरीका अब तो
0: बिल्कुल
1: जुड़ गया है कि आप अपने फ़ोन से मॉनिटर कर सकते हो कि आपका कितना फिजिकल मोशन रहना है दिन भर में।
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही कर रही थी
1: आज के
0: आपने।
1: टाइम में अगर हम टेक्नोलॉजी से इतने एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें हमारे फोन्स का बड़ा स्मार्ट वे में यूज़ करना चाहिए कि आप फिजिकली फिट कैसे रह सकते हैं।
0: और साथ ही साथ हमारे श्रोताओं को भी जो है वो फ़ोन का यूज़ इसलिए करना चाहिए क्योंकि आज का दिन संडे है और इस विषय
1: हाँ
0: पर जो है वो हमसे बातचीत कर सकते हैं। और लगता है कि हमारे जो पहले कॉलर है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए करते हैं उनसे बातचीत।
1: हेलो,
2: हेलो। हाँ नमस्कार।
1: नमस्ते सर,
0: नमस्कार।
1: क्या नाम है
2: हाँ
1: आपका?
2: मैं महबूब खान बोल रहा हूँ।
1: जी महबूब जी, बताइए, आपने आज का विषय सुना होगा, आज हम
2: हाँ विषय
1: हाइपरटेंशन की
2: सुना है
1: बात कर रहे हैं।
2: मैडम। मैं दो दो चीज बताना, एक तो खान पान सही नहीं है और दूसरा है शुद्ध हवा। पहले अपने बुजुर्गों का पहले खान पान था दूध दही छाछ राबड़ी वगैरह वगैरह, इतने उनकी उम्र होती थी कम से कम 100 साल,
1: हाँ
2: कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है, होती थी उनको, और वो अच्छी अपनी अच्छी जिंदगी बसर करते। अभी अभी अभी देखो जनरेशन में 20-25 साल के आदमी को शुगर होती है और हार्ट की तकलीफ होती है और भी अन्य बीमारी किडनी की तकलीफ होती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि
2: और
0: जो
2: तो ये लोग क्या मेहनत नहीं करते ज्यादा, और नशा करते हैं, 10 प्रकार के नशा आता है, नशा करते हैं, इसलिए इसलिए बीमारी होती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने महबूब जी
2: थोड़ा
0: के अगर आप अपना
2: शुद्ध हवा नहीं मिलती है, अपने पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, पेड़ सूखे सूखे पेड़ भी काटे जा रहे हैं, जिससे शुद्ध हवा नहीं मिलती है
0: जी,
2: समझो।
1: जी सर, आपकी ये
2: और
1: बात काफ़ी सच है कि मतलब पहले के ज़माने में जो हम देखते थे कि शुद्ध हवा बहुत ज़्यादा होती थी, और साथ ही में हम आज के टाइम में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हमारे घर के बुज़ुर्ग हैं, शायद उनको भी कई बार डिजीज़ेस बड़े कम होते हैं, और जो यंगस्टर्स होते हैं घर के, उनको डिजीज़ेस पहले लग जाते हैं। तो ये तो बात तो है कि पुराने ज़माने की जो ताज़ी हवा थी और जो शुद्धता थी, वो आज के टाइम में तो नहीं है। तो इसी के साथ हमारे अगले कॉलर भी लाइन पर आ चुके हैं, आइए करते हैं उनसे बातचीत। हेलो
3: हेलो
1: जी सर, नमस्ते।
3: जी, मैं शंकरलाल बोल रहा हूँ जोधपुर से। हाँ
1: शंकरला जी, आपने आज का विषय सुना होगा।
3: बस ये जो इस समय से पहले हर चीज जब आ जाती है ना, तब बीमारी आ जाती है। मतलब एक तरह की ये बीमारियां नहीं है, ये एक तरह की फैशन हो गई है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि मेरे जो शॉप के पास में एक कोई 25 साल का आदमी जब दुकान खोलता है तो मैंने देखा कि वो अपने स्कूटी पे ये मटकी लेकर आता है। मुझे बड़ा ताजुब होता है, मेरे जो माता जी और जो मेरे पिताजी जब थे उस समय,
1: जी
3: वो कम से कम आधा किलोमीटर दूर से जहाँ पर एक ही टूटी होती थी पहले उसी मतलब उसी मोहल्ले में, तो भर के लेके आते थे और वो उसमें उनके तो मतलब अपनी शक्ति भी आपको पता चल जाती और शरीर की भी थोड़ी बहुत मालिश हो जाती थी।
1: ये
3: मतलब
1: तो बात
3: आदमी
1: है।
3: इतना इतना आलसी हो गया है। उसके अलावा

0: देखो हम किसी शॉपिंग मॉल में भी जाएंगे तो अपना स्टेटस दिखाने के हिसाब से जो भी हम लोग सामान खरीदते हैं तो उसका बैग उठाने के लिए हम वहां के किसी आदमी को बोलेंगे, सर ये हमारा सामान हमारी गाड़ी तक पहुंचाओ। मतलब मेहनत करना कोई नहीं चाहता, ठीक है। दूसरा, ये जो आजकल मैं देख रहा हूँ, मतलब 15-20 सालों के जो भी बच्चे होते हैं वो
1: जी
0: मतलब सब देखा देखी के हिसाब से वो स्मोकिंग कर रहे हैं। मतलब हमारा जो ये देश, हमारा जो फ्यूचर है, आने वाली पीढ़ी कहाँ जा रही है, ये सब ये लाइफ स्टाइल के जब से ये बदलाव आया है तब से ये बीमारियां समय से पहले आ चुकी है।
1: जी
0: बिल्कुल
1: सर,
0: सही
1: आपने
0: कहा
1: ये
0: आपने।
1: बात काफ़ी सच कही है कि अभी जो यंगस्टर्स है वो सिर्फ फैशन में या फिर शो ऑफ में भी कई बार प्रेशर में आके गलत तरफ जा रहे हैं, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया। तो ये फैक्टर तो है कि आसपास के

0: भी हम लोग सामान खरीदते हैं तो उसका बैग उठाने के लिए हम वहाँ के किसी आदमी को बोलेंगे, सर ये हमारा सामान हमारी गाड़ी तक पहुँचाओ। मतलब मेहनत करना कोई नहीं चाहता, ठीक है। दूसरा ये जो आजकल मैं देख रहा हूँ, मतलब 15-20 सालों के जो भी बच्चे होते हैं वो मतलब सब देखा देखी के हिसाब से वो स्मोकिंग कर रहे हैं। मतलब हमारा जो ये देश, हमारा जो फ्यूचर है, आने वाली पीढ़ी कहाँ जा रही है, ये सब ये लाइफ स्टाइल के जब से ये बदलाव आया है तब से ये बीमारियां समय से पहले आ चुकी है।
1: जी सर, आपने ये बात काफ़ी सच कही है कि अभी जो यंगस्टर्स है वो सिर्फ फैशन में या फिर शो ऑफ में भी कई बार प्रेशर में आके गलत तरफ जा रहे हैं, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया। तो ये फैक्टर तो है कि आसपास के टाइम में, और होता है ना कि खुद को सोसाइटी के हिसाब से आपको
2: बिल्कुल
1: शो
2: बिल्कुल
1: करना है कि आप वो लेवल मैच कर पा रहे हैं या नहीं, तो ये चीज़ तो देखने को मिलती है। और साथ तक जहाँ पर ये है कि फिजिकल एक्टिविटी की बात हो रही है, तो
2: बिल्कुल
1: जैसा हमारे श्रोताओं
0: बिल्कुल
1: ने अभी बताया। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो श्रोता, हम इसी विषय पर बात कर रहे थे, और जैसा अभी सर ने बताया कि जो फिजिकल एक्टिविटी होती है जो हम देख रहे हैं आसपास, अब बहुत कम हो गई है। पहले तो ये भी होता था कि शायद हम सब्जी लेने में भी बाहर जाते थे तो उसमें भी आपका चलना फिरना बहुत ज़्यादा होता था। आजकल हम देखते हैं कि सब्जी भी आपके घर पर डिलीवर हो जाती है, और बहुत आसानी से, बहुत एक बटन क्लिक करना है और आपके घर पर सारा सामान आ जाता है। तो हाँ, अभी ये हो सकता है श्रोताओं कि अगर आप भी अपने लाइफ में फिट रहना चाहते हैं और थोड़ा सा खुद का ध्यान रखना चाहते हैं, तो ज़रूर से आप खुद इन्वॉल्व हुए चीज़ों
2: बिल्कुल
1: में
2: सही
1: और
2: कहा,
1: खुद का ख्याल रखें, और साथ में गाने एंजॉय करने बहुत ज़रूरी है।
2: एग्जैक्टली।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पता है रिद्धि, की जैसा कि हमने अभी बात करी हाइपरटेंशन के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब सुनने के बाद, जो भी आज का हमारा इंटरव्यू था, जो कि डॉक्टर साहब ने बोला कि किस तरीके से जो है आप अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कर सकते हैं, और इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हैप्पीनेस, यानी कि आप छोटी छोटी चीज़ों में जो है वो खुशियाँ ढूंढना सीखें।
3: हाँ, ये तो है विकास, कि हमारी लाइफ में अगर कोई चीज़ बेटर हो सकती है तो वो है हमारी खुद की खुशी। बहुत बार होता है कि जब ऐसा लगता है कि यार दिन हमारे फेवर में नहीं जा रहा है, या फिर स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद अपने ईयरफोन्स हेडफोन्स पे गाने चलाओ, थोड़ी देर खुद के मतलब खुद से ही डांस कर लो अपनी जगह पर बैठे बैठे। और मुझे खुशी होती है ना कि जब कोई आप एकदम पार्टी सॉन्ग सुन रहे हो, एकदम लाइवली सॉन्ग सुन रहे हो, अगर गाना ना भी हो तो एटलीस्ट कोई ऐसी वीडियो देख लीजिए जो आपको हंसा दे, या फिर कोई ऐसी पुरानी फोटो देख लीजिए अपनों की जो आपके मन में थोड़ी सी खुशी की झलक छोड़
2: और
3: जाए।
2: साथ ही साथ रिद्धि, जो भी हमारे यूथ है, जो भी वर्किंग पर्सन है, तो अपनी जॉब लाइफ में जो है वो थोड़ा सा प्रेशर कम फील करे, और हमेशा दिमाग में यही रखे, क्या है ना यार, हो जाएगा, कर लेंगे।
3: हाँ,
2: तो
3: और ये चीज़ भी देखी जाए ना विकास, तो लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितनी हम बना के
2: जितनी हम
3: रखें,
2: बना लेते हैं। बिल्कुल,
3: क्योंकि आसपास देखें तो बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी मिली है हमें, और जो खुशियाँ हैं वो ढूंढने पे मिलती हैं। आज के टाइम में तो यही हो गया कि उसको ढूंढो तो आपको मिल जाएगी, और
2: बिल्कुल।
3: अगर आप नहीं ढूंढना चाहते तो फिर कॉमन
2: और
3: लाइफ से
2: कोई
3: चले जाओ।
2: भी जो प्रॉब्लम होती है उनको बिल्कुल स्मूथली सॉल्व करने की जो है वो कोशिश करें।
3: तो हाँ दोस्तों, अगर आज का ये हाइपरटेंशन का दिन है तो हम आपको यही एडवाइस देना चाहेंगे कि ये जो हाइपरटेंशन है वो आपकी खुशियों से बहुत कम हो सकती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये वाला गाना।

0: के साथ वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रिद्धि शाम के ठीक 6 बजने वाले हैं और हम फिर मिलेंगे आपसे ठीक शाम 5 बजे आपके अपने इस कार्यक्रम युववाणी में। और आज के इस खूबसूरत से प्रोग्राम में दो आवाजें आपके साथ जुड़ी हुई थी, यानी कि मैं विकास और मेरे साथ थे
1: और मैं हूँ श्रोताओं रिद्धि। और मेरी यही आशा है कि ऊपर वाला आपको हाइपरटेंशन तो क्या नॉर्मल टेंशन से भी हमेशा दूर रखें, आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अच्छे अच्छे गाने हमेशा सुनते रहें। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त,

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। शाम के 6 बजने को हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार सुनिएगा।
1: रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अपने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। गोथेनबर्ग रवाना होने से पहले नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन स्वयं एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी को विदाई दी। नीदरलैंड्स की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रॉब येटेन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउटाइक बांध का भी दौरा किया। ये यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंबात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि एनआईडी जैसे संस्थान युवाओं को नवाचार और कौशल विकास के लिए सही मंच प्रदान करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबित मांगे अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी।

कार्यक्रम विवरण में हम आपको बताते हैं हमारी आज की सभा की शेष रहे और कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की जानकारी। तो आइए पहले बता दें हमारी आज की सभा में आप कौन कौन से कार्यक्रम सुन सकते हैं। रात 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम सुनना न भूलिएगा। ग्रामीण भाइयों के लिए सीमा डेरी गूंज ये कार्यक्रम शाम 7:30 पर होगा। 7 बजे चौपाल सजेगी। 9:15 का आनंद लिया जा सकता है। रात 9:15 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। ये थी जानकारी आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रमों की। और अब आपको बता दें कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों के बारे में।

कल सुबह 10 बजे आकाशवाणी स्थापना के 90 वर्षों के गौरवमयी सफर के उपलक्ष्य में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष 13 मई को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के बृहस्पति सभागार जोधपुर में आयोजित सुगम संगीत संध्या स्वरोत्सव कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के संपादित अंश सुनिएगा। गायक कलाकार होंगे अनूप राजपुरोहित और आमिर हुसैन। जिन कलाकारों ने संगत की है वो हैं राजन द्वारका तबले पर, बांसुरी वादन दीपक बहरा का और राशि बाहिती तानपुरा संगत। उद्घोषक रहेंगी नीमी चंद और शैला माहेश्वरी। सुबह 9:10 पर कल सुनिएगा जानकारियों से भरा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। समय रहेगा 8:30। महिलाएं अपना कार्यक्रम गणगौर सुनेंगी दिन में 1:15 पर। युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी शाम 5 बजे होगा। किसान भाइयों के लिए चौपाल शाम 7

बजे प्रसारित किया जाएगा। शाम 7:30 पर सुनिएगा सीमा डेरी गूंज। खेल जगत, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा रात 10 बजे। कुछ बातें कुछ गीत, इस कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7 बजे। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन सुबह 6:15 पर जरूर सुनिएगा। सुबह 6:05 पर श्री रामचरित मानस अवश्य सुनिएगा। कृषि जगत कार्यक्रम में दिन में 1:05 पर आपको सुनवाएंगे जैविक खेती के लिए सुपर कंपोस्ट कैसे बनाएं। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम दिन में 2:30 पर होगा। ये थी जानकारी हमारी आज की सभा के शेष और कल की दोनों सभाओं के विशेष कार्यक्रमों के बारे में कार्यक्रम विवरण में। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। आइए सुने देशगान।

0: समवेत स्वरों में ये देशगान अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 6:20 होने हैं। संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनिएगा।
1: आह श्रूयंताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन देशस्य द्विदिवसीय यात्रायां गोथेनबर्ग नगरं सम्प्राप्तवान्। सः स्वीडन देशस्य प्रधानमंत्रिणा उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यनेन सह व्यापार हरित परिवर्तन एआई तथा रक्षा क्षेत्रेषु सहकारस्य समीक्षायै वार्तालापं करिष्यति। भारत नीदरलैंड्स देशौ द्वैपाक्षिक संबंधान सामरिक सहभागित्वेन वर्धितवन्तौ। प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहयोगं सुदृढं कर्तुं 17 संधिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। होर्मुज जलसंधौ वाणिज्यिक नौकायानस्योपरि आक्रमणानि अस्वीकार्यानि इति भारतेन निन्दितम्। कांगो युगांडा देशयोः इबोला प्रकोपः अंतर्राष्ट्रीय चिन्तायाः सार्वजनिक स्वास्थ्यापत्कालेति विश्व स्वास्थ्य संघटनेन घोषितम्। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य श्रेयांसी वाल्लिसेट्टी इत्येषा बावोजी चाइना मास्टर्स स्पर्धायां महिला एकल क्रीडायां रजत पदकं विजितवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग नगरं सम्प्राप्तवान्। नीदरलैंड्स देशस्य स्वीयां यात्रां समाप्य असौ अद्य सायंकाले स्वस्य पंच देशानां यात्रायाः तृतीये चरणे स्वीडन देशं सम्प्राप्तवान्। स्वीडन देशस्य स्वीयायां द्विदिवसीय यात्रायां श्रीमोदी अद्य स्वीडिश प्रधानमंत्रिणा उल्फ क्रिस्टर्सनेन सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति तथा द्विपक्षीय संबंधानां सर्वेषां पक्षाणां समीक्षापि विधास्यति। उभयोः पक्षयोः व्यापारः हरित परिवर्तनं कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्टार्टअप्स सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाः रक्षा अंतरिक्षम जलवायु परिवर्तनम जनसंबंधाश्च इत्यादिषु सहयोगस्य नूतनान मार्गान अन्वेष्टुम् अपेक्षास्ति। उभौ प्रधानमंत्रिणौ उर्सुला फॉन डेर लेयन इत्यनया यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षया सह मिलित्वा यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलनम अपि संबोधयिष्यतः यत् प्रमुखम् अखिल यूरोपीय व्यापार मञ्चमस्ति। स्वस्य द्विदिवसीयायाः नीदरलैंड्स देशस्य यात्रायां प्रधानमंत्री श्रीमोदी स्वस्य डच समकक्षीयेण सह द्विपक्षीय वार्तां कृतवान्। उभौ देशौ रक्षा महत्वपूर्ण खनिज तथा अन्येषु प्रमुख क्षेत्रेषु सहयोगं सुदृढीकर्तुं 17 संधिपत्राणि हस्ताक्षरितवन्तौ। उभौ नेतारौ पश्चिम एशिया देशस्य स्थितेः तथा वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति व्यापारस्य उपरि तस्य प्रभावस्य विषये गभीरां चिन्तां प्रकटितवन्तौ। सामाजिकान्तर्जालीये पटले लिखिते सन्देशे श्रीमोदी उक्तवान् यत् नीदरलैंड्स देशस्य तस्य यात्रा द्विपक्षीय सम्बन्धान् नूतने स्तरे नेष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई मासस्य 31 दिनांके आकाशवाण्याः मन की बात इति कार्यक्रमे देश विदेशस्थ जनैः सह विचार विनिमयं करिष्यति। इदं हि मासिकस्य रेडियो कार्यक्रमस्य 34वें संस्करणं भविष्यति। जनाः नमो ऐप इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे माई जी ओ वी ओपन फोरम इत्यत्र अथ च 1800117800 अनेन दूरभाष संख्या माध्यमेन च कार्यक्रमस्य विषये स्वीय प्रतिक्रियां दातुं शक्नुवन्ति। आगामि संस्करणाय परामर्शाः अस्य मासस्य 31 दिनांक पर्यन्तं स्वीकृताः भविष्यन्ति। होर्मुज जलसंध्यां वाणिज्यिक नौकासु कृतं होर्मुज आक्रमणं अस्वीकार्यम् इति

0: श्रेयांसी वाल्लिसेट्टी इत्येषा बाबूजी चाइना मास्टर्स स्पर्धायां महिला एकल क्रीडायां रजत पदकं विजितवती। अद्य नेपाल देशीया पर्वतारोही कामी रीता शेरपा इत्येषा द्वात्रिंशद्वारं माउंट एवरेस्ट शिखरम आरुह्य ऐतिहासं विरचितवती। षट्पंचाशत् वर्षीया एषा पर्वतारोही विश्वस्य उच्चतम शिखरं सर्वाधिक वारं आरोहणस्य स्वकीयमेव कीर्तिमानं पुनः आरेखितवती। इति वार्ताः।
1: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अब सुनिएगा।
2: छोड़ो।
3: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
2: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
3: तो फिर सही नंबर,
2: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
2: काम से नहीं।
4: आरबीआई कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार और रक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर बातचीत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बताया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने लोगों से ईंधन बचत मुहिम में भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। और विश्व रक्तचाप दिवस के मौके पर विभिन्न स्थानों पर जन जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया गया। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर अब से कुछ ही देर पहले गोथेनबर्ग पहुंचे। हवाई अड्डे पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवानी की। प्रधानमंत्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ व्यापार, तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप्स, आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन नियंत्रण पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष सुश्री उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात और यूरोप यात्रा का तीसरा चरण है। वहीं कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने अपने संबंधों को सामरिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रैमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
7: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
6: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर पहुंचे। श्री बिरला ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने कोटा में भीम राजपूत हॉस्टल में राजमाता शिवकुमारी बालिका छात्रावास की आधारशिला रखी। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि शिक्षा से ही समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने बालिका शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रयास करने पर जोर दिया।
8: आज समाज के अंदर शिक्षा की आवश्यकता, में कलम की आवश्यकता, ये हमारी आने

0: इसके लिए समाज ने समय समय में अलग अलग कालखंड के अंदर काम किया, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, छात्रावास बनाए, लेकिन प्रमाण की आवश्यकता ये है भारत की महिलाएं समाज जीवन के अंदर अलग अलग क्षेत्र के अंदर अपने कीर्तिमान हासिल, और इस समय आवश्यकता यही है कि समाज ने इतने बड़े संस्कार दिए हैं तो हमारे आने वाली बेटियां इस देश और समाज के लिए समर्पण के बाद काम करें।
1: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रशासनिक पदों पर चयनित अधिकारियों से पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों की समस्याओं के समाधान का विशेष ध्यान रखने की बात कही है। उन्होंने गांव और गरीब लोगों के लिए काम करना नए भारत के निर्माण की प्राथमिकता बताया। राज्यपाल श्री बागड़े आज जयपुर में प्रतिभा सम्मान समारोह में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 नव चयनित अधिकारियों और राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद के 59 नव चयनितों का सम्मान किया गया। राज्यपाल ने अंतिम छोर के व्यक्ति की आवाज सुनने और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ अच्छा व्यवहार करने का आह्वान किया। देश के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश के लिए होने वाली जेईई एडवांस परीक्षा 2026 का आज आयोजन किया गया। इसमें जेईई मेंस में क्वालिफाई करने वाले 2.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। आईआईटी रुड़की की ओर से इस परीक्षा का आयोजन किया गया। कंप्यूटर आधारित ये परीक्षा 2 पारियों में हुई। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर रोक लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार चांदी की कई श्रेणियों से फ्री सूची से हटाकर प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है। इन पाबंदियों के कारण अब बिना सरकारी मंजूरी के कोई भी आयातक या जेवरात कारोबारी विदेश से चांदी का आयात नहीं कर सकेगा। गैर जरूरी आयात को कम करने और विदेशी मुद्रा के खर्च पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ईंधन बचाने की मुहिम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जयपुर से अजमेर का सफर रेलगाड़ी से तय किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से संवाद कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की अपील की।
2: सबको मिलकर अगर हम लोग फ्यूल बचाएं तो मुझे लग रहा है उससे फर्क पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये अपील की है पूरे देश को कि जितना हो सके हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करें, कार पूलिंग करें, साइकिल का इस्तेमाल करें, वॉक करें। हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है। ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं अगर हम लोग लेंगे, ये चेंजेस अगर हम लोग करेंगे तो मुझे लगता है इससे बहुत फर्क।
1: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी बीकानेर रेलवे स्टेशन से अपने आवास तक का सफर ई रिक्शा से तय कर ईंधन बचत का संदेश दिया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी आज जोधपुर में लोगों से पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल किफायत से करने का आह्वान किया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज आमेर महल का भ्रमण किया। उन्होंने महल परिसर में चल रहे विकास और संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। पर्यटकों की बढ़ती आवक को देखते हुए मुख्य सचिव ने आमेर तक पहुंचने वाले रास्तों को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने डिजिटल संग्रहालय और गाइड प्रशिक्षण को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
3: जो जयपुर का इतिहास है आमेर किले में रहता है। आमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत काफी रेस्टोरेशन वर्क किया जा रहा है सासकी में, और हाल ही में 2 दिन पहले मैंने रिव्यू किया था तो उस समय मैंने देखा काफी कल्चरल कंजर्वेशन का वर्क आईजीएनसी के साथ मिलकर हम लोग कर रहे हैं। 500 साल पुराना इतिहास को कंजर्व करना बड़ा स्पेशलाइज्ड आर्ट है, तो आज मैंने देखा था और मैं संतुष्ट।
1: इस दौरान पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉ पंकज और आमेर महल के अधीक्षक डॉ राकेश भी मौजूद रहे। हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संग्रहालयों के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। इस मौके पर राज्य के सभी संग्रहालयों तथा स्मारकों में सभी आगंतुकों के लिए प्रवेश मुक्त रखा गया है। वहीं इससे एक दिन पहले आज जयपुर में हेरिटेज टेम्पल वॉक रखी गई है। इसके जरिए शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उसके संरक्षण का संदेश दिया गया। कोटा में प्रसूताओं की मौत और किडनी फेल होने के मामले में कल दिल्ली एम्स की टीम ने कोटा का दौरा किया। इसकी जांच रिपोर्ट अब

0: पेश की जाएगी। इस बीच अब तक 16 से अधिक महिलाओं की किडनी खराब होने के मामले सामने आ चुके हैं। आज न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती एक और प्रसूता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस प्रकार रहस्यमयी संक्रमण से अब तक 5 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। आज विश्व रक्तचाप दिवस के मौके पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविर रखे गए। इनमें विशेषज्ञों ने लोगों के ब्लड प्रेशर की जांच की और इससे होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। इसी कड़ी में झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में भी शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर पीएमओ डॉ जितेंद्र भामू ने लोगों को उच्च रक्तचाप से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समय पर इलाज नहीं करवाने पर इससे कई तरह की गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
1: रक्तचाप एक गंभीर बीमारी के रूप में आम जन के अंदर बढ़ता जा रहा है। इसमें डायस्टोलिक बीपी है वो ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। आम जन को इच्छा है कि समय समय पर अपनी निशुल्क जांच पीढ़ी के अस्पताल में अवश्य कराएं। यहाँ पे दवा, जांच एवं उपचार की विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध।
0: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने उदयपुर के प्रतापनगर थाने के एएसआई सुनील विश्नोई को 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसीबी के अतिरिक्त एसपी अनंत कुमार ने बताया कि आरोपी ने ये राशि दुष्कर्म के प्रयास और छेड़छाड़ के मामले में मुकदमा दर्ज नहीं करने की एवज में मांगी थी। राज्य में बीते सप्ताह से मौसम में जारी उतार चढ़ाव और बदलावों के बीच गर्मी का असर फिर से तेज होने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी तथा हीट वेव का प्रकोप रहने के आसार जताए हैं। विभाग ने आज भी 8 जिलों के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया है। दिन और रात दोनों के तापमान में उछाल आने की संभावना है। पश्चिम और उत्तरी पश्चिम जिलों में लू का सबसे ज्यादा असर देखा जा सकता है। इस बीच बीकानेर, चूरू, बाड़मेर और जैसलमेर में भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है और रातें भी काफी गर्म दर्ज की जा रही हैं। वहीं करौली में आज दिन का तापमान 45 डिग्री के पार मापा गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार और रक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर बातचीत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बताया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने लोगों से ईंधन बचत मुहिम में भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया और विश्व रक्तचाप दिवस के मौके पर विभिन्न स्थानों पर जन जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बीकानेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफल आयोजन के लिए जिले में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न क्रियान्वयन समितियों के गठन के आदेश जारी किए गए हैं। आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक डॉ पवन कुमार पारीक ने बताया कि जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की अध्यक्षता जिला कलेक्टर निशांत जैन करेंगे और जिला स्तर पर विभिन्न विभागों, स्वैच्छिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर भी समितियों का गठन कर कार्यक्रम के सफल संचालन, योग प्रशिक्षकों की व्यवस्था, प्रचार प्रसार गतिविधियों और विभिन्न प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं तथा योग प्रदर्शनी के आयोजन की जिम्मेदारी तय की गई है। डॉ पारीक ने बताया कि जनमानस में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जिले में 2 मई से 20 जून तक 50 दिवसीय योग दिवस काउंटडाउन अभियान के तहत विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 21 जून को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक प्रमुख कार्यक्रम रखा जाएगा। इस मौके पर योग विषयक व्याख्यान, कार्यशालाएं और प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। बीकानेर के पीबीएम ट्रोमा सेंटर में ओबीआरसी ऑर्थोबायोलॉजिकल रिसर्च क्लिनिक के विकास कार्यों के लिए 15 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है। बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने विधायक कोटे से ये राशि मंजूर करते हुए कहा कि चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और

0: अत्याधुनिक संसाधनों के विस्तार के लिए यह कार्य महत्वपूर्ण होगा। इससे मरीजों को बेहतर सुविधाएं और शोध तथा उपचार कार्यों को मजबूती मिलेगी। जिले में स्कूली विद्यार्थियों को राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और राजस्थानी पुस्तकों की जानकारी दी जा रही है। इसके लिए राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी पुस्तकालय में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को दर्शाते हुए फ्लैक्स तथा प्रदर्शनी लगाई गई है। अकादमी के सचिव शरद केवलिया ने बताया कि पुस्तकालय में उपलब्ध लगभग 14,000 पुस्तकों के संबंध में विद्यार्थियों को बताते हुए राजस्थानी में बोलने पढ़ने और लिखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बीकानेर में बीते दिनों ग्राम रथ अभियान के जरिए आम जनता को केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। ये विकास रथ जिले के गांवों और ढाणियों तक पहुंचे, जहां पात्र लोगों को मौके पर ही योजनाओं से लाभान्वित किया गया। ये अभियान कल संपन्न हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि ग्राम विकास चौपाल के माध्यम से राज्य सरकार आम जन के द्वार तक पहुंचकर किसानों, महिलाओं, युवाओं और सभी वर्गों को योजनाओं का लाभ देती रहेगी। बीते दिनों जिले के 40 सरकारी विद्यालयों में इंटरैक्टिव पैनल और ड्यूल डेस्क वितरण कार्यक्रम रखा गया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सुजान देसर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हुड़को द्वारा CSR के तहत दी गई ये सामग्री बच्चों के लिए बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी। हुड़को द्वारा 25 करोड़ रूपये की लागत से सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं। इससे इन विद्यालयों के 15,000 विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ होगा। जिला कलेक्टर निशांत जैन ने बीते दिनों जिला कलेक्ट्रेट सभागार में पंच गौरव अभियान की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर को योजना के जिला नोडल अधिकारी और आयोजना विभाग के संयुक्त निदेशक धर्मपाल खेचड़ ने बताया कि इस योजना के तहत वर्ष 2026-2027 के लिए जिले से 10,55,45,000 रूपये के विभिन्न प्रस्ताव भेजे गए हैं। जिला कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रस्तावों पर जल्दी ही अग्रिम कार्रवाई करने और व्यक्तिगत रूप से समन्वय करने के निर्देश दिए। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिले में भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। इस अवसर पर जूनागढ़ के सामने स्थित शिखरबंद महादेव मंदिर में विशेष आयोजन हुआ। शिवालय में रुद्राभिषेक कार्यक्रम रखा गया। इसी कड़ी में प्रसाद वितरण, फूलों की रंगोली और सजीव झांकी प्रस्तुत की गई। इसके साथ ही बीकानेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है सिंचा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन रा प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन रे साथे कारोबार एर रक्षा समेत दूजा हल्का माए आपसी सहयोग माथे बतल करेला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ने भविष्यरी माली बंदोबस्त रो खास आधार बताया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी लोगों ईंधन बचत मुहिम माए भागीदारी तय करन री अर्ज करी। और विश्व रक्तचाप दिवस रे मौके न्यारी न्यारी ठोड़ा जन जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविर लगाई जा। समाचारों रे साथ है मैं शंभू सिंह और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन री 2 दिन री यात्रा माथे कुछ देर पहला गोथेनबर्ग पुग्या। हवाई अड्डा माथे स्वीडन रा प्रधानमंत्री श्री उल्फ क्रिस्टर्सन प्रधानमंत्री श्री मोदी री अगुवाई करी। प्रधानमंत्री श्री मोदी स्वीडन रा प्रधानमंत्री रे साथे कारोबार, तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, सप्लाई कड़ी, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन नियंत्रण माथे बतल करेला। दोनों नेता यूरोपीय आयोग री अध्यक्ष सुश्री उर्सुला फॉन डेर लॉयन रे साथे यूरोपियन उद्योग गोलमेज सम्मेलन माए बोलेला। आ प्रधानमंत्री श्री मोदी री संयुक्त अरब अमीरात और यूरोप यात्रा रो तीजो चरण है। वठे काले आपरी यात्रा रा दूजा चरण माए भारत और नीदरलैंड्स आपरा हिता ने सामरिक थर माथे ले जार 17 करार करिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डीप टेक्नोलॉजी भविष्य

0: ली बंदोबस्त रोक खास आधार वेला आज अहमदाबाद माय मिलियन माइंड्स टेक पार्क रा पहला चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस रो उद्घाटन करता वणा कयो के भारत दुनिया रा हर उभरता हलका माय अगवा बन गयो है।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज आपरा संसदीय हल्का कोटा बूंदी रा दौरा माथे

0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े प्रशासनिक ओहदा माथे चुनिजा एहलकारों पिछड़ा और कमजोर तबकारा लोगों की समस्यावां ने निपटावण सारू खास ध्यान रखने की बात कही है। वणा गांव और गरीब लोगों सारू काम करनो नुआ भारत ने बनाने की प्राथमिकता बताया। राज्यपाल श्री बागड़े आज जयपुर में प्रतिभा सम्मान जलसा में बोल रहा हा। ई कार्यक्रम में भारतीय प्रशासनिक सेवा रा तीन नुआ चुनिजा एहलकार और राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद रा 59 नुआ नियुक्त एहलकारा रो सम्मानी करी जो। राज्यपाल आखिरी छेड़ा रा मिनखरी आवाज सुनने और चुनिजा जन नुमाइंदा रे साथ चोखा व्यवहार करने री अरज करी। देश रा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में भर्ती सारू होने वाली जेई एडवांस परीक्षा 2026 रो आज आयोजन करी जो। इन माय जेई मेन्स माय कामयाब रहने वाला 2.5 लाख पढ़ेसर भेड़ा भिया। आईआईटी रुड़की का न्यू आ परीक्षा कराई जी ही कंप्यूटर मार्फत आ परीक्षा दो पारियां माय भी। केंद्र सरकार चांदी रा आयात माथे रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय का न्यू जारी अधिसूचना मुजब चांदी ने कई वर्गारी फ्री सूची माऊ हटार इनने प्रतिबंध वाली सूची माय डाल दी जा है। आ पाबंदियां रे कारण अबे बिना सरकारी मंजूरी रे कोई आयात या जेवरात कारोबारी विदेशों चांदी रो आयात नहीं कर सकेला। गैर जरूरी आयात ने कम करण और विदेशी मुद्रा रा खर्च माथे लगाम लगाउन सारू ओ कदम उठाई जो है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान माथे सुन सको हो। इनके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in माथे ही समाचार सुन सको हो और वहां जुड़िया फोटो और वीडियो देख सको हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा री ईंधन बचाने री मुहिम में जन नुमाइंदा एहलकार और लोग ही आपरी भागीदारी तय कर रहा है। ई कड़ी में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज जयपुर अजमेर रो सफर रेलगाड़ियों पूरो करियो। ई दौरान वणा यात्रुआ रे साथ बतल करने सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट अपनाने री अर्जी करी।
1: सबको मिलकर अगर हम लोग फ्यूल बचाएं तो मुझे लग रहा है उससे फर्क पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये अपील की है पूरे देश को कि जितना हो सके हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करें, कार पुलिंग करें, साइकिल का इस्तेमाल करें, वॉक करें। हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है। ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं अगर हम लोग लेंगे, ये चेंजेस अगर हम लोग करेंगे तो मुझे लगता है इससे बहुत फर्क।
0: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाली बीकानेर रेलवे स्टेशन आपरा रहवास ताई रो सफर ई रिक्शाओं तय करने ईंधन बचाने रो संदेश दियो। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेली आज जोधपुर में लोगों पेट्रोल डीजल ने किफायती काम में लेने री अर्ज करी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन आज आमेर महल ने देखा। वणा महल परिसर में चल रहा विकास और संरक्षण रा काम रो जायजो लियो। सैलानियों की बदती आवक न देखना मुख्य सचिव आमेर ताई पुगण वाला मार्ग ने और बेहतर बनावन रा निर्देश दिया। वणा डिजिटल संग्रहालय और गाइड सिखावन ने लेर एहलकारा ने जरूरी निर्देश दिया। ई दौरान पुरातत्व महकमा रा निदेशक डॉक्टर पंकज और आमेर महल अधीक्षक डॉक्टर राकेशी मौजूद रिया।
2: जो जयपुर का इतिहास है आमेर किले में रहता है। आमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत काफी रेस्टोरेशन वर्क किया जा रहा है सासकी में, और हाल ही में दो दिन पहले मैंने रिव्यू किया था तो उस समय मैंने देखा काफी कल्चरल कंजर्वेशन का वर्क आईजीएनसी के साथ मिलकर हम लोग कर रहे हैं। 500 साल पुराना इतिहास को कंजर्व करना बड़ा स्पेशलाइज्ड आर्ट है, तो आज मैंने देखा था और मैं संतुष्ट।
0: हर साल 18 महीने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जावे है। इनरो मकसद संग्रहालयों री मार्फत सांस्कृतिक लेन देन और आपसी समझ ने बढ़ावो देवनो है। ई मौके राज्य रा सगला संग्रहालय और स्मारक में आवण वाला सगला सारू प्रवेश मुफ्त राखी जो है। वठे इनु एक दिन पहला आज जयपुर में हेरिटेज टेम्पल वॉक राखी जी। इनरी मार्फत शहरी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर रे प्रति जाग जगावण और उनरा संरक्षण रो संदेश दिरीजियो। कोटा में प्रसूतामारी मौत और किडनी फेल होने रा मामला में काले दिल्ली एम्स री टीम कोटा रो दौरो करियो। इनरी जांच रिपोर्ट अबे पेश करी जायला। ई बीच अजय ताई

0: 16 32 महिलाओं की किडनी खराब होने का मामला सामी आ चुका है। आज न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आए भर्ती एक और प्रसूता इलाज के दौरान दम तोड़ दियो। ई रहस्य वाले संक्रमण अजे ताई 5 प्रसूताओं की मौत वह चुकी है। आज विश्व रक्तचाप दिवस रे मौके प्रदेश में न्यारा न्यारे ठोड़ा जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविर लगाई गया। आम आए विशेषज्ञ लोगों रा ब्लड प्रेशर की जांच करी और इणु होने वाला नुकसान रा बारा में जानकारी दी। ई कड़ी में झुंझुनू रा बीडीके अस्पताल में ही शिविर लगाई गयो। ई मौके पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र भामू लोगों ने बीपीयू होने वाला बुरा नतीजा की जानकारी दी। वणा कहो कि भगत माथे इलाज नहीं करावण माथे इणु कई चिंताजोग स्वास्थ्य समस्याओं रो सामनो करनो पड़ सके है।
1: रक्तचाप एक गंभीर बीमारी के रूप में आम जन के अंदर बढ़ता जा रहा है। इसमें डायस्टोलिक बीपी है वो ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। आम जन को इच्छा है कि समय समय पर अपनी निःशुल्क जांच पीडी के अस्पताल में अवश्य कराएं। यहाँ पे दवा जांच एवं उपचार की विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध।
0: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी उदयपुरा प्रतापनगर थाना रा एएसआई सुनील बिश्नोई ने 1,00,000 रूपये की घूस लेवता गिरफ्तार किया है। एसीबी रा अतिरिक्त एसपी अनंत कुमार बतायो के आरोपी आ रकम दुष्कर्म की कोशिश और छेड़छाड़ रा मामला में मुकदमो दर्ज नहीं करने की एवज में मांगी ही। बालोतरा कने आज एक सड़क हादसा में 3 लोगों की मौत हुई। दुर्घटना भारत माला एक्सप्रेस वे माते हुई। जिला पुलिस अधीक्षक रमेश बतायो के एक तेज रफ्तार कार बेकाबू वेर पलट जावणु उनमाय सवार 3 लोगा मौका माथे दम तोड़ दियो वठे 3 दूजा गहरा घायल वे गया। ए लोग गुजरात रा बनासकांठा जिला रा धानेरा गांव रा रहवासी बताया जावे। उठीने अजमेर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 माथे नागौर जिला रा चकढाणी गांव में एक कार और रोडवेज बस री टक्कर वेगी जिनमाय 4 लोगा री मौत वेगी और 4 गहरा घायल वे गया। उठीने पाली जिला रा देसूरी हल्का माय घाणेराव गांव माय दूषित भोजन काम में लेवणु 11 लोगों की तबियत बिगड़ गई। वहां रो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करायो जावे। नाबे मौसम राज्य में लारला हफ्ताओं मौसम में चादरियो उतार चढ़ाव और बदलाव रे बीच गर्मी रो असर फिर तेज होवण लाग्यो है। मौसम महकमो आवता 2-3 दिन में तापमान में और बढ़वार और हीटवेव रो असर रेवण रा आसार जताया है। महकमो आज ही 8 जिला में लू रो येलो अलर्ट काढ़ियो है। दिन और रात रा तापमान में उछाल आवण री आस है। आथुणी और आथुणी अगुणी जिला में लू रो सबू बत्ती असर देखियो जावे। ई बीच बीकानेर चूरू बाड़मेर और जैसलमेर में करड़ी गर्मी रो दौर चाल रियो है और रात में घनी गर्मी दर्ज करी जावे। वठे करौली में आज दिन रो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से पार नापी जियो। डीग जिला में खेती महकमा कानू सघन गुण नियंत्रण अभियान चलायो जावे। 15 जुलाई तक चलने वाला ई अभियान के तहत खेती महकमा की टीम दुकाना और खाद बीज और कीटनाशक का नमूना भेड़ा करेला इनने प्रयोगशाला में भेजने वाली गुणवत्ता जांची जायला। मैं अबे आखिर में खास समाचार आप एक और फिर सुन दे रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन रा प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन रे साथे कारोबार और रक्षा समेत दूजा हल्का में आपसी सहयोग माथे बातल करेला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ने भविष्य री माली बंदोबस्त रो खास आधार बताया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी लोगों ईंधन बचत मुहिम में भागीदारी तय करने री अर्ज करी और विश्व रक्तचाप दिवस मौके न्यारी न्यारी ठोड़ा जन जागरूकता कार्यक्रम और स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जाया। नेंडर साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो व्यो मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।
2: जल्दी टिफिन पैक करो राजू।
3: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम चौपाल।

0: चौपाल कार्यक्रम सुनणारा सगळ्या हेतालू श्रोताओ आणि घणेमान सु गुरविंदर बिश्नोई
1: और किरण रा
0: राम राम। किरण जी कई हालचाल है?
1: गुरविंदर जी हालचाल यूं तो ठीक है पर तावड़ो घणो पड़े और गर्मी रो कोई छे और पार नहीं वह रही हो अबे। तो देखो कि भाई गर्मी बहुत बहुत बहुत ज्यादा वेगी है गुरविंदर जी और अबे है कि भाई इन गर्मी रे मायने तो यूं है कि अबे मैं आई हूं नी आकाशवाणी तो भाई एड़ो लाग रही हो एक जाने कोई अंगाराज बरस रही है।

0: देखो के ओ जको मौसम में बदलाव हुयो है, गर्मी भी जकी तप जकी लगातार यानी धरती रो तापमान बढ़ रियो है, ये रे वास्ते कठे न कठे आ मानव सभ्यता भी जिम्मेवार है।
1: बिल्कुल
0: और जिन तरह आपा गाड़ियां न घोड़ा न यांत्रिक साधन धुओं उत्सर्जित कर रिया, तो इरो परिणाम अगर आपा हो जा तो सुखद थोड़ी आए। दरखत तो आपा काट रिया हाँ, और स्टील रो कहीं के उन सीमेंट रो जाल आपा बना रिया, तो एक दिन ओ जाल जको है गर्म हुड़ो ठाडो होई की कर। और तो और देखो शहरा में तो पहला पंखा
1: बिल्कुल
0: पचे कूलर यार, अब आ गया एसी। एसी भाई लोगा कमरे ने तो करे ठंडो और बारे फेंके गर्मी। हैंग एसी आऊं अगर गर्मियां गर्मी जकी शहर में जाई तो शहर रो तापमान बड़ी।
1: बिल्कुल साह गुरविंदर जी, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रियो है और इन रे सारू जो

0: मान की है वो ही जिम्मेदार है, आपा बात भली भांति जाना। हाँ फिर भी इनने बावजूद आ है कि जद आपा ने सुविधा मिले, सुख सुविधा ले उन्हें आपा ओ नहीं देखा कि आपा प्रकृति ने कितो नुकसान पहुंचा रहा है। एक एक घर मायने इतना एसी चल रहा है, गाड़ियां चल रही है, फैक्ट्रियां चल रहा है, प्रदूषण और जो तापमान है वो दिन प्रतिदिन बढ़तो जा रही है। और इरो सीधो प्रभाव जो अब आपने माते पड़ रहा है, स्थिति वेगी है कि इन गर्मी रे मायने एक आम आदमी ने जीवन जीनो भी मुश्किल वेरियो है। तो सबसे पहली चीज तो आ है कि अबे भी अगर आपा नी चेता भाई लोगा तो आउन वाली जनरेशन री तो बात छोड़ो, आपानी जनरेशन ने भी एड़ी फोड़ा पड़ रही है कि अबे लाग रही है कि दिन कीकर व्यतीत करनो और राता भी अबे तो गर्म वेउन लागी है, खाली दिन री बात नी है।
1: किरण जी देखो के टाबर रे इम्तिहान वे नबे घड़ी रे मायने अलार्म लगान होवे तो बा घड़ी बोले सुबह 5 बजे उठनो है 4 बजे ओ ये तरह पूरी धरारो अलार्म है।
0: बिल्कुल
1: जिन तरह तापमान बढ़ रही है, जिन तरह तीखी गर्मी पड़ रही है, अब वो अलार्म है कि भाई हमें ढक जाओ, आपरो विकास जो है वो एक दिशा रे मुजब निर्धारित करो। और आज अगर आप दुनिया री हालत देखा, दुनिया रे देशा री हालत देखा तो और वाणी अर्थव्यवस्था देखा तो भाई जो अमरीका ईरान रो युद्ध है ये पूरो रो पूरो जो है पेट्रोल डीजल गैस जो है जका देशा रे मायने नहीं निकले या नहीं उत्पादित हुए वे सब वन गल्फ देशा माते निर्भर है।
0: बिल्कुल
1: ऐडे में अगर आप डीजल री पेट्रोल री गैस री बचत करो वही अपने आप में उत्पाद हुई तो भाई लोग गर्मी पड़ रही है, गर्मी में अगर आप घर में रहो तो ज्यादा ठीक है। और कोशिश करो कटी आओ जाओ करो तो भाई जकी गाड़ी है वह पुलिंग कर लो, जितना कम यातायात साधन व्यक्तिगत आप उपयोग में लेवा उतनी आप डीजल री बचत करो।

0: बिल्कुल सा गुरविंदर जी, देखो कि चाहे प्रकृति रे रूप में देखा या इंसान रज धरारे माते आज स्थिति चल रही है उन्हें देखा, तो परिस्थितियां दिनों दिन मानव सभ्यता रे प्रतिकूल वेती जा रही है और इन्हें सारों आपा स्वयं जिम्मेदार है। चाहे आपा ईरान और अमेरिका रे युद्ध रे बात करा और चाहे आपा तापमान रे बढ़न रे बात करा, प्रत्येक चीज रे सारों जो है कठिन कठिन जो मनुष्य री लालसा है ज्यादा से ज्यादा पैसों कमानो है या फिर उन लालच रे मायने की मैं मारो घर इतो ज्यादा भर लू या इतो इंतजाम कर लूं, तो आपा ने वो सोचना पड़े भाई लोगों के आपा साथे तो कहीं ले जावा नहीं। साथे तो एक जो है आप पैरियोड़ा कपड़ा ही नहीं जावे तो फिर इतो लालच क्यों करनो है। आज जो धरती है कोई न कोई रूप में जो है आपा ने पाचा उन स्थिति में पहुंचा है देवेला कि आपा अगर नहीं आज चेतिया तो आपा वापिस आदिम काल में वटे जावा जटे के आपा कहीं के जो बिल्कुल आदि मानुष नहीं हुए। तो गुरुविंदर जी
1: देखो किरण जी, एक दड़ी है धरती, ये रमाइने हितर पया पानी है बाकी 30 पे थरा धरती और उन धरती माते विकसित होड़ी आ अपनी मानव सभ्यता मानव रेस कह दो आई एक प्रजाति है। वो विज्ञान रो सारो लेन इन धरती रे स्वरूप ने बदलियो है। किता लाखों करोड़ों कुआ है जटो आप पानी निकाल रिया, गैस निकाल रिया, तेल निकाल रिया और जका कहीं के अपने खदान
0: है खनिज
1: पदार्थ निकाल रिया, खानिया रे महीनों बाटो निकाल रिया, तो कट्ठे ने कट्ठे आपा जकी धरती है ये जो बैलेंस है वो बिगाड़ रिया। और जद कदी आप प्रकृति एकर पलटी तो हैंग जकी है नी रामायण जकी वा पाछी था गिनती, हाँ गिनती पाछी गिननी पड़ेला और सबो ज्यादा खामिया जो भी मानव सभ्यता बुतेला। आज देखो करोड़ों जाति रा जीव जंतु है वे कटे प्रकृति रे साथे खिलवाड़ नहीं करे।
0: बिल्कुल
1: वे आप रो जीवन जीवन वास्ते इन धरा माते आवे रा, आप रो जीवन रो जो को साइकिलिक है चक्र है वो पूरो कर अगली पीढ़ी ने सौंप और धरा ने बिना नुकसान पहुंचाए विलुप्त हो जाए।
0: बिल्कुल सा गुरविंदर जी, तो कुल मिलाए ने जो सार इन बात में वो है कि अबे भाई लोग आपा चेत जावा, ज्यादा ज्यादा जो है पौधा आपा लगावा और उन पौधारी सार संभाल करन उन्होंने वृक्ष रे मायने आपा परिवर्तित करा और साथे साथे वो भी जरूरी है कि जो पेड़ लागोड़ा है वहां ने आपा काटा नहीं, आपानी तरफ जितो प्रयास वे सके आपा इन जो जलवायु ने गर्म करन रो कोई काम नहीं करा। अगर आप घर में मान लो एसी चल रही है तो जरूरी नहीं है कि आप चार एसी चलाओ। अगर आप घर में आप गाड़ी लेन निकल रहा हो तो जरूरी नहीं है कि आप सब जना अलग अलग गाड़ी लेन निकलो। तो आपा प्रयास ओ करा कि जो कुदरत आपा ने दियो है उन्हें आपा सहेज न चाला, कुदरत ने बिना नुकसान पहुंचाए आपा उन चीजा रो इस्तेमाल करा, खुद भी सुखी वेवा और आने वाली पीढ़ियां रे सारू भी एक अच्छो वातावरण आपा छोड़न जावा।

0: किरण जी जका शहर है नगर महानगर है उठे आपा जका मानव सभ्यता है उवेरो खान पान रहन सहन और ओढ़ने पहनने कई एड़ी बीमारियां बिल्कुल एड़ी होगी जानी कॉमन फैक्टर हो गयो। हर दूजे आदमी रे कहीं है कि भाई बीपी है, हर दूजे आदमी रे कहीं है कि भाई मारे तो शुगर है। तो ए जकी बीमारियां है ए आराम जको आराम तलब जीवन रे महीने खान पान रो आप ध्यान नहीं रखा उवे में वातावरण ने खुद आपा ही तो प्रदूषित कर दिया कि ए सहज होगी कॉमन फैक्टर होगी।
1: बिल्कुल सा गुरविंदर जी आप बात करी है उच्च रक्तचाप री, तो आज उच्च रक्तचाप दिवस भी है और एड़ी कई बीमारियां सिर्फ एक उच्च रक्तचाप नहीं है, छोटी मोटी एड़ी कई बीमारियां है जो आज तकरीबन 100 रे माइनू 40-50% लोगों ने आम रूप में ए जो बीमारियां है शुगर है बीपी है ए सब अपने जीवन शैलियों जुड़ी उड़ी जो है बीमारियां है क्योंकि अब आप न तो वेड़ो काम कर रहा हा न शरीर माते आप एड़ी एक्सरसाइज कर रहा हा बाहर लो जो भोजन या फास्ट फूड जो कहवे जिरे मायने बहुत तरह का केमिकल्स वे एड़ो भोजन आप करे और खास कर आने वाली जो नई पीढ़ी है वे छोटा छोटा टाबरिया जद बाहरली चीजा खावे ए जो पैक्ड फूड है ए खावे तो इनसो उहारे शरीर ने उहारे पाचन शक्ति ने उहारे मोटापो बढ़ रही है बीपी री शिकायत और शुगर री शिकायत आजकल गुरविंदर जी बचपन में टाबरा ने वह रही
0: बिल्कुल कम उम्र मायने भी है बीमारियां होगी और भाई देखो के हाई बीपी जो के उच्च रक्तचाप तो ये में कटे न कटे किरण जी टेंशन जो की है वो भी एक बहुत मोटो कारण है। अब छोटो टाबर है वो अगर टेस्ट आ गया तो वो खुद टेंशन करे नहीं करे पूरे घराला उगे ने टेंशन करा
1: बिल्कुल
0: ठीक उन्हीं तरह युवा है पूरे दिमाग में अलग तरह रो टेंशन है हर उम्र और हर वर्ग रे साथ है अलग तरह रो टेंशन है। तो आप रे जीवन रे मायने टेंशन कम करो जितो ज्यादा टेंशन करो नी उतनी बेगी पेंशन आए तो इन वास्ते टेंशन ने रखो साइड में और एक आराम तलब जो की आप जीवन है वो में आप कसर

0: कसरत भी करो, पैदल घूमने फिरने काम करो, और मोह माया रो जो जाल है उन जालों मुक्त होने रो प्रयास।
1: बिल्कुल सा गुरिंदर जी, बहुत पतेरी आ बात की कि तनाव कम करो या टेंशन कम करो। इरो सबाऊ ज्यादा जरूरी और सहज उपाय है कि आपा प्रकृति री तरफ लौटा। अगर आपा देखा तो सूरज आपने गर्मी दे, ऊर्जा दे, और उन्हें बाद भी कुछ चीज कोई जकड़न री प्रयास नहीं करे। हवा है, धरती है, पानी है, हर चीज आप आपरो काम कर रही है, परंतु कोई तरह रो दबाव अपने माते नी ना के। इन प्रकार से जो मनुष्य है नी गुरविंदर जी, तो अब आप हर चीज ना आपने खुद रे कंट्रोल में करनी चाहवा कि भाई मारे इंतिया में एडा नंबर आ जावे, मारे एडी नौकरी भी लाग जावे, मारी जीवन शैली एडी कोई रात रात जाग रही है 12-12 1-1 बजे तक, नशो पतो कर रहा है आजकल रे बच्चा, तो इन सब रे प्रभाव सुन जो है इन तरह री बीमारियां वेरी है।
0: किरण जी, एक और इन बीमारी रो कारण है मोबाइल। जरिए मोबाइल या यूं कहा कि दूर संचार रहा, संचार रहा इतना साधन हो गया है कि आपनो दिमाग 24 घंटे ही चालतो रहे, कटे उन्हें आराम ही नहीं मिले। तो मोबाइल भी आपने कई तरह रो एडिक्ट बनाया करे।
1: बिल्कुल सर गुरविंदर जी, देखो दूर संचार आप बात करी तो आज विश्व दूर संचार दिवस भी है। एक टाइम हो जद की देखो कि आपा कने संचार रो कोई साधन नहीं हो, जो इलेक्ट्रॉनिक साधन नहीं हा, मनुष्य आमी सामी बैठता, बाता करता, एक दूजा मिलता, और एज जो है संचार साधन जो है बातचीत माध्यम से हुए। तो धीरे धीरे जो है टेक्नोलॉजी विकास करियो, रेडियो है, टीवी है, और अबे तो संचार इतना तीव्र गामी साधन है गुरविंदर जी के दुनिया में कहीं वेरियो आपने एक मिनट में ठा पड़े, आप फोन माते दीख जावे, आप चाहे जो काम दूर संचार माध्यम से कर सको।

0: देखो किरण जी, के जमानो लारले 10-20 साल में बहुत तेजी रे साथे बदलियो, तो बदले जमाने रे मायने मानव सभ्यता ने बदली भी थ्रेट रा भी सामनो करनो पड़ियो। और अब देखो आपा निर्भर हो गया ऊर्जा रे माते, ऊर्जा चाहे बिजली हो चाहे वो तेल मुजब हो। तो एक छोटी सी लड़ाई पूरी दुनिया री अर्थव्यवस्था है वो डगमगा गई। तो मैं कटी पड़ियो के भाई जितना भी इंटरनेट रा केबल है नी, वह सब समुद्र रे मायनो है, यानी दूर संचार जो पूरो है वो एक केबल नेटवर्क है। उन मुझे माते टिक्योड़ा चाहे 4G वो उन पाई 5G, अगर उन केबल माते कोई कब्जो कर ले, उन केबल माते कोई मान लो काट लाग जा तो हैंग व्यवस्था ठप हो जाए।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सर।
0: कठे कठे आपा जका एक तरह के काटेरी धार है। तो अब आर लाल दिना में जका कई थिंक टैंक हो चे कि अगर भाई आज हारमूज माते कब्जो करियोड़ो है कि नहीं, अटो उन में गाड़िया जका जा जाए वह नहीं जाऊ दू, तो
1: बिल्कुल
0: उठू ही समुद्र नीचे आ फाइबर केबल भी
1: केबल
0: जावे।
1: चले।
0: और लगभग 90-95% जको इंटरनेट है आ केबलों जुड़ियों है। तो क्यों नो मतलब है कि भाई मानव सभ्यता री जकी सोच है उए ने भी विस्तृत करनो पड़ी। आपानी जकी सनातनी संभाव है कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, इन्हें मानता था कि आपाने आगे बढ़नो पड़ी।
1: बिल्कुल सा गुरविंदर जी। और घड़ी रे सामने देखो आप।
0: देखो के आते हैं गणी उगी इन कार्यक्रम भगत हो रही है पूरो, तो चौपाल कार्यक्रम संपन्न करण सारू आप रे साथी गुरविंदर विश्नोई।
1: और किरण ने दिराओ सी। राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

किसान भाई अभी सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। ग्रामीण भाइयों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज।

0: कहने क्या भाई, हम पढ़े ही रुटे माई गो पढ़े ही मोटी होगी पढ़े ही वैंग पाता है। खैर कोई बात नहीं भाई, तो ही मैं तो मार पुराने टाइम में हनी कोई डाकिया उतार कोई सुख दुखरा समाचार लावता तो हुणता करता तो एड़ कोई गीत रुधार खन वे वो मुखड़े आलो हुण तो आया नहीं।
1: हाँ
0: ओ मन हुणा को नहीं।

0: वाह भाई रे वाह, कह दियो निहांग बात विगत बार बता दी।
1: हाँ नल्ला
0: हम थे विगत बार बता दो, हुर्जवार है गेल मेली आयोडान हैंग बाताओ हिड़ी है।
1: हाँ सर,
0: तो थे फटोफट पहला तो बताओ भाई कौन जलमियान कौन फोत होया।
1: आज का जनिया में पहला नाम है अपने धीरेन्द्र वर्मा जी है। 17 मई 1897 बरेली यूपी में जन्मिया सा। अपने हिंदी तथा ब्रज भाषा का कवि इतिहासकार रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी रहा, प्रथम विभाग का अध्यक्ष रहा।
0: ओहो ठीक ठीक है, गुणी विद्वान मिनका। अर्चो का काम कर्म किया तो माने कोई नहीं भूल सके। कोटि कोटि नमन है मंदिरा फूल चढ़ाऊ बड़े
1: आगे। ऐसा प्रीति गांगुली 17 मई 1953 मुंबई में जन्मी सा। अपने अभिनेत्री 1970 और 1980 के दशक में बॉलीवुड में हास्य भूमिका निभाई।
0: ठीक है भाई, देखो अदाकार है जो कह नहीं की भाई फिल्म में काम करता है, कोई एडो है जो कह नहीं कलाकारी करता तो मिनट कह नहीं हंसिया बिना को रहता।
1: हाँ।
0: आई है
1: आई जाए नवला।
0: तो भैया ने हूँ दे मारे हिसाब हूँ देखियो तो हूँ ला, पर आज हम पात्र परियोड़ो है तो भाई की कोनी बढ़िया है तो आने कई मंदिरा फूल चढ़ावा कोटि कोटि नमन करा।
1: हाँ।
0: बड़े
1: आगे ऐसा पंकज उदास जी 17 मई 1951 गुजरात में जन्मिया है नवला। अपने प्रमुख गजल गायक ने पार्श्व गायक रिया जी मैंने प्रमुख गजला है चिट्ठी आई है और आईस्तान चांदी जैसा रंग जड़ी है गजला गाई नवला।
0: ठीक ठीक है, तो क्या नहीं कि भाई

0: का कह नहीं कि भाई भजल गावता।
1: हाँ भजल नहीं सर, गजल।
0: भजल है पर एक और कहूँ।
1: अरे गजल हो सर।
0: हाँ की कौन भाई गाऊ ना।
1: भजल में तो भजन होनी जा कहीं भजन।
0: हाँ तो गायक कलाकार हाँ भाई बढ़िया। आप रसों का कह नहीं कि भाई कह अर्जुन गया चाहे भजल गया चाहे की गीत गया तो गया
1: गया
0: सर। वहाँ तो की कौन धीनी बात है यानी हजी को भाई देखे कैसो को खजानो भरन गया।
1: हाँ सर।
0: तो यानी कोटी कोटि हजी को नमन है मंदिरेरा फूल चढ़ावा और हजी को भाई याद कराना और कोई गायड़ो है जो कोई कह नहीं को कौन कह
1: गजल गजल।
0: हाँ तो होना है भाई।

0: बाकी सब कंगा।
1: वाह भाई वाह, गायो सब कोई
2: हां लवला
1: बढ़िया भाई। देखे के आप गौनी नारी नारी है जो ते तरकीब आयो भले
2: ते जन्मिया जी का नवलाबा और फोत हम पहलो नाम है सीपी कृष्ण नायर जी है। 17 मई 2014 ने फोत होया हासा ए होटल व्यवसायी या लीला ग्रुप रा और मैंने संस्थापक रिया और आप सेनारी सेवा रे कारण ने कैप्टन नायर भी कहता है। 2010 में याने सरकार पद्म भूषण
1: आप फौजी आदमी आज पंजाब रे कह जी होटल खोल दियो तो कह के आप रो कोई ग्रुप बनाई हुई
2: हां पत्नी नाम लीला
1: भाई बात है ये तो के कोनी के जो के भाई आप रो काम काज सो कोई करियो रोजी रोजगार दिया और जन चाहो काम हो तो सरकार नी दूरी पिया कह नहीं की भाई टैक्स दियो
2: दिया
1: तो आने कोई नहीं भूल सके। कोटी कोटी नमन है मंदिर रा भूल चलावा बड़े
2: आगे ऐसा के अग्रवाल 17 मई 2021 ने फोत होया ऐसा अपने प्रसिद्ध चिकित्सक हृदय रोग विशेषज्ञ आशा और हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया रा अध्यक्ष रिया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रा पूर्व अध्यक्ष रिया।
1: ठीक ठीक है क्या नहीं क्या ये रहा डॉक्टर हाँ बढ़िया भाई। देखो ये तो मैं आजकल हैंगर जी हुए है और मार दे रहे तो यो काम करे नहीं करे पर कोई बात नहीं है बढ़िया चौका काम कर गया तो आने कोई नहीं भूल सके आने कोटी कोटी नमन है मंदिरेरा फूल चढ़ावा और हम भाई थारे कोई गेल मेल आया तो मैं पांच लो और हूँ है जो पढ़ू तक दू जो दे दू।
2: गेल मेल में सहंग पहले खारिया खुर्द गाँव आडेल कमरा राम सारण सतीश सारण चंद्रिका सारो देवी देव जी बालानी जग्गा जी कोटड़ा लखाराम सिमताराम भवर सिंह खेमा जी नवलबा पूरी टीम ने राम राम ऐसा आपकी आवाज बहुत छोकी लगे
1: लिखता तो छोकी होती बात बदला आपने दाय आवे तो आप गेल मेल करियो आप धीनी बात है आगे बड़े करता रहो बड़े।
2: गांव जवर जोधपुर गोविंद भाटी तेजाराम भाटी डपली शोभा ऋषिराज गौतम राज भाटी आपने राम राम के
1: घने मानू राम राम है थोड़ो कह नहीं के भाई तावड़ो पड़े थोड़ो आप जाप तो राख दो बड़े।
2: आगे ऐसा कृष्णा राम सासी भदवासिया फाटक सवन राम सासी प्रेम सासी शंकरलाल सासी गंगा नैनसी अनन्या राजा सासी किशन पांडे है आपने राम राम किया सर
1: नहीं घरे मान राम राम है भाई। देखो क्या काया है जिको कह नहीं के हाजी ताजी रही तो है बात भली हुई तो मौसम रे हिसाब आप जाप तो राख दो बड़े कोई ओल बो साबासी है जो कोई होती देता और कोई सुझाव दूजो मैं तो बता सको
2: हाँ
1: तो दिनी बाद है आने की है नहीं गेल मेल करियो बड़े।
2: आगे ऐसा आओ फॉलो दिस बिकमचंद जैन मनोज कुमार सुरेश कुमार सक्षम टाटिया भूमि धनी देवी सपना नायरा परी आई आपने राम राम क्यों नवला
1: क्या नहीं बिकमचंद जी थोड़ा धरती में रहे
2: हाँ।
1: तो

0: खलीफे दी बावड़ी उबाड़ में खुदार खुदा बख्श खुदा दात बच्चू खान खलीफा रोशन खलीफा ऐ आपने राम नाम
1: किया गोडर मातुल लिखी
0: हां नवलब
1: वाह साहब बात उठता कह जी को हुने और ईद प्रेम है तो आने बहुत बहुत धन्यवाद है अरे
0: आगे सारण नगर बाड़ में सु मेघराज सारण हीरो सारण हितेश राज सारण और नवप्रीत सारण आपने राम राम किया सर
1: आने घने मानु राम राम में ओल बो शाबाशी लिखता रहो भले
0: गांव चौपड़ा जिला पाली सु प्रवीण चौधरी संजना चौधरी सुनील चौधरी संगीता चौधरी ऐसा प्रोग्राम आप में रोज होना सर
1: वाह साहब मधु भाई अमित होने है तो आनी धन्यवाद है भले
0: आगे खुड़ेचा पिपाड़ शहर हीरालाल श्रीमाली जुगिया देवी सीमा खुशी विशाल किशोर मन्नत खुशिका अज्जू दवे दीपक दवे ओम प्रकाश श्रीमाली है आपने राम राम किया
1: गणे मानु राम राम है भले
0: आगे खोकरा मारवाड़ सु सोनदास वैष्णव लक्ष्मण दास युवराज खुशवंत भंवरदास ओम प्रकाश कालूदास विद्या देवी आपने राम राम किया
1: गणे मानु राम राम है
0: खाराबेरा भीमावतान सु राजू राम सैन पद्मा सैन प्रतिज्ञा सैन रामनिवास सैन आपने राम राम कहे नवला
1: गणे मानु राम राम है और कागज पत्र है गेल मेल है मैं करता रहो मेलता रहो कह नहीं की देर है पर अंधेर नहीं
0: हाँ
1: है
0: आगे गांव दौलतपुर श्री गंगानगर श्यामलाल जी बेनीवाल शांति बेनीवाल मंजू मोहित हेमंत भी आपने राम राम किया
1: गणे मानु राम राम नहीं और बड़े कोई वह तो बांट लो भाई
0: हाँ सर आगे गाँव गोपालगढ़ ऐसी राजेश दिवारिया किशन जय किशन ब्रजेश आरती खुशी घनश्याम सिंह चौधरी धर्मेंद्र छिप्पा श्यामलाल सोनी बल्लाराम ढाका जीवन राम जी आपने राम राम जयसला सु राजा राम झवर विष्णोई आपने राम राम कहे नवलाबा
1: गणे मानु राम राम
0: तत्लव सु ताज मोहम्मद मोहिद्दीन खान अनवन अली मुंशी खा रेहान अली उमेद अली मल्लाला रिजवान रोशन मस्ताना मांगी खान आप अहमद खान आपने राम राम किया
1: हाँ नवलाबा ठीक ठीक है
0: हेलो की डाणी बटिंडा लबू राम गंगा राम नत्था राम श्री राम लुणा राम बल्लाराम विशाल पवन चौधरी आपने राम राम किया
1: गणे मानु राम राम
0: हाड़ा भरत सिंह सु खरता राम माचरा भैरा राम माचरा रेखा राम उमेदा राम चेतन भूम सिंह माचरा आपने राम राम
1: गणे मानु राम राम भाई सड़ा है नहीं देखे भाई के थारा गेल मेल होगा पूरा
0: हाँ
1: कागजिया मालकन है जो हूँ बांस लू
0: हाँ नवलाबा
1: के धोरे कल्ली ढणी तापू विष्णा राम विद्यामी देवी सुनील पूजा सुरेश सुभाष श्याम सुंदर हरदान राम जगदीश है जो कह नी बालिया है जो नरू राम कटारिया जयपुर राम मंगला राम रेवंत राम अलुम्बो कुलुम्बो मैं लाने शैला राम रविंद्र देवेंद्र अनिता पुलिस देवी पांसा राम धनी देवी बिरलो के हूँ है जो बाबूलाल गोयल मंगला राम कृष्णा राम गुड्डी बेबी ऋतिक मोनिका निकिता संध्या घेचू और मुम्मल और टीकम के डागोल निम्बा राम सारण राम स्वरूप सुरेश गोपाल मनोहर नारायणी अलम्बे कलम्बे भाई देखे घड़ई भाई शहन है जो लिखी है भांडू दिनेश सोडा रुद्राज भव्यांश रमनदीप कीर्तिका सोडा एयरफोर्स रूम बिंदु कार्तिक हिमांशु मेघवाल मतानियम मगराज वर्मा बेबी वर्मा है जो कंटाड़ियम सीता देवी विजय प्रकाश गोमती मानव चंद मंजू जयेश किरण खुशी मौर्य सवेरे बावड़ी लादू राम जाटोलिया गीता देवी जसाराम गजेंद्र संजय जाटोलिया शिव स्वरूप कल्याण मौर्य प्रभु राम बंसीलाल हेमा राम शोभा राम भैरा राम सोनी बंसीलाल सोनी भाई देखे भाई सहन है जो घड़ी लिखता रहे करता रहे भाई देखे एक वो कागजी है जबरनाथ काल बेलिया सुरेंद्र अर्जुन गीता ममता समता विमला अलुम्बो कुलुम्बो ठीक है वाह भाई वाह हमें देखे गेल मेल रहा अता पता तो भाई सड़न चाहिए और हमें मन एक अर्जी से होना भाई
0: जरूर सर।

0: वाह भाई एमआरजी से होनी आप क्या नहीं जी हो रोगो और है बात भली है ना आज देखे कि भाई मैं ठीक ही है न थे है जी को कह नहीं कि भाई ईद मास लागो है
1: हाँ ना लगो
0: तो थोड़ो कह नहीं कि भाई कह जेठ रो महीनो है तो सेवा चाकरी छोगी करो दाव डांडेरी करो पंख पंखे रूरी करो रिंद रोई रा जिनावरा नहीं करो
1: हाँ।
0: मार जड़े बूढ़े आदमी नहीं करो
1: जरूर जरूर
0: मेरे थारी सेवा में ही है भाई आज थाने है जी को कह नहीं कि भाई भोजन करावा
1: हाँ
0: और भोजन तैयार रह जीते हूँ फेर दू माड़ा और देखे भाई कमल के तारा ही खासा ऊंचा आएगा है और अंदाजी पड़गो है प्रोग्राम टाइम ही पूरा हो गो है तो भाई सेना लेवा ही
1: राम राम, राम।

ग्रामीण भाइयों के लिए कार्यक्रम था सिमाड़ेरी गूंज। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर।

हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रही हैं। इस वक्त रात की 8 बजे हैं। आइए सुनवाएं आपको कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए इस कार्यक्रम में पहला नगमा आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में। जावेद अख्तर का लिखा हुआ ये गीत है आरडी बर्मन का संगीत। इस गीत को हमने लिया है सागर फिल्म से।

ये गीत हमने लिया था कुदरत फिल्म से किशोर कुमार की आवाज थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और आरडी बर्मन का संगीत था। आइए सुनवाते हैं आपको डार्लिंग डार्लिंग फिल्म से एक बार फिर किशोर कुमार की आवाज में ये नगमा, आनंद बख्शी के बोल और आरडी बर्मन का संगीत।

छोटी सी बात। मुकेश की आवाज में इस फिल्म से ये नगमा योगेश का लिखा, सलील चौधरी ने संगीत तैयार किया।

चश्म बद्दूर। येसुदास और हेमलता शुक्ला की मिलीजुली आवाजें और इंदु जैन का ये गीत है, राजकमल के संगीत निर्देशन में ये गीत।

आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आंधी फिल्म से ये गीत। गुलजार ने इसे लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत।

लता मंगेशकर। गुलजार का लिखा ये गीत आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में घर फिल्म से, आइए इन्हीं की आवाज में सुनवाएं।

अमर प्रेम। आइए इस फिल्म से आनंद बख्शी का लिखा ये नगमा आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में सुने। आवाज किशोर कुमार की है।

और आज की फिल्म संगीत का ये आखिरी नगमा मुकेश की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम कटी पतंग।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार सुनिएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेदरलैंड

0: फिनलैंड की 2 दिन की यात्रा के बाद 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपिन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। ये भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुत शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
0: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
4: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, इन तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब एनआईडी की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
5: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्याधिक मांग को सफलतापूर्वक

0: पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
1: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
2: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना

बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितुआंग को गिरफ्तार किया है। थान सितुआंग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबू धाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरूद्व ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आज के सुगम संगीत में जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के गाए कलाम आपने सुना है। फिलहाल ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत। टॉवर हाउस, ये है फिल्म का नाम। लता मंगेशकर की आवाज, असद भोपाली का गीत, रवि का संगीत है।

संदिल फिल्म में सुन रहे थे आप तलत महमूद की आवाज। गुलाम मोहम्मद की तर्ज पर कैफी आजमी का गीत, सुरैया की आवाज, फिल्म का नाम शमा।

केदार शर्मा के गीत को अपनी आवाज दी है गीता दत्त और मुकेश ने। संगीत रोशन का है, फिल्म का नाम बावरी नैन।

तलत महमूद की आवाज़ में लता मंगेशकर, साथ में हैं प्रेम धवन का लिखा ये नगमा और अनिल बिस्वास ने तर्ज बनाई है। फिल्म का नाम है तराना।

वो कौन थी। इस फिल्म से अब आपको सुनवा रहे हैं राजा मेहदी अली खान का लिखा ये नगमा। मदन मोहन का संगीत है, आवाज लता मंगेशकर।

0: ये था सौदागर फिल्म से गीत, और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। रात के 10 बजने को है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रविवासरीय संगीत सभा का कार्यक्रम, सुनिएगा।
1: पहुंच गए हैं स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी।
2: आपने बहुत कम उम्र से ही बांसुरी बजाना शुरू किया। आपने अपने पिता से शुरुआती प्रशिक्षण लेने के बाद अपने पहले गुरु पंडित पुरुषोत्तम अंतापुरकर से औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1997 में मुंबई आए ताकि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के सानिध्य में पेशेवर प्रशिक्षण ले सके। इस तरह आपने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के मार्गदर्शन में अपनी संगीत यात्रा शुरू की, जिन्होंने आपको संगीत की खोज और अभिव्यक्ति की गहरी दुनिया से परिचित कराया। आप एक बेहतरीन बांसुरी वादक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के वाहक हैं। आप न केवल अनगिनत शिष्यों के गुरु हैं बल्कि एक संगीतकार भी हैं। आप भारत के अग्रणी बांसुरी वादकों में से एक हैं। आप तंत्रकारी तथा लयकारी शैलियों पर अपनी जबरदस्त पकड़ के लिए जाने जाते हैं। बांसुरी वादन में अपनी बेजोड़ महारत के लिए आपको जाना जाता है। आप अपने कुछ अनूठे पहलुओं के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे आपका भव्य बांसुरी उत्सव और फ्लूट सिंफनी एक शानदार संगीत समारोह है जिसमें 111 बांसुरियां एक साथ बजती हैं। आपने भारत के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में संतूर, सितार, वायोलिन और कर्नाटक शैली के वाद्य संगीत के अग्रणी कलाकारों के साथ एकल और जुगलबंदी प्रस्तुतियां दी हैं। आपने कई जाने माने समारोह में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे, मोगोबाई कुर्दिकर संगीत समारोह गोवा, हम्पी महोत्सव हम्पी, ऊर्जा संगीत समारोह दिल्ली, पंडित राम मराठे महोत्सव ठाणे, पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव गोवा, गुणीजन संगीत महोत्सव इंदौर, गोवा कला अकादमी संगीत समारोह। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

0: अभी आप बांसुरी पर सुन रहे थे राग चंद्र कौंस, प्रस्तुत कर रहे थे श्री विवेक सोनार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री ओजस अधिया। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी मुंबई में किया गया और इसे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: यू आर लिस्निंग टू राग चंद्र कौंस बाय रिनाउंड फ्लॉटिस्ट श्री विवेक सोनार। He was accompanied on tabla by Shri Ojas Adia. With this tonight, we conclude Ravi Vasariya Akhil Bhartiya Sangeet Sabha. This program was recorded in the studios of Akashwani Mumbai, and this broadcast came to you from Akashwani Delhi.

अभी आप सुन रहे थे रविवासरीय संगीत सभा का कार्यक्रम। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया गया है।

0: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के 11 बजने को हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार सुनिएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
2: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
1: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को 2 दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा

0: कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलिशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. The two sides also explored new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. Meanwhile, Sweden conferred the Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, upon Prime Minister Modi. Sweden's Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, is the utmost recognition and honor that can be conferred upon a head of government. This is the 31st global honour for Prime Minister Modi. Mr. Modi reached Gothenburg this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. Upon arrival at Gothenburg Airport, Prime Minister Modi was accorded a warm welcome and was personally received by the Swedish Prime Minister. During his two-day visit to the Netherlands, Prime Minister Modi held bilateral talks with his Dutch counterpart. The two countries signed 17 agreements to strengthen cooperation in defence, critical minerals and other key sectors. In a social media post, Mr. Modi said his visit to the Netherlands has added new momentum to bilateral ties. He said the two countries have charted an ambitious roadmap for the future by elevating ties to a strategic partnership and expanding cooperation in water resources, semiconductors, innovation, defence, sustainability and mobility. He expressed confidence that the friendship between India and the Netherlands will continue to grow stronger in the years to come. He also thanked Prime Minister Jetten for the warm hospitality and for personally coming to the airport to bid him farewell. The new Keralam government led by Congress leader V.D. Satheesan will be sworn in tomorrow in Thiruvananthapuram. Congress had announced Satheesan as the next Chief Minister of Keralam on the 14th of this month, putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days. The Congress-led United Democratic Front secured a more than two-thirds majority in the Keralam Assembly elections. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today inaugurated and laid the foundation stone for development works worth over 700 crore rupees in Gandhinagar, Gujarat. Mr. Shah, who is on a two-day visit to the state, launched projects worth over 600 crore rupees of Gandhinagar Municipal Corporation. He also inaugurated a newly built milk processing plant of Madhur Dairy in the city, built at a cost of around 128 crore rupees. Earlier in the day, Mr. Shah inaugurated the Innovation and Incubation Centre at the National Institute of Design in Gandhinagar. Union Minister of New and Renewable Energy Prahlad Joshi said India has now successfully managed record peak power demand of 250